0: दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उप मंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर

0: अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
2: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 trillion मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
3: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
4: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड

0: की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे तीन तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े तीन जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में तीन ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में टी20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और एक गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये टी20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां टी20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से आईआईटी मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू एआई एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन एआई और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर एआई की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा एआई, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, एआई को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आए ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में महिला टी20 एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses centenary celebrations of Shriram College of Commerce at Delhi University, calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms capable of leading the world. BJP Rajya Sabha MP Dinesh Sharma appointed Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. NIA Special Court convicts 10 Maoists in 2013 Chhattisgarh Jhiram Valley Massacre case. IBRICS Summit to be held in New Delhi on the sidelines of BRICS Summit.

तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सदाबहार गीत के साथ। आवाजें हैं कुमार सानू, अलका याग्निक की, और फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना।

कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक का गाया हुआ। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं नदीम श्रवण। फिल्म का नाम है सात रंग के सपने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
8: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
9: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं। तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
10: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
11: सदाबहार गीतों का ये सिलसिला श्रोताओं यूं ही जारी है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने। फिल्म का नाम है तमाशा।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। और आज कार्यक्रम आरोग्यम में जिस विषय पर जानकारी दी जाएगी वो है बच्चों में कुपोषण, कारण, लक्षण और बचाव। और इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शौर्य कालिया। और श्रोता भी उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसके लिए डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892 224391। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन बनाई है सचिन जिगर ने। फिल्म का नाम है भेड़िया।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल को। फिल्म का नाम है सिंग इज किंग। गीतकार हैं मयूर पुरी और संगीतकार हैं प्रीतम।

गाने सुहाने श्रोताओ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आप सभी का स्वागत है, जहां बात होती है आपकी और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई। और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हम मना रहे हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, और इसीलिए आज कार्यक्रम आरोग्यम का हमारा विषय बेहद महत्वपूर्ण है, बच्चों में कुपोषण, कारण, लक्षण और उससे बचाव। जी श्रोताओं, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, तेज़ी से बढ़े, पढ़ाई में अच्छा करे और हमेशा खुश रहे, लेकिन ज़रूरी पोषक तत्व ना मिल पाने के कारण बच्चे अक्सर कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। तो आखिर कुपोषण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या कारण है कि बच्चे कुपोषित हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी, हम अपने बच्चों को कुपोषण से कैसे बचा सकते हैं, यही सब जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शौर्य कालिया, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं और कार्यरत हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल टांडा में। तो डॉक्टर शौर्य कालिया, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आपको और सारे समस्त श्रोतागण को नमस्कार
0: जी। और सबसे पहले हम जानकारियों का सिलसिला शुरू करते हुए आपसे यही प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आखिर कुपोषण होता क्या है।
1: देखिए, नाम में ही इसका मतलब छुपा है। पोषण वह प्रक्रिया होती है जिससे हमारा ग्रहण किया हुआ भोजन तथा पोषक तत्व हम उसको ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं या ग्रोथ करते हैं तथा हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हम सही मात्रा या सही अनुपात में पोषक तत्वों का ग्रहण ना करें तो वह कुपोषण कहलाता है। ये कई कारणों से हो सकता है। सबसे आम कारण हमारा असंतुलित भोजन होता है। कुछ बच्चों में लंबी बीमारियां भी यह समस्या कर सकती है। अब हम सोचते हैं कुपोषण यानी कि दुबला पतला बच्चा होगा, कमज़ोर होगा, लंबाई में कम होगा, तो आप सही सोचते हैं, इसे अल्प पोषण कहते हैं, यानी कि पोषण की कमी। पोषण अधिक होना भी खतरनाक है, उसे हम अति पोषण कहते हैं। तो वह बच्चा मोटा होगा, वह सुस्त होगा तथा उसे भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए सही मात्रा, सही अनुपात
0: जी। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में आखिर कुपोषण होता क्या है, कारण क्या है इसके।
1: देखिए, कारण अनेक हैं। भारत में सबसे आम कारण खराब भोजन ही है। हमारे यहाँ पे कई बार बच्चों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता तथा कुछ घरों में ज़रूरत से अधिक मिल जाता है। इसके अलावा कई बार बच्चों को लंबी बीमारियां चलती हैं, जैसे इन्फेक्शन होती हैं, कुछ लोग टीकाकरण नहीं कराते, उससे बीमार रहते हैं। तो जब बीमारियां लंबी चलती है तो बच्चे का खान पान भी कम होगा, तो उसके कारण भी वह कुपोषित हो सकता है। तो यही है जो दो मुख्य कारण भारत में देखे जाते हैं
0: जी। और डॉक्टर साहब, आपने जैसे बात की कि कई बच्चों को बहुत कम खाना मिलता है, कईयों को बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो यही कुपोषण का मुख्य कारण है, या फिर जो संतुलित भोजन है अगर हम उसे अपनी दिनचर्या में शामिल ना करें तो वो कुपोषण का कारण है।
1: जी बिल्कुल सही बात है, असंतुलित भोजन ही मेन प्रमुख कारण है। जब हम असंतुलित भोजन ले रहे हैं तो हमारे पास ठीक मात्रा में और ठीक अनुपात में पोषक तत्व नहीं मिल रहे, तो उससे ना तो शरीर में सही ऊर्जा का संचार होगा, ना शरीर की वृद्धि होगी तथा हम बीमारियों के लिए भी ज़्यादा हमारे को बीमारियां भी ज़्यादा होंगी। थोड़ा सा हम ना इसको हम थोड़ा गहराई में चलते हैं
0: जी, जी।
1: जैसे अब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो संतुलित आहार के कुछ अंश होते हैं
0: जी।
1: जैसे कि सबसे पहला प्रमुख अंश कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शर्करा भी कहते हैं हिंदी में, तो यह होता है जो मुख्यतः ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा दूसरा का होता है प्रोटीन, जो हमारे शरीर की वृद्धि कराता है, जो हमारे शरीर को बनाता है
0: जी।
1: फिर आता है वसा, वसा यानी फैट, यह भी ऊर्जा का संचार करता है, परंतु इसकी आवश्यकता हमें कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले थोड़ी कम होती है। फिर थोड़े सूक्ष्म तत्व आते हैं जिन्हें हम विटामिन एंड मिनरल्स कहते हैं। ये शरीर के नॉर्मल फंक्शन यानी कि नॉर्मल प्रक्रियाओं को ठीक रखते हैं। इससे हमारी शरीर से हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता ठीक रहती है तथा

0: देखिए, ये सारे तत्व हर खाने में कुछ ना कुछ अनुपात में होते ही हैं।
1: जी
0: जहाँ तक शुगर की बात है, तो प्योर शुगर या रिफाइंड शुगर वह देना अनिवार्य नहीं है। हमारे खाने में कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और वह चीनी से बेहतर होते हैं, क्योंकि वह धीरे धीरे ग्रहण होते हैं तथा उनसे एकदम से शुगर स्पाइक या शुगर एकदम नहीं बढ़ती। तो वो ज़्यादा सही है अगर हम चीनी को कम से कम रख पाएँ। हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में हमें चीनी भी देनी पड़ सकती है, जैसे बच्चे अगर बहुत ही कमज़ोर हों,
1: जी
0: उनकी कैलोरीज ज़रूर से कम बन रही हों, तो हम देते हैं। परंतु ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसमें आप अपने घर पे ज़रूर से ज़्यादा चीनी देने की कोशिश करें।
1: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता लाइन पर हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से, और
1: जी
2: डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार।
2: जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम बच्चों को डाइट देते हैं, तो बच्चों का किस तरह से जो है डाइट देना चाहिए, समय समय पर कितना किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है।
0: आपने तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिया। तो अब बच्चा जो है, जब वह ग्रो कर रहा है, तो हमें अब उसको हर उसकी स्टेज पे उसे अलग अलग डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम शुरुआत कर देते हैं पहले 6 महीने में। तो पहले 6 महीने में हमें केवल माँ का दूध ही पिलाना है, पर्याप्त मात्रा में पिलाना है। शुरू में बच्चा हर 2-2 घंटे में मांग सकता है, आपको हो सकता है 12 से 14 बार पिलाना पड़ जाए दिन में। समय के साथ वह धीरे धीरे थोड़ा कम पीता है, पर हर एक समय में थोड़ा ज़्यादा पीता है। तो कुल मिला के दूध वह ज़्यादा पीता रहेगा और यह 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने पे अब क्या होता है कि अब बच्चे का वज़न लगभग दुगना हो चुका होता है, साथ में वह बाकी खाद्य पदार्थ को पचाने की क्षमता भी रखता है, और दूध केवल अब उसका नहीं पूरा कर पाता है जो ऊर्जा का उसकी रिक्वायरमेंट या ज़रूरत है। तो उस समय पे हम अन्य खाद्य पदार्थ भी उसको शुरू करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये थोड़ी पेचीदा है और इसमें बहुत सी गलतियाँ कई माँ बाप से हो जाती हैं, तो यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है। तो शुरुआत में हम सिर्फ अनाज और दूध वगैरह से शुरुआत करते हैं। ये इसलिए क्योंकि पचाने में आसान होते हैं। तो सबसे आम जो हम यूज़ करना चाहिए वह चावल है। गेहूं वगैरह कई बार कुछ समस्याएं कर सकता है, ग्लूटेन वगैरह की समस्या हो सकती है, वो हम अभी नहीं गिनते, परंतु चावल वगैरह सेफ़ हैं, उनको शुरू कर सकते हैं। तो बच्चा शुरू में हो सकता है एक ही चम्मच खाए, पर प्रतिदिन उसका धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि कम से कम वह आधे से एक कटोरी तक पहुंच जाए। जब एक बार वह चावल वगैरह खाना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसमें हम दाल भी जोड़ सकते हैं। तो चावल और दाल, ये दोनों चीज़ें हो गई। फिर ये भी सेम तरीके से सुबह उसको एक आधा चम्मच दें, रोज़ बढ़ाएं, कटोरी भर उसको पहुंचाएं। 1 साल की उम्र तक इस तरीके से खाना डालते डालते हमें कोशिश करनी है कि वह सारा वह खाना शुरू कर दे जो हम आम तौर पे घर पे बना रहे हैं। इसे हम फैमिली पॉट कहते हैं, यानी कि जो आपके रसोई में बन रहा है, जो आप खा रहे हैं, वह बच्चा भी खाएगा। अब कितनी मात्रा खाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी माँ खाती है उसका आधा। अब ज़रूरी नहीं कि वह आपने 3 टाइम ही बच्चे को उतना भोजन खिला देना है, वो हो सकता है इतना ना ले पाए, पर ये पूरे दिन के दौरान है। जितना माँ पूरे दिन में खाती है, उसका आधा पूरे दिन में बच्चे को भी खाना चाहिए। तो ये होगी 1 साल तक की बात। 1 से 3 साल का जो समय है, वह उसमें अलग समस्या आती है। उसमें समस्या ये आती है कि बच्चा खेलकूद शुरू कर देता है, तो अब उसको खाने में इंटरेस्ट कम हो जाता है, वह कोशिश करता है कि वह भाग जाए। तो उसे अब खेल खेल में आपको खिलाना पड़ेगा। उसे आप, जैसे आपने देखा होगा टीवी पे, कई लोग एरोप्लेन बना के खिलाते हैं, कई अलग तरीके अपनाते हैं, तो वह अपनाएं, उसे खाना खिलाएं। 3 साल की ऊपर वह खुद भी खाना शुरू कर सकता है। तो अब उसे आप ऐसी चीज़ें दें जिसमें वो इंटरेस्ट शो करे, मतलब उसमें अपना
1: जी,
0: हाँ
1: दिलचस्पी दिखाए, उसे
0: दिलचस्पी
1: खाना खाने में
0: दिखाए।
1: मजा आए।
0: तो ये होगी 6 साल। अगर आप ये शुरुआती सारा पहलू ठीक रखते हैं, तो आगे बच्चा खुद ब खुद ही सही खाना खाएगा। इसमें एक ज़रूरी बात ये, जंक फूड से बिल्कुल दूरी रखें। नो जंक फूड, ज़ीरो जंक फूड।
1: जी, और कुछ पूछना चाहेंगे?
2: जी, बस धन्यवाद जी।
1: जी, धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। और डॉक्टर साहब, आपने बात की कि 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो

0: हमें उसे धीरे धीरे ठोस आहार भी देना शुरू करना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इतना शौक से वो खाते नहीं हैं, खाना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में मदर जो है वो फीड करती रहती हैं, उनको करवाती रहती हैं। तो कितने समय तक बच्चों को माँ का दूध पिलाना ठीक रहता है, या उसमें अगर 1 साल के बच्चे को भी वो पिला रही हैं तो उसमें भी पोषक तत्व उसे मिलते हैं पूरे?
1: देखिए, ऐसा है, जब आप 6 महीने पे ठोस पदार्थ शुरू करते हैं
0: जी
1: तो एकदम से दूध रोकने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
0: जी
1: आपको उतना दूध जारी रखना चाहिए जितना वे 6 महीने पे ले रहा है, उसके अतिरिक्त आपको ठोस खाना डालना है।
0: जी
1: तो आमतौर पे 2 साल तक तो हम खुद कहते हैं सारे डॉक्टर कि आपको दूध पिलाना ही चाहिए, उसके बाद उसके उतनी महत्व नहीं रहता। तो अगर आप उसको दूध पिला रहे हैं तो गलत नहीं, पर अगर आप केवल ही दूध पिला रहे हैं तो वह
0: जी
1: गलत है।
0: जी जी और जैसे अब छोटा बच्चा, उसे 6 महीने के बाद उसको शुरू किया हमने खाने का, तो मान लीजिए कि हम उसको एक केला खिलाना चाहते हैं, तो आप कितना बताएंगे कि एक पूरा केला या थोड़ा सा उसका पार्ट कैसे करके खिलाएं हम?
1: देखिए, शुरुआत हमेशा कम से करें
0: जी
1: फिर उसे बढ़ाएं।
0: जी
1: तो अगर वह शुरू में सिर्फ 1 चम्मच भी केले को थोड़ा सा मैश करके जैसे आप खिला
0: जी
1: रहे हैं तो 1 चम्मच भी खाए, वो भी अतिरिक्त, मतलब वो भी काफ़ी है।
0: जी
1: उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहें, आपको खुद दिख जाएगा कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि बच्चा नहीं पसंद करता तो खाना बदल भी सकते हैं,
0: जी
1: ऐसे कोई अनिवार्य नहीं कि आपको वही खाना उसे खिलाना ही है।
0: जी और जैसा आपने अभी कहा कि जब बच्चों को हम खाना देना शुरू करते हैं तो जो हम अपनी रसोई में बनाते हैं वो हमें थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को खिलाना शुरू करना चाहिए, तो उसमें कितना है कि उबला हुआ खाना, या जो हम जैसे उसमें तड़का लगा दिया, मिर्च मसाले डाल दिए, तो वैसे आप ये बताइए कि किस तरह का खाना देना चाहिए बच्चों को?
1: देखिए, अब यहाँ बात आती है कि जो परिवार का स्वास्थ्य है वही अंत में बच्चे का स्वास्थ्य होगा।
0: जी
1: तो अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चे के लिए हानिकारक है तो वो चीज़ आपके लिए भी उतनी ही हानिकारक है। अगर आप अपने तेल में बहुत ज़्यादा, आप खाने में अपना बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं,
0: जी
1: बहुत ज़्यादा नमक मिर्च यूज़ करते हैं, तो उससे
0: जी
1: आपको खुद भी नुकसान है।
0: जी
1: तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा खुद का खाना भी ठीक हो और हम बच्चों को भी वही दे सकें।
0: जी तो मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए सब कुछ,
1: बिल्कुल,
0: ज़रूरत से ज़्यादा ना नमक ना मिर्च कुछ भी नहीं होना
1: हाँ जी,
0: चाहिए, है
1: बिल्कुल
0: ना
1: बिल्कुल
0: जी? और डॉक्टर साहब, एक और श्रोता जो हैं वो लाइन पर हैं, काफ़ी देर से कॉल कर रहे हैं। हेलो
2: हाँ जी। योगेश जांगड़े भी मैं तरह छत्तीसगढ़
0: जी,
2: से बोल
0: योगेश
2: रहे हैं।
0: जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, विषय के संबंध में प्रश्न पूछिए।
2: ये जो बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए उसको सभी टीके लगवाना कितना जरूरी है?
1: देखिए, अगर हम आज से 100 साल पहले जाएं तो हम देखेंगे कि 100 में से कम 50 बच्चा जो होता था वो केवल बीमारियों के कारण ही मर जाता था। परंतु आज के समय में आप देखें तो वह आंकड़ा बहुत ही घट के अब 20 या 18 तक भी आ गया है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप टीकाकरण पूरा करें। सरकार द्वारा यह बहुत अच्छी स्कीम है और इससे बच्चों को बहुत अधिक लाभ होता है। मान लीजिए आप टीकाकरण नहीं करते, बच्चे को बीमारी होती है, बच्चा बीमार होगा, कमज़ोर होगा, उसकी भूख भी कम हो जाएगी। अब आप उसे जितना मर्जी पोषण देने की कोशिश कर लें, जब तक वह बीमारी है तब तक तो वह नहीं ठीक होगा और हो सकता है उससे उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण के बहुत ही कम नुकसान हैं। जो भी नुकसान है आपको आपके वहाँ के हेल्थ वर्कर, आशा तथा डॉक्टर समझा देंगे तथा उसका इलाज भी आपको पहले ही बता देंगे।
0: जी योगेश जी,
2: धन्यवाद
0: और कुछ जानना चाहेंगे?
2: जी, ने बहुत शुक्रिया।
0: जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, उन्हें रोगों से लड़ने में मदद करती
1: हाँ
0: है।
1: जी, बिल्कुल
0: जी, और अगर कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है और उसने सारे टीके भी उसके माता पिता ने उसे लगवाए हैं लेकिन फिर भी वो बार बार बीमार पड़ रहा है, तो क्या ये भी कुपोषण का संकेत हो सकता है?
1: जी, कुपोषण का संकेत बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि हमने बात की, कुपोषण के कई अंश थे, उसमें से एक अंश हमने विटामिन एंड मिनरल भी
0: जी
1: गिने थे।
0: जी
1: तो
0: जी
1: विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं वे हमारे खुद की इम्यूनिटी यानी हमारी क्षमता बीमारियों से लड़ने की, उसको प्रभावित करते हैं। तो अगर उसकी खाने पीने में हो सकता है कि आपने ऊर्जा प्रोटीन सब सही कर दिया परंतु विटामिन एंड मिनरल रह गए तो भी उसको हो सकती हैं। परंतु अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल संतुलित आहार दे रहे हैं तब भी वे बीमार रह रहे हैं तो उसको एक बार अस्पताल में जरूर दिखाएं। कई पैदाइशी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं जो बार बार

0: बच्चे को बीमार कर दें, तो वो डॉक्टर के ऊपर है, उसकी आपने चिंता नहीं करनी।
1: जी, और कई बार बच्चे जो हैं जब पैदा होते हैं तो उनका वज़न काफ़ी कम होता है, तो जिन बच्चों का वज़न कम होता है उनको कुपोषित होने का ज़्यादा संभावना रहती है।
0: जी इसमें ना बड़ी ही पेचीदा चीज़ ये है कि जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं या बचपन में मतलब पैदा होने पे बहुत कमज़ोर होते हैं,
1: जी
0: उनका आगे जाके मोटापा तथा अन्य प्रॉब्लम होने का ज़्यादा खतरा रहता है।
1: अच्छा
0: बचपन
1: जी
0: में हो सकता है 5-6 साल तक वह पतले रहें, दुबले रहें,
1: जी
0: परंतु उसके बाद देखा गया है कि उनमें मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, मतलब बीपी वगैरह बढ़ना, ये सारी
1: जी
0: समस्याएं ज़्यादा होती हैं, तो वो भी कुपोषण ही है।
1: जी
0: तो हाँ बिल्कुल, उनमें कुपोषण का खतरा ज़्यादा ही रहता है।
1: जी और डॉक्टर साहब, अब एक छोटे से अंतराल के लिए हमें रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपसे बात करेंगे।
2: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आरोग्यम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और हमारा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, क्योंकि सुबह के 9:18 हो चुके हैं। आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के शिमला स्टूडियो, जहां से 9:20 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जानें।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुजानपुर टिहरा की प्रधानाचार्य मंजरी बी महाजन और आईटीआई मंडी के अनुदेशक जगमोहन शर्मा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। हिमाचल के ग्रामीण पर्यटन को देश दुनिया से रूबरू करवाने में चलो चंबा अभियान निभा रहा अहम भूमिका। नई दिल्ली के द्वारका में प्रतिष्ठित बिजनेस प्लस लीजर ट्रैवल एंड माइक में झलकी प्रदेश की समृद्ध विरासत। स्वास्थ्य मंत्री धनश्याम शांडल ने कहा, नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं युवा। और चंद्रभागा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने जोबरंग में नए पुल की मांग दोहराई। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हिमाचल के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुजानपुर टेहरा की प्रधानाचार्य मंजरी वी महाजन और आईटीआई मंडी के अनुदेशक जगमोहन शर्मा शामिल हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानाचार्य मंजरी वी महाजन ने शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण और

0: दीपिका शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। वहीं आईटीआई मंडी के फिटर ट्रेड के अनुदेशक जगमोहन को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किन्नौर जिला के 6 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के 12 जिलों से कुल 21 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन हुआ, जिसमें किन्नौर के 6 शिक्षक शामिल हैं। सम्मानित शिक्षकों में कोठी स्कूल के प्रवक्ता अजय कुमार, यांगपा 2 के किरण कुमार, कल्पा स्कूल की डीपीई राकेश कुमार, खदूरा स्कूल के जेबीटी संजय कुमार नेगी, खवांगी के जेबीटी इंद्र प्रकाश और खोंटा पांगी के जेबीटी मनोज कुमार शामिल हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले इन शिक्षकों का सम्मान किन्नौर के लिए गर्व की बात है। शिक्षा विभाग ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए सभी शिक्षकों को बधाई दी है। वर्ष 2008 में किन्नौर के शिक्षक हीरा सिंह नेगी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हिमाचल के ग्रामीण पर्यटन को देश दुनिया से रूबरू करवाने में चंबा चलो चंबा अभियान अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में आयोजित प्रतिष्ठित बिजनेस प्लस लीजर ट्रैवल एंड माइक 2026 में चंबा के दूरदराज गांवों, अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य, लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को देश विदेश के प्रमुख टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल विशेषज्ञों के समक्ष प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। सामाजिक संस्था नॉट ऑन मैप के सहयोग से जिला के विभिन्न अंचलों से आए होमस्टे संचालकों, कारीगरों और युवाओं के दल को इस विशाल मंच पर अपनी बात रखने का अवसर मिला। एक्सपो के दौरान जिला के 7 प्रमुख क्षेत्रों की समृद्ध विरासत और विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया। इनमें खजियार और डलहौजी के प्राकृतिक वन क्षेत्र, पांगी और भरमौर की समृद्ध जनजातीय परंपराएं, ट्रैकिंग रूट्स और पौराणिक इतिहास शामिल रहे। इसके साथ ही साल वैली, तीसा और दवाट महादेव की शांत ग्रामीण जीवन शैली, पारंपरिक खानपान और आध्यात्मिक परिवेश से आगंतुकों को रूबरू करवाया गया। इस एक्सपोजर विजिट में शामिल प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता जताते हुए जिला प्रशासन चंबा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और एक्ट संस्था का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है।
1: मेरा नाम वर्षा जरियाल है और हम जो है चंबा हिमाचल प्रदेश से आज दिल्ली आए हैं, जहाँ पे बीएलडीएम का हमारा इवेंट चला है। तो 3 दिन का इवेंट था, आज लास्ट दिन है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ जिनसे हमें नई नई चीज़ें सीखी हैं और अपना भी हमने आइडियाज एक्सचेंज किए हैं, उनके आइडियाज हमने से लिए और कोशिश ये रहेगी कि आगे भी हम जो है ऐसे ऐसे इवेंट्स में, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला इतना बड़ा हमें और होप कि आगे भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें मिलते रहे। थैंक यू।
2: मेरा नाम मनोज कुमार, मैं हिमाचल प्रदेश चंबा से आया हूँ और बीएलटी मैम में आकर जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा मंच था, देश विदेश से यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोग जो है ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पहुँचे हुए थे। जो हम यहाँ पर जो कल्चर को प्रमोट करने के लिए आए थे तो सबका रुझान जो है ये इसी ओर था।
3: मिस्टिक विलेज के बारे में रीड कर रही थी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, क्योंकि ये एक होम स्टे है, पर ये सिर्फ होम स्टे जो है वो सिर्फ आपके स्टे के बारे में या टूरिज्म तो प्रमोट कर ही रहा है, बट उसके साथ साथ कल्चर को भी प्रमोट कर रहा है। तो आप अगर यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ के कल्चर्स के बारे में पता चलेगा, कुजीन के बारे में पता चलेगा और एक बहुत ही होमली इन्वायरमेंट आपको मतलब मिलेगा जो है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि सब कुछ काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। आप जब इस तरीके के होम स्टेज और एक नॉट ऑन मैप भी है इनका एक और वेंचर, तो उसके थ्रू जब आप यहाँ जाते हो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में अगर आप रुकते हैं तो आपको सिर्फ नेचर देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं मिलता, उसके साथ साथ आपको उस रीजन और उस जियोग्राफी के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव एंड मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और इस
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
4: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
5: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
4: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
5: रेबीज जानलेवा है लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा है कि युवा नशे से दूर रहें और अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाएं। डॉक्टर शांडिल कल सोलन

0: विधानसभा क्षेत्र के जौनाजी में 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहकर ही युवा अपने और अपने परिवार के बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। स्वास्थ्य मंत्री ने वार्ड डयारक बुखार में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 2 लाख, महिला व युवक मंडल भवन कनाहा बजनाल के निर्माण के लिए 2 लाख, जौनाजी स्कूल से मार्ग तक एम्बुलेंस रोड के प्रारंभिक निर्माण के लिए भरोग गांव से कनाहा बजनाल स्कूल तक मार्ग की मरम्मत, डयारक बुखार में आंगनवाड़ी निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कल से किन्नौर जिला के 5 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। जगत सिंह नेगी इस दौरान जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेंगे तथा महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। विस्तृत ब्यौरा हमारी किन्नौर जिला संवाददाता से।
1: जगत सिंह नेगी की 7 सितंबर को रेखांगपियो में 11 बजे ITDP के सम्मेलन कक्ष में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 8 सितंबर को जिला योजना एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं 9 सितंबर को जिला स्तरीय रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 10 सितंबर को मंत्री लोक निर्माण विश्राम गृह रेखांगपियो में कल्पा फूह और निचार ब्लॉक के अध्यक्षों एवं कार्यकारी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर के साथ कल लाहौल के जोवरिंग पुल का निरीक्षण कर ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को जाना। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से जोवरिंग, राशेल और रापे गांवों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। कई बार पानी पुल के ऊपर तक पहुंच जाने से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, राशन की व्यवस्था और किसानों को उनके उत्पाद बाजार तक ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोविंद ठाकुर ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए नदी से पर्याप्त ऊंचाई पर नया पुल बनाने की आवश्यकता जताई। रवि ठाकुर ने कहा कि करीब 3 वर्षों से समस्या सामने आने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से तत्काल धनराशि उपलब्ध करवाकर सुरक्षित और स्थायी पुल निर्माण की दिशा में कदम उठाने की मांग की है। मॉनसून की बारिश के बीच हिमाचल में सेब सीजन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा पेटियां भेजी जा रही है। कृषि उपज विपणन समिति के अनुसार अब तक 60 लाख पेटियां बाहरी राज्यों को भेजी जा चुकी हैं। वहीं अब तक करीब 1 करोड़ पेटियां हिमाचल और बाहरी राज्यों की मंडियों में पहुंच चुकी हैं। मंडियों के साथ साथ सीधे कारोबार के जरिए भी सेब लगातार बाजार का रुख कर रहा है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। अमर उजाला का शीर्षक है, मणिमहेश डल झील में महिलाओं के स्नान पर रोक, गौरीकुंड में ही मिलेगी अब सुविधा। पंजाब केसरी के शब्द हैं, अधिकारियों पर बरसी सांसद कंगना, कहा काम नहीं करना तो क्या तनख्वाह खाने आते हो। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, कैग रिपोर्ट, जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए की राशि खर्च नहीं कर पाया विभाग, अर्जित ब्याज के निर्धारित समय पर हस्तांतरण में भी देरी। दैनिक जागरण की खबर है, हिमाचल की केंद्रीय सहायता में चौथे वर्ष भी कटौती, वित्त आयोग के अनुदान में आई सबसे अधिक कमी। दैनिक भास्कर प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, अनुबंध शिक्षकों को नियमित होने पर मिलेंगे पूरे सेवा लाभ, कोर्ट ने सरकार को 3 माह में भुगतान के दिए निर्देश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुजानपुर टिहरा की प्रधानाचार्य मंजरी वी महाजन और ITI मंडी के अनुदेशक जगमोहन शर्मा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। हिमाचल के ग्रामीण पर्यटन को देश दुनिया से रूबरू करवाने में चलो चंबा अभियान निभा रहा अहम भूमिका। नई दिल्ली के द्वारका में प्रतिष्ठित बिजनेस प्लस लीजर ट्रैवल एंड माइक में झलकी प्रदेश की समृद्ध विरासत। स्वास्थ्य मंत्री ने धनराम शांडल ने कहा, नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं युवा। और चंद्रभागा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने जोबरंग में नई पुल की मांग दोहराई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
5: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम आरोग्यम।
6: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को।

0: मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य में। और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बच्चों में कुपोषण, कारण, लक्षण और बचाव। और इस विषय में जानकारी देने के लिए इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शौर्य कालिया। और डॉक्टर साहब, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जो चर्चा हमारी रह गई थी उसी को हम जारी रखते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि सही पोषक तत्व ना मिलें तो बच्चों के शारीरिक विकास पर और साथ ही उनके मेंटल लेवल यानी कि मानसिक विकास पर क्या फ़र्क पड़ता है।
3: जहाँ तक पोषक तत्वों की सवाल है तो हर पोषक तत्व अलग तरीके से अपनी कमी को जाहिर करता है। तो अगर हम मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेते हैं तो वे मुख्यतः ऊर्जा तथा वृद्धि कराते हैं, तो बच्चा कद में छोटा रहेगा, बिल्कुल दुर्बल हो जाएगा, उम्र के हिसाब से वज़न कम होगा, उम्र के हिसाब से लंबाई कम होगी। एक कारक होता है BMI, वह उसका ख़राब हो जाएगा। तो ये हो गए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कमी के लक्षण। उसके अतिरिक्त मान लीजिए विटामिन एंड मिनरल्स अलग अलग हैं, उनकी कमी के अलग लक्षण होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं आयरन, कई लोगों ने सुना होगा कि एनीमिया है या खून की कमी है, उसके लिए आयरन चाहिए होता है। तो आयरन की कमी से खून कम होएगा, उससे बच्चे के मानसिक विकास पे भी असर पड़ेगा। एक और चीज़ थी होती जैसे आयोडीन, जो आजकल हम नमक में खुद ही डाल देते हैं, तो वह भी दिमागी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार अलग अलग पोषक तत्वों की कमी से अलग अलग समस्याएं होती हैं
2: जी। और डॉक्टर शौर्य, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक हमने टर्म सुनी है सूखा रोग बच्चों में होता है, मेरास्मस शायद उसको बोलते हैं, तो वो होता क्या है और वो भी कुपोषण से ही उसका रिलेशन है?
3: देखिए, अगर बहुत ही गंभीर कुपोषण हो जाए तो दो बीमारियां आती हैं सूखा रोग जिसे आप मेरास्मस कह रहे हैं, ऐसी दो बीमारियां, एक क्वाश्चरकोर होती है, एक मेरास्मस। तो ये दोनों गंभीर मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण है
2: जी।
3: पर और ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब आप ये समझिए कि ये अब बच्चे की आखिरी स्टेज रहती है जिसमें अब वो सूखा रोग आ गया है। तो इस हालत तक बच्चा ना ही पहुंचे तो ठीक है, परंतु अगर इस हालत में बच्चा पहुंच गया है तो बहुत मुश्किल होता है कि आप उसे घर पे उसका इलाज कर पाए। तो इसके लिए खास अलग से जगह रखी होती है अस्पतालों में जिसमें बच्चों के खान पान को, और क्योंकि इनमें बीमारियां हमेशा ही निकलती हैं तो उसका इलाज भी अस्पताल में ही होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा बहुत ही कुपोषित है और इसके क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, वह बच्चा बिल्कुल सुस्त रहेगा, खाने पीने में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, थोड़ा उसके पेट में पानी भी भर सकता है, उसके बालों का रंग बदल सकता है, शरीर में धब्बे पड़ सकते हैं, तो ये चीज़ें अगर आपको लगता है तो आप एकदम उसे अस्पताल में लाना चाहिए
2: जी। और एक श्रोता लाइन पर हैं, हेलो जी, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। और श्रोता, आप भी इस कार्यक्रम में डॉक्टर शौर्य कालिया से जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसके लिए डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर, और फ़ोन नंबर है हमारा 0189222439। हेलो
4: हेलो
2: जी, नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए।
4: नमस्कार मैम, डॉक्टर साहब नमस्कार जी।
3: नमस्ते जी।
4: सर अभी तो मैं
2: जी मैडम, आप अपना ना रेडियो सेट से थोड़ी दूरी बना लीजिए।
4: ओके, ये छोटे बच्चों के लिए है ना, तो मेरी बेटी तो बड़ी है, वो अभी हॉस्टल में रह रही है, तो उसकी उसको दिक्कत क्या आ रही है कि वो जो खाना वहाँ खाते है ना बच्चे, उसको वो खाना पसंद नहीं आता, कि ये कहती जो चपाती है वो कच्ची बनी होती है, मेरे से नींद निकली जाती, तो वो खाना स्किप कर देती है, चावल बने होते तो खा लेती है। तो अब उसको दिक्कत ये आ रही है कि जैसे वो मुझे बताती है फोन पे कि वीकनेस हो जाती है उसको, तो वो मतलब अपने आप को इतना 100% नहीं दे पाती, शिवरिंग जैसे बोलती है मुझे ऐसे शिवर हो रहा है। तो मैं तो उसको यही कहती हूँ कि अगर प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो ऐसा होगा। तो बाकी रहा फ्रूट की बात, तो फ्रूट जैसे बाहर जाएंगे तो ले आते हैं केला, मैं उसको बोलती हूँ कि कुछ नहीं है तो कम से कम ये तो खाओ आप, आपको थोड़ी सी डाइट अच्छी सी मिल जाएगी। तो उसको लगता है कि मैं केला खाऊं तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। तो मतलब इस सारे, या मुझे नहीं पता मैं इतनी दूर उससे उसे कैसे बता सकती हूँ, बस यही मैं बोलती हूँ उसको कि तू तो डाइट खा, ताजी बनी है, चाहे दो नहीं चपाती खानी, आधी खा ले, एक खा ले, सब्जी खा। तो अब मुझे ये बताओ कि जैसे वो वीक भी हो रही

0: ये ऐसे लग रहा है जैसे हड्डियां से निकली है, पहले ही बड़ी वीक सी थी वो, तो ये उसके लिए भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी ऐसा?
1: देखिए, दिक्कत तो आप खुद ही बता रहे हैं, इसमें बच्ची को प्रॉब्लम तो है।
0: हाँ जी
1: अब देखो, समस्या ये है कि हॉस्टल में खाने को काबू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि
0: हाँ
1: उसमें
0: जी
1: हमारा कोई डायरेक्ट हाथ नहीं है। उसमें जो हॉस्टल
0: हाँ
1: वाले
0: जी
1: बनाएंगे वैसे ही रहेगा। तो अब इसमें हम पहले तो ये कर सकते हैं कि इस मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि इसको कई विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसीज भी साथ में होगी, मतलब पक्का ही
0: हाँ
1: है।
0: जी हाँ जी
1: तो
0: हाँ
1: एक
0: जी
1: बार इसके बेसिक टेस्ट अस्पताल में करवा लें, उसके हिसाब से जो हमें देना होगा अतिरिक्त पोषण, वो उसको ऐड मतलब हम डाल देंगे दवाइयों से। पर केवल दवाइयों के सहारे आप सोचें चल जाए तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसका
0: हाँ
1: अब
0: जी
1: यही कर सकते हैं कि अगर आप एक लिस्ट बना लें कि जो वो नहीं खाती है, क्योंकि अब तो बड़ी होगी, अब इस उम्र में मतलब समझ भी आ जाती है बच्चे को और आदतें भी पक्की हो जाती हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना लें। वह लिस्ट जो है फिर यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हम कैसे उसका एक डाइट प्लान बना सकें। अब हॉस्टल में थोड़ा कठिन तो होगा उसको डालना, परंतु हॉस्टल में भी बात करी जा सकती है, क्योंकि कई हॉस्टल होते हैं वो इनके खुद के कम्युनिटी वाले ही होते हैं। तो वहाँ पे हम कर सकते हैं बात कि ऐसा खाना बनाया जाए, या फिर पेरेंट्स को भी मेरे को लगता है थोड़ा सा जाना चाहिए हॉस्टलों में और देखना चाहिए कि खाना है भी या ठीक कि नहीं। वहाँ के जो प्रशासन है उससे भी थोड़ी बात करनी चाहिए कि अगर खाना ठीक नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर वो एक बच्चे की समस्या नहीं रहेगी, वो पूरे हॉस्टल की समस्या हो जाएगी।
0: सर, वो उसने अपने जो उनके होते हैं ना डीन, उनसे बात की है, जो हॉस्टल के इंचार्ज है उनसे भी बात की है, तो वो कहते हैं कि हम भी यही खाते हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है मम्मा का खाना तो नहीं यहाँ मिलेगा, ये बोल सो। और भी बच्चे बोलते हैं, कुछ कंप्लेन नहीं करते, कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं, ये फास्ट फूड नहीं खाती है तो इसको नहीं है पसंद, वो थोड़ी ये एलर्जिक भी है, जैसे इसको अस्थमा टाइप का थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये बाहर की चीजें नहीं खाती है। तो मैं फ्रूट के लिए बोलती हूँ, अगर तेरी सप्लीमेंट्री डाइट अगर हम लेके दें, जैसे टॉनिक वगैरह कोई, तो सर तब भी उसको खाना तो खाना ही पड़ेगा ना।
1: वही बात है ना, खाना तो ज़रूरी है, टॉनिक एक हद तक तो ले जा सकता है ना, पर उसके आगे तो भोजन ही है।
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: इस समस्या का तो थोड़ा सरल उपाय नहीं लग रहा है आपकी, तो
0: सर, उसको
1: इसका
0: इसके साथ साथ ना नींद डिस्टर्ब रहती है, उसको कहती है मुझे नींद नहीं आती सारी रात।
1: मेरे को ऐसे लगता है ना, इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए उसके साथ रह लेना चाहिए। अगर आसपास कोई कमरा वगैरह ढूंढ के थोड़ा साथ में रह के, फिर उसको थोड़ा खुद की कुकिंग वगैरह में इंटरेस्ट डलवा के, वो फिर ज़्यादा सही तरीका लगेगा। क्योंकि अगर प्रशासन आपका इतना साथ नहीं दे रहा, तो फिर तो वो अलग ही समस्या होगी
0: जी,
1: वो।
0: ये तो प्रशासन की समस्या है, और आपको सिर्फ अपने बच्चे को ही ये समझाना है कि संतुलित भोजन का कितना ज़्यादा महत्व है उसके जीवन में। सर वो इसी इसमें ही अपना स्टडी ले रही है, उसको पता है, पर फिर भी वो कहती है कि अब आप एक बार आप भी देखोगे तो ये रोटी कच्ची होती है। बाकी बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, मैं जैसे कह रही हूँ वो अपना फास्ट फूड ले लेते हैं, तो फ्रूट्स के लिए ये कहती है, जैसे मुझे मैं बोलती हूँ कि केला है, एक बार 6 केले ले लिए तो आपका 5-6 दिन निकल जाते हैं, खाना खाने के बाद खा लिया करो अगर पेट में दर्द है, तो उसको ये दिक्कत आ रही है। जैसे आप कह रहे हो कि कोई टेस्ट करवा रहे हो, तो वो टेस्ट कौन से होंगे, कहाँ कैसे करवाने होंगे,
1: देखिए
0: डॉक्टर को
1: उसमें,
0: दिखा के?
1: हाँ जी, उसमें डॉक्टर को दिखा कर रहेंगे, क्योंकि ज़ोर से ज़्यादा टेस्ट बताना भी गलत होगा। और अगर मान लें बच्चे को देख के कुछ और प्रॉब्लम लगती है और वो मैं आपको अभी ना बताऊं, तो उसे छोड़ना भी गलत होगा। तो बेहतर यही है कि वो दिखा लें, साथ में आप तैयारी कर लें कि क्या वो खाना पसंद करती है क्या नहीं पसंद करती है। साथ में कोशिश करें कि जैसे आप साथ में रह सकें, या अगर 5-6 बच्चों को ऐसी समस्या आ रही है तो अपना अलग कुक कर दें। हमारे भी कॉलेजेस में कई बार कर लेते थे ऐसा कि वो अलग से ही फिर कुक रख के वो अलग भोजन, स्वस्थ भोजन बना देता था।
0: अच्छा, तो
1: जी
0: अगर अगर जो सप्लीमेंट की बात हो रही है, वो बिना डॉक्टर को दिखाए तो नहीं हम ले सकते ना?
1: देखिए, ऐसे होता है, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान है। अगर हम सोचें कि हम हद से ज़्यादा किसी को विटामिन मिनरल दे दें तो हद से ज़्यादा स्वस्थ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो जो ज़रूरत है उसी को पूरा करना चाहिए।
0: जी, और इसके लिए बहुत तो सर जरूर ये इसके लिए बहुत मुझे
1: ज़रूरी है कि
0: ये
1: आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें दिखाएं, वो एक बार चेक कर लेंगे ना आपकी बेटी को, फिर उसके बाद रेकमेंड करेंगे।
0: एक सेकेंड, जैसे उसको नींद की ये डिस्टर्ब हो रही है, तो ये इसी कारण से भी हो सकती है ना?
1: इस कारण से भी हो सकती है, बाकी उसको कॉलेज की चिंता भी हो सकती है। वह तो उससे बात करके और उसको देख के ही पता लग पाएगा।
0: ठीक है सर, ठीक है
1: जी, आपका धन्यवाद,
0: सर।
1: आपने प्रश्न किया, और बाकी श्रोता भी इस कार्यक्रम में हम संग जुड़ सकते हैं 01-892-22-4391 पर। और डॉक्टर साहब, यही बात है कि जैसे जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो कई बार वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं जो हमारा पैक्ड फूड है, या फिर जंक फूड जिसे हम बोलते हैं।

0: और उसमें ये देते भी हैं रीज़न कि उसमें भी सब्जियां होती हैं, क्योंकि कई बीच में ऐसे होते हैं जहां पे सब्जियां भी डाली जाती हैं। तो क्या वो बच्चों में पोषण की कमी को पूरा करते हैं या पोषण की कमी को घटा देते हैं ऐसे खाना?
1: देखिए, मेरा खुद का तो मानना है कि कोई भी कृत्रिम प्रोसेस्ड फूड जो है वो सही नहीं है।
0: जी
1: जितना हो सके जो हमारा घर का खाना है, जो हमारा लोकल खाना है, वो सबसे सही रहता है। अब आजकल के ज़माने में पढ़े लिखे लोग हैं तो वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि पैकेट के पीछे लिखा होता है कि कितनी उसमें चीनी है, कितना प्रोटीन
0: जी
1: है,
0: जी
1: कितना फैट है, तो उससे वो अनुमान लगा सकते हैं कि वो सेहत के लिए कैसा रहेगा। परंतु अब उस पर कितना विश्वास किया जाए या उसी पे ही पूरा निर्भर किया जाए, तो वो मुझे लगता है कि पूरे तरीके से सही नहीं होगा।
0: जी और सबसे अच्छा यही रहेगा कि अगर हम घर का खाना खाएं, संतुलित भोजन
1: हाँ जी,
0: करें। जी
1: बिल्कुल।
0: हेलो,
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम अमर सिंह है जी, मैं गांव बजाज है, जिला कपूरथला, पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
0: जी अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: जी नमस्ते जी।
2: डॉक्टर साहब मेरा विषय ये है ना कि मैं अब सोच करने जाता हूँ लोगों के घरों में, तो कईयों औरतों के ना बच्चे जो होते हैं समय से पहले ही चले जाते हैं,
1: आप बोले समय से पहले
2: पंद्रह
1: पैदा हो जाते हैं।
2: महीने, जैसे 15 महीना, 6 माह, ऐसे
1: हाँ
2: पंद्रह
1: जी, हाँ
2: महीना
1: जी,
2: ही कोई कोई बच जाता है। तो कईयों के तो बच्चे 3 3 चले गए, कईयों के 2 चले गए, कईयों का 1 चला गया। तो हम जब सोच करने जाते हैं तो कहते हैं कि कुदरत की मर्जी है, कुदरत भगवान की मर्जी से हो गया ऐसा। पर मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि ये बीमारी है कोई या फिर ये वाकई ये भगवान की मर्जी से ऐसा होता है। तो ये
1: देखिए
2: बीमारी है तो आप जरा बता दें कि कौन सी बीमारी, मैं उनको बता दूंगा भाई इसका इलाज कराओ, ये है बीमारी है ना।
1: देखिए ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिससे बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं।
0: जी ये
1: कुपोषण भी उसमें
0: पैदा
1: आता
0: पैदा
1: है।
0: का नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे नहीं रहते हैं।
1: अच्छा, उनकी
0: हाँ
1: मृत्यु हो जाती
0: हाँ
1: है।
0: हाँ हाँ
1: तो देखिए अब ऐसे है, वो तो अब आपको हर एक बच्चे को देख के कहना पड़ेगा कि उसमें क्या कारण रहा है। अनेक बीमारियां हैं जो पैदाइशी होती हैं, जिनका इलाज नहीं होता है, उसमें बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज होता है पर समय पे पकड़ा नहीं जाता, उनका इलाज नहीं करवाया जाता और उनसे भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी तो
2: हाँ जी
1: अनेकों बीमारियां हैं, मतलब आप हज़ारों और लाखों में गिन सकते हैं। तो इसका तरीका तो
2: डॉक्टर
1: हाँ
2: साहब, जो बच्चे की माँ को बीमारी होती है ना, ये जो समय से पहले ही जैसे 5 महीना 6 महीना गर्भ से बच्चे चले जाते हैं।
1: तो ऐसे हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। अब माँ की बीमारी भी हो सकती है, पर उससे ज़्यादा वो जो भ्रूण होता है उसकी बीमारी ज़्यादा होती है और वो पैदाइशी नुक्सी होते हैं।
2: हाँ जी इसका
1: समझ रहे हैं
2: इलाज
1: आप?
2: है ना
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मदर हैं उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए और वो चेकअप करें ना प्रॉपर, फिर पता चलेगा।
1: तो ऐसे मेरे
0: ऐसे
1: को
0: फ़ोन
1: लगता
0: पे
1: है।
0: तो बता
1: हाँ,
0: पाना मुश्किल
1: मैं
0: है ना।
1: आपको थोड़ा सा इसका ये ज्ञान दे देता हूँ कि जैसे माता, आपको पता है कि गर्भवती हो गई है, आमतौर पे एक आधे महीने के बाद लग जाता है, तो उसके बाद कम से कम 4 बार आपको अस्पताल में दिखाना ही चाहिए, कम से कम। उससे अधिक
2: हाँ जी
1: दिखाने कोई गलत बात नहीं है। अब वो 4 बार
2: हाँ
1: कब
2: हाँ
1: कब दिखाना है? एक बार कम
2: हाँ
1: से
2: जी
1: कम पहले 3 महीने में। पहले तीन
2: हाँ
1: महीने
2: जी
1: में इसलिए दिखाना है, उससे पता चल जाएगा कि वो सही में गर्भवती है कि नहीं। बच्चा जो है वो मतलब कहाँ पे, जिसे हम यूट्रस कहते हैं या जन्म थैली कहते हैं, उसके अंदर कहाँ पे बच्चा है। दूसरा,
2: हाँ जी
1: उसमें कुछ बीमारियाँ होती हैं पैदाइशी, वो उस समय भी हम पता लगा सकते हैं।
2: हाँ जी हाँ
1: उसके
2: जी
1: बाद फिर आप 3 से 6 महीने में कम से कम एक बार ले जाएं, उसमें उसके अल्ट्रासाउंड होंगे, उसको माँ को हम आयरन, फॉलिक एसिड आदि दवाइयाँ शुरू करते हैं, उन्हें फिर खान पान के बारे में समझाते हैं। उसके बाद तीसरे ट्रेमेस्टर यानी कि 6 से 9 महीने के बीच भी ज़रूर दिखाएं। तो इतना आप कर लें कम से कम, तो समय पे हम बता सकते हैं कि बच्चे को या मतलब भ्रूण को कोई समस्या हो सकती है, माँ को समस्या हो सकती है कि नहीं।
2: हाँ जी ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अभी बताऊंगा उनको जाके कि बीमारी का इलाज कराओ।
1: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी आपका भी धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा और जानकारी हासिल की। और श्रोता भी हमारे संग जुड़ सकते हैं 01-892-22-4391 पर। हेलो,
2: हेलो नमस्कार मैडम जी,
0: नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं जितेंद्र

0: कुमार घणा से बोल रहा हूँ।
1: जी जितेंद्र जी, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्या जानकारी हासिल करना चाहेंगे?
0: मैडम मेरा ना 5 साल का लड़का है
1: जी।
0: तो मैडम उसकी ना ग्रोथ नहीं होती है। एक्चुअली वो है तो 5 साल का, 5वीं कंप्लीट होने वाले लगता है ऐसे, 2 साल का ये हाइट उसकी कम है
1: जी। डॉक्टर साहब बताइए।
2: तो ऐसे अगर किसी बच्चे की, नमस्ते जी, नमस्ते, अगर किसी बच्चे की लंबाई हाइट कम रह रही है तो इसका काम कारण एक ये भी होता है कि वह बड़े लंबे समय से कुपोषित रहा है। दूसरे कारण ये होता है कि अगर माँ बाप की खुद की लंबाई भी कम हो तो वो कम रह सकती है, वो नॉर्मल चीज़ होती है। और कारण ये भी हो सकता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वे बाकी बच्चों से धीमे चलते हैं पर अंततः वे बराबरी पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अनेक कारण होते हैं। अब केवल इतने जितना आपने बताया उससे पता लगाना कि वह क्यों लंबा नहीं हो पा रहा थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए आप कभी भी अस्पताल में आएँ, इसके कुछ टेस्ट होंगे, कुछ हाथ के एक्सरे होंगे, कुछ ब्लड के टेस्ट भी हो सकते हैं, हम आपके आपसे बच्चे के खान पान का भी पूछेंगे और उस सब नॉलेज को लेके फिर हम आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि वह क्यों छोटा रहा है और उसका समाधान क्या है।
0: डॉक्टर साहब खाने पीने में तो अच्छा है ना पहले तो, पर अब दूध नहीं पीता, पहले दूध भी पी लेता था, अब कम कर दिया दूध, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो दूध कम कर दिया उसने।
2: दूध यानी माँ का दूध की गाय वगैरह?
0: गाय का दूध सर।
2: देखिए अगर आपको लगता है कि बाकी खान पान ठीक है तो दूध को कम कर भी दिया जाए तो बुरी बात नहीं, दूध बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं, पर अगर वह थोड़ा बहुत दूध पी रहा है तो उतना काफ़ी है। इसका वही इलाज होगा कि आप एक बार दिखा लें, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको बताना कि उससे क्या समस्या होगी वो थोड़ा सा कठिन है।
0: हाँ जी सर, हमने ना डॉक्टर से, किसी डॉक्टर से सलाह ली थी तो उन्होंने बताया कि इसके जो हाइट वाले हार्मोन है वो कमज़ोर है।
2: अच्छा, अगर तो ऐसी समस्या है तो वो कुपोषण से नहीं आ रही तो ये बिल्कुल ही अलग समस्या है और इसका इलाज बिल्कुल अलग है। अगर इसके ब्लड के टेस्ट वगैरह हुए हैं और उसमें उसके हाइट वाले हार्मोन कम आए हैं तो उसके लिए अलग इलाज चलता है। तो उसके लिए आपको टांडा में कभी भी आ सकते हैं, शनिवार को आए तो सही रहेगा, उस समय इसी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ आपको मिल जाएंगे और वो आपको सारा समझा भी देंगे कि कौन सी दवाई लगेगी, किस तरीके से सबसे सस्ते में आपको वो सही दवाई मिल सकेगी और कितने समय तक वो देनी होगी।
0: सर उन्होंने बताया था ना डॉक्टर ने, प्राइवेट में कंफर्म किया था, उन्होंने बताया कि इसके हार्मोन के इंजेक्शन वगैरह लगेंगे।
2: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, अगर प्रॉब्लम वही निकली है तो वही है। आप सारे कागज़ लेके एक बार इसको ज़रूर दिखा लें।
0: पर ऐसे बताया था ना,
2: देखो ऐसे
0: हार्मोन कमज़ोर है, बच्चा खा पी अच्छा रहा है, बाकी एक्टिव है बच्चा पूरा।
2: ठीक है, ऐसे है ना, बिना बच्चे को देखे, बिना बच्चे के टेस्ट करवाए थोड़ा सा कठिन होता है कहना, तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। तो अगर आप चाहें तो कभी भी उसको टांडा में दिखा लें।
0: सर आप टांडा पे बैठते हैं?
2: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: किस दिन में होती है सर आपकी ओपीडी?
2: देखो मैं तो आपको रोज़ ही मिल जाऊँगा अगले महीने तक, पर अगर आप शनिवार को आएँ तो सबसे सही रहेगा, क्योंकि जो कम हाइट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो उसी दिन बैठते हैं। तो
0: शनिवार को बैठ,
2: हाँ जी शनिवार को आ जाओ तो सबसे सही रहेगा।
0: ठीक है सर
1: जी, और कुछ जानना चाहेंगे?
0: नहीं बस मैम यही पूछना।
1: जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं बच्चों में कुपोषण के बारे में और लगता है एक और श्रोता लाइन पर आ गए हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, नमस्कार जी।
3: नमस्ते मैम जी।
1: हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए।
3: मैं मुकेश बात कर रहा हूँ देरा से जी।
1: जी मुकेश जी, क्या जानना चाहेंगे?
3: मैंने ये पता करना डॉक्टर साहब से कि जैसे कि मेरा एक बेटा है थर्ड क्लास में पढ़ता है
1: जी,
3: तो उसमें क्या है कि एक्चुअली ना वो उसकी डाइट भी ठीक है, इनकी उसको हम हर एक चीज देते हैं, पर उसके थोड़ा दुबला सा रहता है, इनकी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ऐसी कोई?
2: देखिए ऐसे है, इसमें हमें बच्चों का ना वज़न तथा एक जो मैंने कारक बताया था BMI, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वे स्वस्थ है कि नहीं। तो कई बार हमको देखने में बच्चा दुबला लगता है, परंतु जब हम उसकी लंबाई और वज़न के हिसाब से अनुमान लगाते हैं तो कई बार वे ठीक भी निकलता है। तो अगर जैसे बच्चे का बिल्कुल सही वज़न हो, बिल्कुल सही आप लंबाई माप पाएँ, उसके बाद एक चार्ट्स आते हैं बच्चों के, खास चार्ट्स होते हैं क्योंकि हर बच्चे की उम्र के हिसाब से अलग हाइट होगी, तो अगर वह उसमें ठीक आता है तो डरने की आवश्यकता नहीं। अगर वह उसके बाहर आता है तो हम आगे कार्रवाई शुरू करते हैं, फिर आगे उसके टेस्ट वगैरह होंगे।

0: तो अगर आप चाहें इसको दिखाना, तो आप अपने कभी भी नज़दीकी जो भी आपका अस्पताल है वहाँ पे ये ज़रूर दिखा लें, और वह आपको आगे ठीक गाइड कर देंगे।
1: नहीं तो उनको क्या, जैसे हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो उनको ये बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा दुबला सा रहता है ये, इसके बारे में बोलेंगे ना उनको।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही बताना है आपने कि आपको
1: हाँ क्योंकि
0: अन्य
1: एक्चुअली
0: बच्चों के
1: उसके, हाँ
0: मुकाबले ये दुबला लग रहा
1: क्योंकि एक्चुअली वैसे कई बच्चों जैसे कोई खाना नहीं खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, जैसे उसका तो खाना भी ठीक है, अब प्रॉपर
0: है।
1: खाना खाता टाइम से, फ्रूट
0: देखिए, ऐसे होता है,
1: वगैरह
0: कई
1: ये।
0: बार हमें लगता है कि हम पर्याप्त भोजन दे रहे हैं, पर भोजन में कई बार कुछ पोषक तत्व कम रह जाते हैं। अगर हम असंतुलित आहार लेते हैं तो उसमें वे कम रह सकते हैं। तो भोजन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, विस्तृत तरीके से पूछा जाएगा, और उसके बाद आपको अगर हमको लगता है कि उसमें कुछ कमी होगी तो उसको ठीक करने के उपाय भी बताए जाएंगे।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद जी।
2: जी धन्यवाद आपका भी प्रश्न पूछने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि, जी प्रश्न बाद में पूछते हैं, पहले श्रोता हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो मैम जी, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए।
3: मेरा नाम पूर्ण चंद है जी,
2: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मैं मंडी से जी, मतलब विधानसभा क्षेत्र राज्य।
2: जी, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
3: जी, मेरे पास एक पोता ऐसा है, उसकी ना तो ग्रोथ है ना ये दूध पीता है, एक तो 4-5 साल के बाद इसने थोड़ा थोड़ा खाना खाया है,
0: हाँ जी, आपको
3: तो
0: वो कमजोर लगता है
3: दूसरी
0: मतलब?
3: ऐसे आज तो है लगभग ठीक, ग्रोथ ही नहीं है, बिल्कुल लकड़ी की तरह है।
0: आपको लगता है कि अन्य बच्चों के मुकाबले वह थोड़ा छोटा रह गया है?
3: हाँ जी, हाँ जी, वैसे सेहत ही नहीं है जी उसकी, बॉडी मिल जाए कुछ, ग्रोथ ही नहीं है।
0: तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जो बच्चे को खाने की आदत होती है, अगर वह शुरुआत से ठीक से नहीं डाली जाए तो आगे काफ़ी कठिनाई आती है। आपकी बात सुन के ऐसा ही लग रहा है कि उसको थोड़ी सी आदतें खाने की ठीक नहीं डली हैं। तो इस उम्र में क्या है, आपको उसे, क्योंकि थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो उसे समझाया भी जा सकता है, परंतु उसे डांटना नहीं, उसे प्यार से करना है। अगर माँ बाप जैसे खुशी खुशी खाना खाते हैं, उसे एनकरेज करते हैं, उसे आश्वासन देते हैं कि आप खाओगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपकी सेहत बन जाएगी, आप बाकी बच्चों से फास्ट दौड़ोगे, इस तरीके से उसे एनकरेज करके आप कोशिश कर सकते हैं उसे खिलाने की। जहाँ तक की बात है कि क्या खिलाना है, तो उसके लिए संतुलित आहार के लिए न्यूट्रिशनल काउंसलर्स जो आजकल काफ़ी अस्पतालों में मिल जाएंगे, उनसे बात करी जा सकती है। वे आपको प्रॉपर डाइट चार्ट बना के दे सकते हैं, जिसमें क्या क्या उसे दिया जाए, अंडे डाले जाएं उसकी डाइट में, उसे चाहे खाने में कौन से अनाज दिए जाएं, कितनी दाल दी जाए, अगर आप मांसाहारी हैं तो कब कब उसे नॉन वेज दिया जाए, तो वे आदि हिसाब से एक अच्छा सा टेबल डाइट चार्ट बना के आपको दे देंगे, और कोशिश करें फिर आप उस डाइट चार्ट के हिसाब से उसे खाने के लिए एनकरेज करें।
3: जी, ऐसा हुआ ना जी, उसको पहले निप्पल से दूध पीने की आदत थी जी।
0: ये तो आपने थोड़ी गलत चीज़ कर दी। ये सारे श्रोतागण को मैं कहना चाहूँगा, जितना हो सके बच्चे को निप्पल से दूध ना पिलाएं। उससे क्या होता है कि बच्चा माँ के साथ लग के दूध नहीं पीता, क्योंकि
3: हाँ जी, हाँ
0: निप्पल
3: जी,
0: और माँ की जो अटैचमेंट होती है बिल्कुल अलग होती है, वह बिल्कुल अलग तरीके से चूसते हैं उनको। तो एक की आदत पड़ जाए तो दूसरा नहीं होता, और उससे फिर एक कुचक्र शुरू हो जाता है। अब वह माँ का दूध नहीं पिएगा, फिर आगे जाके वह ठोस खाने को भी ठीक से नहीं खाएगा, फिर वह आगे जाके असंतुलित आहार खाएगा, तो फिर कमजोरी का कुचक्र चलता ही रहता है।
3: डॉक्टर साहब ऐसा हुआ कि जिस टाइम से इसको मतलब निप्पल बंद कर दिया, उसी टाइम से उसने दूध ही छोड़ दिया।
0: वही समस्या आ गई ना, अब उसे आदत पड़ चुकी है। तो इसका यही है कि आप उसको, अब तो वह बड़ा हो चुका होगा तो ग्लास से भी पिलाना शुरू कर सकते हैं, तो अब तो आप उस पे आए तो ज्यादा सही रहेगा।
3: ठीक है, ओके ओके,
2: जी धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। और डॉक्टर शौर्य, अब हम ये जानना चाहेंगे कि यूं तो माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी अलर्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां हैं आपकी नज़र में जो वो कर बैठते हैं और जिससे बच्चा कुपोषित हो जाता है?
0: देखिए, कुछ चीज़ें जैसे माँ बाप आजकल बिजी रहते हैं, नौकरियों पे जाते हैं,
2: जी
0: तो कई बार वह बच्चे को पीछे से खाने के लिए बिस्किट दे देते हैं या फिर अन्य पैकेट में आने वाली चीज़ें दे देते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड किया जाए तो सबसे सही रहेगा।
2: जी
0: दूसरा ये है कि कई बार माँ बाप बच्चे को इंटरेस्ट बनाने के

0: ये उसके सामने टीवी फोन आदि रख देते हैं और फिर उसे खिलाने की कोशिश करते
1: जी
0: हैं। उससे भी बिल्कुल गलत आदतें पड़ती हैं, उससे बच्चे हो सकता है जरूरत से ज़्यादा भी खा लेते हैं, तो वह भी कुपोषण का कारण बनते हैं, तो वो भी जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। बाकी कई माँ बाप बच्चों को पहले से ही टॉनिक देना शुरू कर देते हैं, हद से ज़्यादा टॉनिक दे देते हैं, उससे अलग समस्या आती हैं। तो अगर बच्चे को ज़रूरत ना हो तो उसे कोई टॉनिक नहीं देना चाहिए।
1: जी हेलो हेलो।
2: हेलो, हेलो
1: हाँ जी
2: बंद्रा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, अपना
2: डॉक्टर
1: प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर साहब, समय कम रह गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में पूछना चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, एक बच्चे तो होते हैं, मतलब 5 साल के बाद तो बच्चे समझदार हो जाते हैं, वो उनको डाइट जो भी दी जाए समझ आते हैं। और एक छोटे बच्चे को तो 1 साल तक तो माँ के दूध के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, तो 1 साल से लेकर 5 साल के बीच जो बच्चे होते हैं उनकी डाइट का कैसे क्या प्रोसीजर होना चाहिए?
0: हाँ जी, इसके बारे में हमने थोड़ी सी शुरुआत में भी बात की थी। 6 महीने की वह उम्र होती है जब माँ का दूध, सिर्फ केवल माँ का दूध बच्चे को पूरा पोषण नहीं दे पाता है, तब हम उसे ठोस पदार्थ धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो जैसे बताया था कि सबसे पहले अनाज से शुरू करें, एक आधा चम्मच दें, धीरे धीरे बढ़ाएं, उसके बाद अनाज और दाल पे लाएं, उसके बाद जो घर पे रोज़मर्रा की चीज़ें बन रही हैं उन पे लाएं। अब एक चीज़ जो है कि कितना भोजन देना है, तो उसकी भी हमने बात की थी कि 1 साल की उम्र तक बच्चे को सारा घर का खान पान जो बन रहा है वो देना है, और जितना माँ दिन में खा रही है उसका आधा। जब तक बच्चा 3 साल का होता है तब तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना पिता खा रहे हैं उसका आधा, और जब तक बच्चा 6 साल का होता है तो जितना पिता खा रहे उससे आधे से ज़्यादा उसे खाना चाहिए। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह ठीक खा रहा है कि नहीं।
2: डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद राणा जी आपका भी। और डॉक्टर साहब, आज की जो बातचीत अभी तक हमने जितनी भी की है उसमें हमने ये जाना कि बच्चे का स्वस्थ होना सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है, ज़रूरी है कि वो जो भी खाए उसमें सही मात्रा में पोषक तत्व भी हों। और हमारे कार्यक्रम का समय भी अब कुछ ही मिनट शेष हैं, तो हम आपसे चलते चलते यही कहेंगे कि कृपया ये बताइए कि माता पिता किस तरह अपने बच्चे को पोषित रख सकते हैं, उसे कुपोषण से बचा सकते हैं।
0: देखिए, अंत में तो मैं थोड़ा सा इसमें शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के लिए थोड़ा सा अलग अलग बताना चाहूँगा।
1: जी
0: जो कि मांसाहारी लोग होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी होने के कम चांस होते हैं, मतलब उसमें कम होती है, उन्हें आयरन की कमी हो भी कम होती है। तो अगर वह हफ्ते में 2-3 बार मांस का सेवन कर लेते हैं तो उनका पूरा हो जाता है। अगर जो शाकाहारी लोग हैं उनका थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा पेचीदा रहता है। अगर वे अंडे खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दिन के 1 या 2 अंडे अगर आप बच्चे को खिला दें तो उससे उसको प्रोटीन की पूर्ति काफ़ी अच्छे से हो जाती है। परंतु अगर वे अंडे नहीं खाते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि चावल और दाल, चावल क्या कोई भी अन्न और दाल इकट्ठे उसे दी जाए, अकेले अकेले में ये सारा प्रोटीन की पूर्ति नहीं करते, तो इन्हें इकट्ठा ही देना है। और तभी हमारे हर खाने में, चाहे आप भारत के नॉर्थ से साउथ कहीं भी चले जाएं, हमेशा कोई ना कोई अन्न और दाल इकट्ठे होते हैं। इसके सिवाय उन बच्चों में आयरन की कमी होने के भी चांस रहते हैं, तो समय समय पे जो पेट में कीड़ों की दवाइयाँ दी जाती हैं वे ज़रूर दिलवाएं। स्कूल में आयरन दिया जाता है, सुनिश्चित करें कि फिर दिया जा रहा है और बच्चा ले रहा है। उसके बावजूद अगर लगता है कमज़ोर है तो अतिरिक्त आयरन भी देना पड़ सकता है, वह डॉक्टरी सलाह के बाद ही दें। इसके सिवा अगर कुछ और कमी लगती है तो बच्चे को ज़रूर दिखाएं और उसके हिसाब से इलाज करवाएं।
1: जी डॉक्टर शौर्य कालिया, हमें अपना समय देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए और साथ ही इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया जी।
1: तो श्रोताओं, हम भी आपसे यही कहेंगे, बच्चों की थाली में पोषण होगा तो उसके भविष्य में खुशियों के रंग होंगे। अपने बच्चों को प्यार दीजिए, समय दीजिए और सबसे बढ़कर उन्हें सही पोषण दीजिए। इसी संदेश के साथ आज के आरोग्यम कार्यक्रम से अब मुझे अनुमति दीजिए। मैं हूँ वंदना रैना और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। तकनीकी सहयोग हमें मिला अंकित धीमान से। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं कार्यक्रम गीतों का कारवा लेकर। और आज के इस कार्यक्रम में हूँ मैं आप सभी की रेडियो दोस्त प्रवीण। स्वागत आप सभी श्रोताओं का।

अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं छुपा रुस्तम फिल्म से एक बेहतरीन संगीत। अलका याग्निक की आवाजें, आनंद मिलिंद का संगीत, बोल आनंद बख्शी के

वाह वाह राम जी, इस फिल्म से ये गीत हमारे श्रोताओं ने सुना। सुखविंदर सिंह की आवाजें थी, संगीत आनंद राज आनंद का, गीतों का कार्यवाही कार्यक्रम हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

सब कुशल मंगल इस फिल्म से ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। हर्षित सक्सेना, भूमि त्रिवेदी की आवाजें, संगीत हर्षित सक्सेना का और बोल समीर अंजान के।

गीतों का कारवा ये सफर आज हमारे श्रोता तय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त प्रवीण के साथ। हिम्मतवार इस फिल्म से ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बाबुल सुप्रियो साधना सरगम की आवाजें संगीत नदीम श्रवण का।

इसी अंतिम गीत के साथ हमारा आज का गीतों का कारवा ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं हिमाचली गीत और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर लेकर। पहाड़ों के सुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो एक बार फिर से प्रवीण हाजिर है पहाड़ों के सुर कार्यक्रम लेकर।

इस लोकगीत में हमारे श्रोताओं ने सुना कर्नेल राणा की आवाज को। अब सुनिए शक्ति चंद्र साथियों की आवाज में माता की ये भेंट।

पहाड़ों के सुर ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। अब सुनिए बलदेव सांख्यान की आवाज़ को।

0: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रादेशिक समाचार डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हिमाचल के दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुजानपुर टीहरा की प्रधानाचार्य मंजरी वी महाजन और आईटीआई मंडी के अनुदेशक जगमोहन शर्मा शामिल है। कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन शिक्षकों को ये पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानाचार्य मंजरी वी महाजन ने शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। वहीं आईटीआई मंडी के फिटर ट्रेड के अनुदेशक जगमोहन शर्मा को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। हिमाचल के ग्रामीण पर्यटन को देश दुनिया के रूबरू करवाने में चलो चंबा अभियान अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में आयोजित प्रतिष्ठित बिजनेस प्लस लीजर ट्रैवल एंड माइक BLTM 2026 में चंबा के दूरदराज गांवों, अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य, लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को देश विदेश के प्रमुख टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल विशेषज्ञों के समक्ष प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। सामाजिक संस्था नॉट ऑन मैप के सहयोग से जिला के विभिन्न अंचलों से आए होमस्टे संचालकों, कारीगरों और युवाओं के दल को इस विशाल मंच पर अपनी बात रखने का अवसर मिला। एक्सपो के दौरान जिला के सात प्रमुख क्षेत्रों की समृद्ध विरासत और विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया। इनमें खजियार और डलहौजी के प्राकृतिक वन क्षेत्र, पांगी और भरमौर की समृद्ध जनजातीय परंपराएं, ट्रैकिंग रूट्स और पौराणिक इतिहास शामिल रहे। इस एक्सपोजर विजिट में शामिल प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता जताते हुए जिला प्रशासन चंबा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और एक्ट संस्था का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है।
1: मेरा नाम वर्षा जरियाल है और हम जो है चंबा हिमाचल प्रदेश से आज दिल्ली आए हैं, जहाँ पे BLTM का हमारा

0: चला है। तो तीन दिन का इवेंट था, आज लास्ट दिन है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत तो सारे लोगों से मिलना हुआ जिनसे हमें नई नई चीज़ें सीखी हैं और अपना भी हमने आइडियाज एक्सचेंज किए हैं, उनके आइडियाज अपने से लिए, और कोशिश ये रहेगी कि आगे भी हम जो है ऐसे ऐसे इवेंट्स में, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिले इतना बड़ा हमें, और होप कि आगे भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें मिलते रहे। थैंक यू।
1: मेरा नाम मनोज कुमार, मैं हिमाचल प्रदेश चंबा से आया हूँ और BLT में आकर जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना बड़ा मंच था, देश विदेश से यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोग जो है ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पहुँचे हुए थे। जो हम यहाँ पर जो कल्चर को प्रमोट करने के लिए आए थे, तो सबका रुझान जो है ये इसी ओर था।
2: मिस्टिक विलेज के बारे में रीड कर रही थी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, क्योंकि ये एक होम स्टे है, पर ये सिर्फ होम स्टे जो है वो सिर्फ आपके स्टे के बारे में या टूरिज्म तो प्रमोट कर ही रहा है, बट उसके साथ साथ कल्चर को भी प्रमोट कर रहा है। तो आप अगर यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ के कल्चर्स के बारे में पता चलेगा, कुजीन के बारे में पता चलेगा, और एक बहुत ही होमली इन्वायरमेंट आपको मतलब मिलेगा जो है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि सब कुछ काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। आप जब इस तरीके के होम स्टेज और एक नॉट ऑन मैप भी है इनका एक और वेंचर, तो उसके थ्रू जब आप यहाँ जाते हो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ में अगर आप रुकते हैं, तो आपको सिर्फ नेचर देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं मिलता, उसके साथ साथ आपको उस रीजन और उस जियोग्राफी के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग।
3: मॉनसून की बारिश के बीच हिमाचल में सेब सीजन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए रोजाना 1.5 लाख से ज़्यादा पेटियां भेजी जा रही है। कृषि उपज विपणन समिति के अनुसार अब तक 60 लाख पेटियां बाहरी राज्यों को भेजी जा चुकी हैं। वहीं अब तक करीब 1 करोड़ पेटियां हिमाचल और बाहरी राज्यों की मंडियों में पहुंच चुकी है। इस बार फसल कम है, लेकिन बागवानों को दाम अच्छे मिल रहे हैं। शिमला और किन्नौर के 20 किलो बॉक्स का दाम 400 से 4000 रुपये प्रति पेटी तक बिक रहा है। लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर के साथ कल लाहौल के जोबरंग पुल का निरीक्षण कर ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को जाना। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से जोबरंग, राशेल और रापे गांवों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। कई बार पानी पुल के ऊपर तक पहुंच जाने से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, राशन की व्यवस्था और किसानों को उनके उत्पाद बाजार तक ले जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोविंद ठाकुर ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए नदी से पर्याप्त ऊंचाई पर नया पुल बनाने की आवश्यकता जताई। रवि ठाकुर ने कहा कि करीब 3 वर्षों से समस्या सामने आने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने सरकार से तत्काल धनराशि उपलब्ध करवाकर सुरक्षित और स्थायी पुल निर्माण की दिशा में कदम उठाने की मांग की है। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:00 PM। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 103.4 MHz पर सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए।
5: नमस्कार और श्रोताओं, आज के अंक में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको विदित है कि इस कार्यक्रम में हम एक व्यक्ति विशेष जिसने अपने जीवन के अनेक पड़ाव पार किए हों उनसे बात करते हैं। जीवन में क्या कुछ सीखा, क्या कुछ उन्हें दुश्वारियां आई, क्या कुछ जीवन ने उन्हें प्रेरणा दी, क्या कुछ लेकर बातों को जो है आगे बढ़े, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। तो ऐसी ही एक शख्सियत है हम संग जो आज हमारे स्टूडियोज में हमारे मध्य मौजूद हैं। तो नमस्कार जी, अपना नाम बताइए और पूर्ण ब्यौरा दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं।
6: मेरा नाम हरि सिंह
5: जसरोटिया। तो हरि सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से?
6: मूल रूप से तो पैदाइश जो है वो यहाँ चढ़ी के नीचे द्रोटू गांव में।
5: द्रोटू गांव में जी। तो वही आपका घर था?
6: जो वही माँ बाप ने बनाया था, फादर ने, और बाकी जो हमारे बुजुर्ग जो थे दादाजी वो मनई से आए थे, जसरोटिये बहुत ज्यादा है वहाँ
5: जी। तो जम्मू कश्मीर में पड़ता, जम्मू
6: से तो हमारे एंसेस्टर आए थे ना
5: जी। कब आए थे कोई?
6: वो तो 150 साल पहले के आए हूँ, मनई में परदादा हमारे वो मनई में रहे
5: जी। तो कुल कितने भाई बहन हैं आप?
6: मैं तो अकेला ही हूँ ना इस
5: बार। अकेले, बहन कोई नहीं है?
6: बहन नहीं है, पर जब माँ बाप के घर में इतने दिन औलाद नहीं हो तो उन्होंने एक लड़की अडॉप्ट

0: कहाँ पर पहुंचते या इंजीनियर बन सकते या क्या बनते हैं।
1: जी
0: वो उत्सुकता के पांचवी छवीं तक की पढ़ाई ना होती है।
1: जी तो आपकी पढ़ाई जो है कहाँ से शुरू हुई, किस स्कूल से हुई शुरू?
0: एक लदवाड़ा,
1: लदवाड़े में
0: सीधा आर का रास्ता, बड़ा अच्छा पदरा लेवल बाकी थी 1.5 किलोमीटर।
1: अच्छा, तो आपकी जो है पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई?
0: दसवीं तक तो रैत स्कूल होगी ना।
1: जी रैत स्कूल में आपका दसवीं, कोई पुल था उस वक्त, नाला आ जाता था बरसात में कभी?
0: वो तो चंबी का पुल बड़ा मशहूर था।
1: तो पुल तो अंग्रेजों के जमाने में बना था कोई?
0: अंग्रेजों के टाइम में बहुत अच्छा पुल बना हुआ था वो, काफी
1: अच्छा,
0: अब भी है निशान।
1: तो एक पुल तो हम कांगड़ा के पास देखते हैं, अंग्रेजों के जमाने के जो पुल हैं वो आज भी चल रहे हैं?
0: अब वो तो चल रहे हैं,
1: हमने देखा कि रेलवे लाइन थी वो भी चल रही है।
0: तो
1: रेल आपके दौरान ही बनी थी जब आप छोटे थे?
0: रेल का ही तो सर्वे के टाइम में तो मेरे पिताजी की नौकरी शुरू हुई थी।
1: अच्छा,
0: तो वो सर्वे पठानकोट से लेकर जोगिंदर नगर वाला जो पता नहीं कहाँ तक उनको सर्वे का काम किया।
1: जो बचपन में आप पढ़ाई करते थे, कोई ऐसे यादगार पल, घर में कोई डांट पड़ी हो किसी से, परिवार के सदस्य से, दादी से, नानी से, किसी से?
0: ना, डांट तो सिर्फ माँ और दादी से, वो सिर्फ डोमेस्टिक वर्क के लिए थी, पढ़ाई के लिए डांट क्योंकि वो दोनों अनपढ़ थी।
1: जी आजकल के बच्चों को कोई काम नहीं करना पड़ता है, कोई कुछ नहीं, उस वक्त तो गाय भी पाली होती थी।
0: गाय पाली, उसका मैं दरख्तों से घास भी काटना है, और एक मेजर मनकोटिया की थी एक लंजो, तो वहां पर खड़ बिकता था वो।
1: जी बचपन में कोई ऐसी यादगार पल जो होता है कि कभी चारा लाने गए, कोई घास लाने गए, पांव टूटा हो, कोई चोट लगी हो, दांत लगा हो?
0: कोई बताने जा रहा हूँ ना
1: जी,
0: कि जब घास काटने गए तो एक वो सिंबल का दरख्त था, उसके ऊपर रंगड़ा जी पानी थी
1: जी,
0: तो एक चील आई, वो बैठ गई उस पर, उसने तोड़ दिया और पूरे मेरे सर पर और पूरा बॉडी पर, और फिर ये अभी भी ये निशान है। उसके बाद ताया जी मेरे वो उठा करके ले आए, और फिर मेरी माँ ने रातों रात हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल डॉक्टर भी जा चुका था, तो
1: अच्छा।
0: कंपाउंडर को बुलाया तो उसने कुछ इंजेक्शन दिया, तो इंजेक्शन से पेशाब जो था वो बिल्कुल निकल गया, वो लव की तरह लाद रंगी से निकल गया।
1: अच्छा,
0: उसने पूरा जहर निकाल दिया, कुछ अच्छा तजर्बकार था, उसकी वजह से मैं बच गया, नहीं तो डेथ के चांसेस भी हो सकते थे
1: जी, क्योंकि इतने रिंगल काट जाए बहुत जो है मुश्किल होती है फिर, क्योंकि वो जो है मांस लेते और पूरा का पूरा समूह पड़ जाता है,
0: काफी निशान पड़ गया था
1: जी। तो एक वो यादगार था कि आपने मौत के मुंह से निकल के आए,
0: मौत के मुंह से निकलने।
1: तो माता जी तो बहुत रोई होंगी उस दिन? तो बहुत
0: रोना नहीं, वो तो नहीं हिम्मत की, रातों रात ले गए उठा करके।
1: कितने किलोमीटर चले थे पैदल माता?
0: वो 3-3.5 किलोमीटर तो है,
1: रात को जो है 3-4 किलोमीटर चलना जो है महिला के लिए। तो उसके बाद जो है पढ़ाई के, आपने दसवीं तक पढ़ाई की, दसवीं में कुछ जो है यहाँ चढ़ी में कुछ और कुछ समस्या आई कोई किसी प्रकार?
0: रात में नहीं, वहाँ कोई समस्या नहीं, वो पढ़ाई ठीक ठाक ही चलती रही, पर यह है कि टीचर कभी पूरे नहीं होते थे, इसलिए बीचकार गैप पड़ जाता था। कुछ यही है कि भाई जो टीचर मारते हैं उनका काम करना है, जो टीचर गैर हाजिर है तो उसका सब्जेक्ट है वो कमजोर रह जाते थे, ये हो जाता
1: जी। तो पुराने समय में होता था कि माँ बाप जो है, जो गुरुजन होते थे, अध्यापक होते थे, उनको ये कहते थे कि अब बच्चा आपके पास है, आपने पढ़ाना है इसको, सब कुछ करना है। तो उसमें जो है कई बार पिटाई भी बड़ी होती थी?
0: पिटाई थी, जब मैं पहली बार गया तो जो पहले हेडमास्टर थे वो ज्यादा पिटाई करते थे, और दूसरे मास्टर थे वो भी ज्यादा पिटाई करते थे।
1: अच्छा, तो कौन कौन से विषय थे?
0: चौथी से पंजाबी शुरू हुई
1: जी,
0: और छठी क्लास से संस्कृत, और हिंदी तो पहले से ही शुरू होती
1: जी। तो अंग्रेजी का कब से शुरू हुआ?
0: अंग्रेजी भी छठी से ही
1: शुरू है,
0: छठी से अंग्रेजी।
1: जो तो गणित और
0: गणित भी पहले से ही
1: शुरू,
0: एक दो की गिनती जो ये।
1: तो ऐसे में जो है पंजाबी पढ़ाने वाले सरदार होते थे क्या?
0: नहीं, अपने मास्टर जी
1: पढ़ाते थे, वो आती थी उनको?
0: आती पंजाबी तो, उस वक्त कांगड़ा ही पंजाब में था ना
1: जी,
0: 66 में हिमाचल में आए ना।
1: बिल्कुल जी, तो पंजाबी जो है आपको सीखने में मजा आता था कुछ? क्योंकि आजकल तो पंजाबी गाने भी सुनते हैं लोग, यहाँ जो है प्रचलन बहुत है।
0: मेरे मामे सूर्या नगरोटे थे, और वो मेरी नानियां वगैरह थी, वो गगरेड़ से, तो वो पंजाबी बोलते थे।
1: अच्छा हाँ, क्योंकि पंजाब के साथ
0: पंजाब से ज्यादा।
1: ऐसे में जो है कोई ऐसा पल जो है जिसमें आपको लगा हो कि मुझे उर्दू या पंजाबी या संस्कृत पढ़नी नहीं थी लेकिन मुझे पढ़नी पड़ रही है, कुछ ऐसा लगता था?
0: जब मैं IIT मद्रास से, आजकल चेन्नई है, पहले हमारे टाइम में स्टेट का नाम भी मद्रास
1: था जी,
0: और सिटी का नाम भी मद्रास
1: जी, बिल्कुल जी।
0: तो जब आया तो पता चला कि हिमाचल में उर्दू जरूरी है, तो जब तक नौकरी नहीं लगी थी 1-2 महीने, तो मैंने उर्दू सीखने की कोशिश की थी ताया जी से।
1: दसवीं के बाद जो है
0: ये तो

0: धर्मशाला कॉलेज,
1: धर्मशाला कॉलेज, उसमें एक बार जो 10वीं के बाद 11वीं जो है कॉलेज में ही होती
0: कॉलेज
1: थी।
0: में
1: तो कितने साल के थे डिग्री आपकी?
0: कॉलेज में बीएससी 4 साल की।
1: 4 साल की। बीएससी के बाद आपने कोई और भी पढ़ाई की फिर?
0: बीएससी के बाद इंजीनियरिंग में।
1: किस क्षेत्र में? आईआईटी कहाँ?
0: मद्रास में।
1: तो वहाँ कैसे जाना हुआ आपका?
0: ये कंपटीशन टेस्ट था, वहाँ कंपटीशन पास हो गए तो उसमें उन्होंने बुला लिया।
1: अच्छा, तो ये परीक्षा कहाँ हुई थी आपकी कंपटीशन की?
0: दिल्ली में।
1: दिल्ली में। तो किसी ने जानकारी दी कि इसका कंपटीशन है?
0: कॉलेज में आ गया था एड।
1: अच्छा, कॉलेज में पहुंच गया।
0: कॉलेज में आ गया और मेरा एक क्लासमेट था,
1: विज्ञापन जो है कॉलेज में पहुंच गया।
0: विज्ञापन पहुंच गया तो मेरा एक क्लासमेट था तो उसने बताया कि हम अप्लाई करते हैं, और उसने भी किया, मैंने भी किया और वो अपने साथ ले भी गया। लकली उस वक्त डॉक्टर शालिग्राम जी भी, वो भी उसी ट्रेन में जा रहे थे, हमारी बुकिंग भी करवा दी उन्होंने।
1: अच्छा,
0: अपने घर में भी ले गए थे और दिल्ली भी काफी घुमाई उन्होंने। और फिर टेस्ट में मैं क्लियर हो गया और दूसरा मेरा साथी वो रह गया था, वो
1: द्रास में जो हो गए, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो है आपको दिक्कतें परेशानी कुछ आई?
0: ये था, खाने पीने की दिक्कत आई तो नॉर्थ इंडियन हमने मसाला मैस के नाम से लग, वरना रोज सांबर रसम वगैरह
1: जी
0: वही खाद्य पदार्थ वो इतने हमें पसंद नहीं थे
1: जी। क्योंकि देखो ना, आपने बचपन में जो खाए होता है उसी का आनंद आता है। हमें जो रोटी खाने में मजा आएगा तो बाकियों को थोड़ी आएगा, उनको दक्षिण भारत के लोगों को जी।
0: और उनका खाने का वो उनके सर देख नहीं सकते, ऐसे खाते थे। पर उनका कल्चर ये है कि दे लाइक टू टेक मील विद हैंड, चम्मच बिल्कुल नहीं यूज करते।
1: इस दौरान जो है हॉस्टल में जो है क्या कुछ दुश्वारियां आई? कुछ जैसे जमीन पर बैठ के खाते थे, जैसे हमारे जो पैंट लगाते
0: ना, जमीन का नहीं चक, वो तो ठीक है,
1: ठीक था।
0: अच्छा, सब कुछ ठीक था। इवन एक फैसिलिटी ये थी कि सिंगल रूम मिलता था। ये जो हॉस्टल के चिड़ियाघर है, एक ही कमरे में 6-6 बच्चे पढ़ते हैं, वो गलत हो जाता है। धर्मशाला कॉलेज में था एक सिर्फ एक क्यूबिकल हॉस्टल था आर्मी के, उनको एक एक कमरा मिल जाता था, वो ठीक रहता है ना
1: जी।
0: क्योंकि पढ़ाई में दो होंगे तो बातें करेंगे, डिस्टर्बेंस होगी ना।
1: तो ऐसे में जो है, जैसे उस वक्त जो है आपको रेलगाड़ी में जाना पड़ता था, कैसे लेते थे, कहाँ से कैसे सफर करते थे?
0: पहले गए थे जब एग्जाम देना था, और फिर बाबूजी मुझे रेलवे का पास भेज देते थे।
1: अच्छा,
0: तो कांगड़ा मंदिर से पठानकोट, पठानकोट से फिर आगे ट्रेन।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर जो है आपको रिजर्वेशन पूरा हो जाती थी सारा कुछ, तो आपको ज्यादा समस्या नहीं उत्पन्न होती?
0: ना, सफर में कोई समस्या नहीं, क्योंकि उस वक्त थर्ड क्लास होती थी
1: जी,
0: सेकंड का पास मुझे मिल जाता था।
1: तो उसके उपरांत जो है जब आप वहां से डिग्री लेके आए, तो आपने कौन से विषय में पढ़ाई की थी वहाँ?
0: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
1: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
0: क्योंकि बचपन से जब गांव में थे तो बिजली तो उस वक्त थी नहीं, तो मेरे रिश्तेदार नानी के देवरानी के भाई साहब वो एसडीओ लगे हुए थे धर्मशाला में, तो धर्मशाला में उनके पास जो आया तो पहली बार मैंने जो स्विच ऑन ऑफ करके इलेक्ट्रिसिटी पहली बार बड़ी हैरानी लगी, मैंने क्या क्या जादू है ये। हाँ, उसी से क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी भी कोई चीज है।
1: ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन एक अपने आप को अलग सी फीलिंग देती है।
0: इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप ही अलग फीलिंग है। इस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी हर चीज, अगर हमें पानी चाहिए तभी इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी से पानी नहीं पहुंचेगा लोगों के पास। और जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो भी इलेक्ट्रिसिटी।
1: अब तो बिजली से चलने वाली वाहन भी आ रहे हैं, कारें भी आ रही हैं।
0: बिल्कुल, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना, ये भी इलेक्ट्रिसिटी ने आइडिया दिया है।
1: जी जी जी। तो उसके उपरांत जो है जैसे आप डिग्री करके आए, आपने फिर परीक्षाएं दी होंगी नौकरी?
0: नहीं, नौकरी के लिए परीक्षाएं नहीं थी। उस वक्त नया नया बिजली बोर्ड बना ही था।
1: अच्छा,
0: तो उस वक्त ये था कि जरा पोस्टिंग के लिए टाइम लगा। डायरेक्ट एसडीओ बाद में तो बढ़ने लगे, पर मैं जूनियर इंजीनियर की लाइन मैन से प्रमोट होते थे, वो लाइन सुपरिटेंडेंट बनते थे, जो डिप्लोमा होल्डर थे वो उनको एसओ बोलते थे, सेक्शन ऑफिसर।
1: तो हरी सिंह जी, आईआईटी में आपके मद्रास सिलेक्शन हो गई थी, चुनाव हो गया था, तो उसके लिए जो है पहाड़ी रियासतों के लिए कोटा भी होता था?
0: सिर्फ यही था कि हिमाचल से ये एक आर्मी का कैप्टन था, आर्मी से कैप्टन 3-4 थे पर एक हिमाचल का भी एक था, तो उसने मुझे बताया कि भाई हिमाचल गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प करती है, तो वो मैंने अप्लाई किया तो वो मुझे एक साल 800 रुपया मिल गया था।
1: तो चेन्नई में आपको वजीफा मिलता था?
0: ना, वजीफा नहीं मिला था, सिर्फ ये हिमाचल गवर्नमेंट ने एक साल 800 रुपया लिया था,
1: साल में एक बार दे दिया 800 रुपया, 1967 की बात है।
0: तो 150 रुपया टोटली खर्चा आता था ना,
1: तो यानी कि 800 बहुत भारी
0: बहुत अच्छी रकम
1: होती थी। तो आजकल जो है 800 जो है कितने के बराबर होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? 800 रुपए उस वक्त के 800 रुपए
0: 800 तक क्या, जब नौकरी हमारी 550 से शुरू हुई थी
1: जी,
0: इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो अब तो मैं 1,00,000 तो पेंशन ही ले रहा हूँ।
1: जी जी
0: हाँ, तो 100 गुना से कर दो तब भी।
1: तो उसके बाद जो है नौकरी आप पर लगे तो कहाँ लगे?
0: 1.5 साल के बाद लगे ना।
1: 1.5 साल के बाद लगे, तो 1.5 साल क्या किया आपने?
0: 6 महीने तो किसी ने कहा बोर्ड में है तो आपको सिलेक्शन तो हुई यानी, सिर्फ ये है कि टाइम पास करने के लिए वो एक एज सर्वेयर का काम शुरू कर दो।
1: जी
0: तो रात स्लो सड़क बनी तो उसका सर्वे का काम चला हुआ, तो वो एक जो ओवरसीर था उसने मुझे रख लिया था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: तो फिर वो सर्वे का काम किया, तो सर्वे के फिर लोगों ने यही कहना कि भाई ये तो सिविल का है तो इलेक्ट्रिकल में ट्राई करो, और फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ धर्मशाला में पुराने कांगड़ा से कुमकर्णी साहब वो एक्सियन लगे हुए थे, वो फिर बोर्ड के मेंबर रिटायर हुए, चेयरमैन भी बन सकते पर उनकी डेथ हो गई थी आज मेंबर, तो उन्होंने फिर मुझे इलेक्ट्रिशियन की जॉब दी, और साल पर उसके बाद उन्होंने जब अपॉइंटमेंट हुई तो मेरे यहाँ पर एडजस्टमेंट भी करा दिया अपने डिवीजन।
1: अच्छा, यही हो गया था, फिर घर के पास ही नौकरी लग गई। फिर
0: बाद में उन्होंने कांगड़ा में भेज दिया मुझे।
1: अच्छा,
0: तो कांगड़े में 2 सब डिवीजन थे, फिर जब
1: कांगड़ा में आप जेई की
0: जेई फिर जब क्योंकि वर्कलोड बढ़ता गया, कनेक्शन बढ़ते गए, तो इसलिए सब डिवीजन और डिवीजन भी बढ़ते गए, तो योल में सब ऑफिस था तो वो सब डिवीजन बन गया, तो योल में आ गए। योल के बाद फिर नगरोटा में बदली
1: जी, जिला कांगड़ा में ही रहे आप?
0: नहीं, सिर्फ जेई पीरियड में।
1: जेई में
0: 4 साल।
1: तो यानी कि आप उस वक्त डिग्री करके जेई बन गए थे, हालांकि अभी तो डिप्लोमा होल्डर बनते हैं।
0: अब डेजिनेशन ही जेई कर दिया हुआ ना, जो लाइन स्टाफ से बनते थे वो ये लाइन सुपरिटेंडेंट
1: जी,
0: और जो ओवरसीयर जो डिप्लोमा करके आते थे पॉलिटेक्निकल से।
1: जी जी जी। तो उसके बाद जो जब जेई बने आप, उसके बाद जो है प्रमोशन हो गया, एसडीओ बन गए, तो कहाँ कहाँ?
0: नोगली पावर हाउस।
1: अच्छा,
0: जहाँ बिजली जनरेट होते हैं।
1: वहाँ गए, वहाँ कुछ परेशानी आई? क्योंकि होता है कि आप एक नए जगह पे जाओ तो कुछ ना कुछ परेशानी होती है, आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे अलग लोग होते हैं, एक प्रोजेक्ट के लोग होते हैं।
0: ये अच्छा ये हुआ कि हमारे कांगड़ा साइड के काफी स्टाफ मिल गया था
1: जी,
0: बाकी किन्नौर साइड तो सिर्फ वहाँ नौगली पावर हाउस से ही सप्लाई जाती थी, पीछे से सप्लाई उतनी अवेलेबल नहीं होती थी। बाद
1: अच्छा।
0: में तो हमारे प्रोजेक्ट बनते गए तो बिजली हमारे बस्सी का काम चला हुआ था, गिरी पावर हाउस का काम चला हुआ था, उसके बाद जो भाभा पावर हाउस वो 120 मेगावाट का वो चला तब, अब तो नाथवा झाकड़ी की वजह से तो
1: पूरी बिजली सप्लाई आ रही है,
0: पार्वती डैम भी चालू है
1: जी, बड़े बन गए अब तो। खैर, तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट आपके जब आप डिग्री कर रहे थे उसी दौरान शुरू हो गया था?
0: उतनी अवेलेबल नहीं होती थी।
1: अच्छा।
0: बाद में तो हमारे प्रोजेक्ट बनते गए तो बिजली हमारे बस्सी का काम चला हुआ था, गिरी पावर हाउस का काम चला हुआ था, उसके बाद जो भाभा पावर हाउस वो 120 मेगावाट का वो चला तब, अब तो नाथवा झाकड़ी की वजह से तो
1: पूरी बिजली सप्लाई आ रही है,
0: पार्वती डैम भी चालू है
1: जी, बड़े बन गए अब तो। खैर, तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट आपके जब आप डिग्री कर रहे थे उसी दौरान शुरू हो गया था
0: ना? वो तो हमारे स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे ही बोलते कि भाई भाखड़े में कोई काम करना चाहता है तो आओ, तो लोगों को वैसे बुला कर ले जाते थे।
1: अच्छा,
0: जब जवाहरलाल वो तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बन गया ना कि दोनों तरफ से संकड़ी जगह से पानी निकाला हुआ है और इतना बड़ा गोविंद सागर है बना हुआ है
1: जी। तो एसडीओ के बाद जो है आप किन किन स्थानों पर रहे, उसके बाद प्रमोशन?
0: एसडीओ तो नौगली पावर हाउस, फिर उन्होंने जो कुमकर्णी साहब थे अपने पास ही बुला लिया, एक डिजाइन का ऑफिस होते
1: हैं। कुमकर्णी जो है आपके सीनियर थे,
0: जो वो एक्सियन थे ना
1: जी,
0: वो फिर 80 बन गए हुए थे।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने मुझे शिमला बुला लिया।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, तो पूरे हिमाचल के बिना बिजली से कोई गांव नहीं छोड़ना।
1: अच्छा,
0: वो पूरी स्कीमें बनानी ना, तो कितने वहाँ घर आने जिसके लिए कितने ट्रांसफार्मर चाहिए, HT-LT लाइन क्या, वो पूरा ब्यौरा बनाना, और सेंटर में REC का दफ्तर, वो फिर सारी स्टेटों को लोन देते थे ना, तो बहुत स्कीमें सैंक्शन करा के लानी और पैसा बोर्ड के खाते में जमा करा देना, और खर्चने की हमारी कोई पाप नहीं, खर्चना फील्ड वालों नहीं है।
1: जी, तो उस वक्त जो है रेडियो भी जो है बिजली पर चलने वाले होते थे, तो आपने रेडियो रखा था, आप शिमला चले गए थे?
0: ना, रेडियो तो वो मैंने कोई नहीं रखा, सिर्फ जब शादी हुई तो दहेज में जरूर दे दिया था ससुर।
1: अच्छा, रेडियो मिल गया था दहेज में। लाइसेंस भी लेना पड़ता था आपके जमाने?
0: उसका लाइसेंस भी था।
1: कितनी फीस थी देनी पड़ती?
0: अभी याद नहीं रहा, 50 रुपए लगते थे साल के।
1: अच्छा, उस वक्त 50-60 रुपए देने पड़ते थे,
0: ज्यादा लगते।

0: अच्छा, तो उसके बाद जो है नौकरी लगने के बाद जो है कितने दिनों बाद शादी हुई आप?
1: 6 महीने के बाद ही।
0: नौकरी लगने के 6 महीने बाद आपने एज ए जेई नौकरी शुरू
1: जो
0: की?
1: नौकरी कांगड़ा में शुरू की तो उस वक्त मैं योग लगा हुआ था, तब शादी हुई ना 6 महीने।
0: तो शादी का कैसे योग बना, कहाँ से शादी की आपने?
1: शादी के लिए ये था कि उस वक्त मुझे अच्छे अच्छे घरानों के रिश्ते आने लगे ना,
0: जी, क्योंकि
1: तो
0: नौकरी लग गए थे, सरकारी
1: नौकरी,
0: नौकरी।
1: सरकारी नौकरी और इंजीनियर कोई कोई होता था उस
0: जी
1: वक्त,
0: जी जी
1: आजकल तो जगह जगह इंजीनियर।
0: तो आपने कौन से सन में डिग्री की थी?
1: 71 में
0: 71 में की थी। तो लड़ाई का दौर भी देखा आपने?
1: जब मैं इंटरव्यू देने गया था ना,
0: जी
1: तब वो फ्रेश न्यूज कह रहे मेरे ढाका इज फ्री कैपिटल ऑफ फ्री बांग्लादेश,
0: जी
1: वो इंटरव्यू में सब यही जवाब दे रहे थे।
0: पाकिस्तान के साथ चल रहा था।
1: हाँ, वो बांग्लादेश आजाद हुआ
0: जी,
1: और वो ही अब मैं आंखें डरा रहे हैं।
0: तो कोई डर का भाव रहता था कि रात को बिजली बंद करनी है, रोशनी नहीं करनी है, होता था कुछ?
1: वो तो जेई पीरियड में तो ये होता था कि भाई दिन में तो पेपर वर्क भी है साथ में, जैसे ही बिजली बंद हो तो वैसे दौड़ना पड़ेगा। पर ये है कि जब ठीक ठाक बिजली हो फिर भी पेट्रोलिंग कर लेते थे कि कहीं खराबी तो नहीं है कोई,
0: अच्छा
1: या कटिंग वगैरह करा दी, क्योंकि ज्यादा तो वो ये बांस वगैरह यही तारों से टकराती हैं, टकराने से इंटरप्शन तभी आती है ना,
0: जी, यानी कि बिजली का
1: बड़ा
0: प्रवाह जो है रुक जाता है,
1: रुक जाएगा ना।
0: तो उसमें जो करंट लगने के भी जो डर लगा रहता कभी?
1: करंट लगने का नहीं, वो तो फिर हम तो तभी पहले परमिट लेते हैं, वहाँ बंद करवा देते हैं ना,
0: अच्छा
1: बरंडा
0: अच्छा
1: से जो फीडर आया उसको बंद करा लेना, या कांगड़ा से करा दिया,
0: पीछे से फीडर को बंद
1: पीछे
0: करवा
1: से
0: देते
1: फीडर
0: हैं
1: बंद करके
0: तभी होता।
1: चालू लाइन में तो नहीं किसी को चढ़ाते
0: नहीं,
1: फिर।
0: ऐसा होता था कि कई बार जो है किसी के घर के बिजली जो है बिजली का पानी से बिजली का कुछ हो गया, या पेड़ों से टकरा, ऐसे बिजली का करंट आ गया।
1: वो तो हमारा मतलब आईजी तो हमारा 11 के भी लाइन बंद हो तभी जाकर के हमारे, बाकी तो लाइन में नहीं देखेंगे ना,
0: जी जी जी जी
1: जो
0: जी
1: भी है डोमेस्टिक घरों को तो वो ही देखेंगे।
0: जी उसके बाद जो है जब शादी हुई आपके बच्चे कितने हुए फिर?
1: एक लड़का एक लड़की,
0: अच्छा, तो क्या क्या करते हैं आपके बच्चे?
1: ये बहू ये डॉक्टर है
0: जी
1: BBM,
0: जी
1: और लड़का कर्नल है।
0: अच्छा, इस
1: बेटी
0: वक्त कहाँ है वो?
1: वो सिक्किम,
0: त्रिपुरा में है, सिक्किम में है?
1: सिक्किम में।
0: सिक्किम में है। अच्छा, तो आते हैं वो?
1: हाँ, बाने वाले हैं
0: अच्छा अच्छा
1: करते
0: अच्छा
1: हैं।
0: तो सेना में भेजा आपने कुछ बच्चे
1: नहीं, उसका
0: का अपन
1: पर्सनल
0: था?
1: इंटरेस्ट था, मैं तो चाहता था इंजीनियर बने, पर वो कहता था कि मैं अपनी लियाकत से जाऊंगा, अगर लियाकत से नहीं गया तब नहीं जाऊंगा,
0: अच्छा
1: हालांकि मैं डोनेशन पर भी भेजने को तैयार था।
0: अच्छा
1: तो उसका ये BEd तो वो कर चुका हुआ था, तो ये वैसे ही मेरे पेरेंट्स ने वैसे उसको डिस्करेज करने, उन्होंने जब मुझे पूछना अरे ये तुम्हारी तरह नहीं बन सकेगा, मैंने मेरी तरह कैसे बनेगा जब तक इंजीनियर, तो
0: जी
1: फिर इसने कि भी कुछ ऑफिसर बनना था इसलिए इसने आर्मी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया ना,
0: अच्छा,
1: तो वो कंपटीशन उसने CDS एग्जाम
0: पास कर
1: वो पास
0: लिया।
1: कर लिया।
0: अच्छा
1: तो पहले जब रिटन टेस्ट भी पास कर लिया और बाकी जो 15 दिन वो ये हाई जंप लॉन्ग जंप जो भी दौड़ वगैरह करा था वो सारा फिजिकल कर लिया, पर फिर डॉक्टरों ने कुछ एक दो डिफेक्टर डाल करके उसको रह गया, फिर दोबारा टेस्ट किया हुआ तो बंगलौर, तो वो कहता कि पहले तो मैं सरकारी खर्च, अब तो पैसे खर्च मैं खर्च दूंगा मैं, पर LTC पर ही तेरे को भेज देता हूँ, और बंगलौर में वो सिलेक्ट हो गया फिर।
0: अच्छा, चलो अच्छी बात है जी। तो बिटिया क्या कर रही है आपकी,
1: प्रिंसिपल है यहाँ डिपो बाजार,
0: क्या नाम है?
1: ममता ठाकुर।
0: तो SDO के बाद जो है उसके बाद कोई आपने प्रमोशन ली, आपके
1: प्रमोशन
0: पदोन्नति भी
1: और
0: हुई?
1: XCN की प्रमोशन और SC की प्रमोशन मेरे उसी दफ्तर में, रेडियोलॉजी में 19 साल काटे हैं,
0: अच्छा
1: क्योंकि वो ये ऐसी जगह थी कि वहां कोई भी आना पसंद नहीं करता था
0: तो
1: ना।
0: रेडियोलॉजी में क्यों, वो इतना दूरदराज का इलाका तो
1: वो
0: नहीं?
1: हुआ ये था कि जब दफ्तर बड़े खुल गए थे शिमला में,
0: अच्छा
1: हमारा दफ्तर शिमला में ही था, जब कुंभकर्णी साहब थे वो शिमला में थे, तो उस वक्त शांता कुमार जी के से उन्होंने पर्सनल बहस भी की कि भाई बाकी तो यह हमारा दफ्तर यहाँ होना चाहिए, बोला नहीं आपके अफसरों ने लिख के दिया कि यहाँ डलोजी भेजना ही। उसके बाद तो हमारा बोर्ड में योगदान 10 साल जो कैलाश महाजन जी हुए
0: जी,
1: चेयरमैन रहे 10 साल, फिर तो वो चंबे के रहने वाले थे, तो फिर तो डलोजी से, अब मेरे रिटायरमेंट होने से वहीं मैं 80 रिटायर हुआ ना
0: जी पूरा, यानी कि आपने फिर एक्सचेंज और SC जो है वहीं
1: भाई,
0: आपने?
1: SDO एक्स ने सिर्फ रूटीन में पार्ट टाइम के लिए, जैसे थोड़ी देर के लिए किसी ने वैसे यहाँ कांगड़ा में मेरे आज SDO ऑर्डर कर दिए, तो मेरा बेटा यहाँ पढ़ना पसंद नहीं करे, बोला ये तो टीचर के सामने बच्चे गालियाँ निकालते हैं, यहाँ मैं नहीं पढ़ूंगा, कब वहाँ डलोजी पब्लिक स्कूल अच्छा था ना,
0: जी
1: तो

0: पर फिर इसी उसकी वजह से मैं पेरेंट्स में ओनली सन था कि भाई पेरेंट्स की वजह से तो मैं यहाँ ठीक था। तो फिर वो मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि आप चले जाओ कोई नहीं। और मैं ये था कि पूरे हिमाचल में मेरे टूर लगते थे तो नाइट हाल्ट कर लेता था, 400 किलोमीटर के एक नाइट हाल्ट रास्ते में मिल जाता था,
1: अच्छा,
0: तो आते जाते घर ठहरता था बस,
1: बस इतना ही
0: फिर
1: होता था
0: इतना ही, पर काफ़ी टाइम मिल जाता था आने जाने का
1: जी।
0: क्योंकि रास्ता यही था ना बस।
1: आपका जो दौर था उस वक्त, जो है नौकरी के दौरान, जो है महिलाएं अक्सर जो है बीवियां जो है माता पिता के साथ रहती थी, काम होता था, तो आपका भी अकेले रहते थे?
0: नहीं, यही पीरियड जो था तब तो पेरेंट्स के साथ ही रहे, अब जब SDO बन के नौकरी गया तब तो मिसेज को साथ ही रखना पड़ा।
1: अच्छा, भेज देते थे क्योंकि काम बहुत होता था घर में, जो है
0: ना
1: माता
0: घर में
1: पिता
0: ऐसा
1: भी थे।
0: काम नहीं, ज्यादा नहीं रखा हुआ था पेरेंट्स
1: अच्छा, तो कुल मिला के जो आपका जीवन जो है सही रूप में चल रहा था और अभी भी चल रहा है,
0: ने।
1: और सेहत भी है आपकी ठीक है, देख रहे हम। अभी उम्र कितनी है आपकी?
0: 80 पूरे कर लिए हैं मैंने जून महीने में।
1: अच्छा, तो अभी जो है बहुएं बेटे, बहुआ हैं आपकी, बेटे हैं, बेटियां हैं?
0: बेटा ही भी है क्या
1: जी
0: और बेटी भी है कि
1: जी तो आपकी कुछ सेवा शुश्रूषा करते हैं, कुछ आपका बर्थडे मनाते हैं? क्योंकि आजकल जो है बच्चों का जो है एक केक काटना होता है, उस तरह की नई प्रथा से, तो इस तरह से कुछ चलता है?
0: यही है कि बर्थडे को तो मैं सेंटर पॉइंट होटल में पार्टी कर देती हैं सबको बुला करके।
1: अच्छा, कुछ लोग जो हैं वृद्धाश्रम जाते हैं, आपने कभी वृद्धाश्रम जाने का
0: ना
1: इस
0: ना
1: तरह?
0: वृद्धाश्रम तो इतना टाइम ही नहीं मिला।
1: जी, तो कुल मिला के जो है आपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, अनेक प्रकार के लोगों से मिले, अनेक प्रकार की खाद्य पदार्थ हैं, खाना है खाया है, जैसे मद्रास में भी रहे, अलग अलग जगह पे रहे। ऐसे में जो है आपको एक चावल खाने का जो है हिमाचली को बड़ा शौक होता है, राजमा चावल, तो उसमें जो है आपका पसंदीदा भोजन कौन सा था आपका?
0: ये
1: कुछ जो नॉन वेज भी खाते थे? जी
0: बचपन में वो आजकल तो पसंद है, वो बचपन में मुझे मक्की की रोटी पसंद नहीं थी और दादी बीमार होनी तो उसके लिए फुलके बनाने, तो पर वैसे पूछ लेता कि आपने कितने फुलके खाने
1: जी
0: ताकि मक्की की रोटी काम करें,
1: जी होता है कि क्योंकि
0: तो
1: परहेज जो होता है, क्योंकि
0: ना
1: तासीर भी होती है, गर्म तासीर किसी की। जी, तो हरी सिंह जी, आपने हम संग जो है बहुत अच्छी बातें साझा की अपने जीवन के बारे में, क्या कुछ हुआ आपके जीवन में, आपने सीखा, क्या कुछ काम किया, किस प्रकार किया, क्या कुछ आपको जो है परेशानी आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, और श्रोताओं एक बार हम फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम तराने मन के लेकर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमराज फिल्म से यह खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं की नजर, महेंद्र कपूर की आवाज, संगीत रवि का, साहिर लुधियानवी के बोल।

हूँ रवि जॉन। इस फिल्म का बेहतरीन संगीत हमारे श्रोताओं की रेडियो सेट्स पर। आशा भोंसले की आवाज़, संगीत खयाम का।

वो कौन थी इस फिल्म से ये गीत आपकी रेडियो सेट्स पर लता मंगेशकर की आवाज, संगीत मदन मोहन का और शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान की।

अभी हमारे श्रोताओं ने सुना पाकीज़ा फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, संगीत गुलाम मोहम्मद का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं अनपढ़ फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़, संगीत मदन मोहन का।

तराने मन के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12 बजे हैं, डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम आनंद मठ।

0: मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं शान और कविता कृष्णमूर्ति की। फिल्म का नाम लकीर और संगीतकार हैं AR रहमान।

0: मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए इस कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ। ये गीत हमने लिया है फिल्म कोयला से।

कार्यक्रम के अंत में दीजिए सुनिए सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है तुम बिन। इस गीत को लिखा है फैज अनवर ने, धुन बनाई है निखिल विनय ने।

इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। जय हिंद। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12:30 हुए हैं। अब बच्चे अपना कार्यक्रम सुनेंगे, बाल सभा।

सभी बच्चों को जय हिंद। रेडियो दीदी फिर से हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में अपने नन्हे दोस्तों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा लेकर।

सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को आपकी रेडियो दीदी की तरफ से प्यारी सी नमस्ते, ढेर सारा लाड प्यार और दुलार। जी हाँ, हम आपको भेज रहे हैं और बता देते हैं आज के इस अंक में मैं हूँ आप सभी बच्चों की भुलक्कड़ सी दीदी प्रवीण। जी हाँ, वही जानी पहचानी पुरानी मगर प्यारी सी दीदी। कार्यक्रम में जो अन्य श्रोता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, हम उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, कैसे हैं हमारे सभी प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्त, कैसे हैं बताइए। जी हाँ, जवाब तो दे दीजिए कि दीदी हम बिल्कुल ठीक हैं और आपकी राह देख रहे थे, अब आप आ गए तो हम और भी ठीक हो गए। चलो भाई, आप कहें या ना कहें, आपकी दीदी कह रही है, खुश हो रही है और आपसे बहुत सारी बातें भी कर रही है। और हाँ नन्हे दोस्तों, आज आपकी दीदी खेलेगी आपके साथ बहुत सारे खेल। अजी रुको रुको, कहाँ सारे कामकाज छोड़कर उठ गए खेल खेलने के लिए, पहले पूरी बात तो सुन लो। दीदी की बात को आधा मुंह में ही रहने देते हो, आधी बात को सुनते हो और पता नहीं कैसे आधी बात को सुनकर ही अमल कर लेते हो। सुनो रुको, जी हाँ आप ही को कह रही हूँ जो किताबी कीड़े हैं। अजी थोड़ा किताबों की दुनिया से भी बाहर निकलो, क्योंकि पढ़ाई का नियम तो यही कहता है कि हर 20 से 30 मिनट पढ़ाई करने के बाद ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ, जो हमारे बच्चे इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, उनके लिए दीदी की बात और दीदी का कहना कि खेल खेलो, जी हाँ उसके लिए तो वो तैयार हो गए। लेकिन जो हमारे बच्चे बहुत ही किताबी कीड़े होते हैं ना, जिनको बाहर की दुनिया को कोई पता नहीं होता है, जिनको ये पता नहीं होता है कि आज उनकी मम्मी ने उनके लिए क्या बनाया।

है, जी हाँ रविवार है ना, उनको ये भी खबर नहीं होती है। तो उन बच्चों के लिए दीदी का प्यारा सा संदेश, जी हाँ बच्चों, किताबों की दुनिया से भी बढ़कर एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है। किताबों की दुनिया तो होती ही है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही चमकदार दुनिया होती है हमें, क्योंकि वो हमारे जहाँ को रोशन करती है ना, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो। लेकिन बच्चों इससे भी परे एक दुनिया है और आपको उस दुनिया का भी हिस्सा बनना है। जी हाँ, आपको अपने घर, अपनी प्रकृति, अपने समाज, अपने दोस्तों, अपने माता पिता के साथ बैठना उठना, उनके साथ बातचीत करने का तालमेल भी बनाना चाहिए। तो नए दोस्तों, जो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ना, पता नहीं वो ब्रेक लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन ब्रेक आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इससे ये होता है कि पढ़ा हुआ भी याद रहता है लंबे समय तक, और हाँ जब आप उस खाली समय में यानी पढ़ाई के दौरान जब आप कोई अंतराल लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो उस समय आप अपनी पसंद का कोई भी खेल खेल सकते हैं या फिर अपना कोई भी काम कर सकते हैं जो काम आपको बहुत पसंद हो। तो इसी विषय पर हम आपके साथ बात करेंगे। शिक्षा के साथ साथ खेल भी है ज़रूरी, और इसके बाद हम आपसे बातें करेंगे। बच्चे जाने पौष्टिक आहार की अहमियत, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि भाई दीदी ने कहा है ना कि आपके साथ दीदी ने खेल खेलना है, तो बिल्कुल छुप जाइए क्योंकि अभी दीदी आपको ढूँढने आने वाली है।

0: एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: कार्यक्रम बाल सभा में एक बार फिर से सभी बच्चों का और सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग और स्टूडियो में इस समय है बच्चों की रेडियो दीदी प्रवीण। बात हम कर रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ खेल भी है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का खेल नहीं खेलते हैं तो बच्चों इससे आपके शारीरिक विकास और मानसिक विकास साथ साथ में बौद्धिक विकास में बाधा आ सकती है। और नन्हे दोस्तों, सर्वांगीण विकास के लिए आपका खेल खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो तो इसके लिए आपको कोई भी खेल अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना है। इसके लिए आपको आउटडोर गेम अगर आप खेलें तो इससे बेहतर कोई भी विकल्प नहीं हो सकता है। नन्हे दोस्तों, आपसे एक बात कहूँ, खेल के माध्यम से हमारे बच्चों में अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित होती है। जी हाँ, इसलिए नियमित पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को भी आपने बराबर समय देना है। खेलो और सीखो, खेलो और आगे बढ़ो, ये तो आपने ज़रूर सुना होगा, है ना? तो इस पर कितना आप अमल करते हैं बताइए ज़रा। खेलते हैं, कुछ सीखते हैं, खेलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं ना, तो आज से ही खेलना और सीखना, खेलना और आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ नन्हे दोस्तों, जब बच्चे लगातार पढ़ाई करते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे बच्चों के मन पर, छात्रों के मन पर अतिरिक्त पढ़ाई का दबाव आ जाता है। तो आपको हम बता दें कि खेल खेलने से

दिमाग तरोताजा रहता है और तनाव कम करने वाले हार्मोन भी निकलते हैं। बच्चों, खेलने से मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर तरीके से होता है। और हाँ नन्नी दोस्तों, खेल मिलकर काम करना, हार और जीत को समान भाव से स्वीकार करना भी सिखाते हैं। एक बहुत ही गजब बात तो ये है नन्नी दोस्तों कि मैदान में लिए गए फैसले बच्चों में लीडरशिप और आत्मविश्वास की भावना को मजबूत करते हैं। और बच्चों, जब आप खेल के मैदान में उतरते हैं तो कई सारे नए नए दोस्त भी आपको मिलते हैं। ये तो भाई मानने वाली बात है कि जब आप खेल के मैदान में उतरते हैं, कोई भी खेल जब आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको बहुत सारे दोस्त मिलते हैं। ऐसा ही होता है ना। सोचो, जो बच्चे अंदर बैठे रहते हैं और खेलों में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते हैं, तो उनके क्या अच्छे अच्छे दोस्त मिलते होंगे, उनको नए नए दोस्त मिलते होंगे, बताइए ज़रा। नहीं मिलते होंगे ना। तो जब अगर आपको लगता है कि आपके पास दोस्त थोड़े से कम हैं, आपको दोस्त बनाने चाहिए, तो भाई खेलों की दुनिया में एक कदम तो बढ़ाइए। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आप ही की तरह आपको खेल के मैदान में मिलेंगे। और हाँ जी नन्नी दोस्तों, खेल खेलने से हड्डियां मजबूत बनती हैं। खेलने से कई सारी बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। तनाव चिंता आपसे भागेगा। और हाँ, खेलों को आपने अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना है, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये नहीं भाई कि दीदी ने बता दिया कि खेल खेलेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे या फिर हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा नन्हे दोस्तों, इसके लिए आपको खेलों को, जी हाँ, खेलना पड़ेगा। खेल के मैदान को आपको चुनना पड़ेगा। बेहतर है कि जितना समय आप पढ़ाई के लिए देते हैं ना, माना कि आप दिन में 3 से 4 घंटे बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नन्हे दोस्तों कि कम से कम उन 3-4 घंटों में 1 घंटा, आधा पौना घंटा आपने अपने खेल के लिए भी ज़रूर निकालना है। ठीक है, तभी आप, जी हाँ, भाग मिल्खा भाग बन सकते हैं, MS धोनी आप बन सकते हैं। तो नन्हे दोस्तों, सुनने से कुछ नहीं होता है। जो बातें दीदी कहती है, उन बातों को अगर आप अमल नहीं करेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। ऐसे ही बैठे रहोगे और सुनते रहोगे, दीदी आज क्या कहेगी, दीदी कल क्या कहेगी। तो नन्हे दोस्तों, फिर से हम यहाँ पर रुकते हैं और लेते हैं एक और छोटा सा, जी हाँ, संगीतमय अंतराल।

0: नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग प्रोग्राम। इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं बाल सभा। जी हाँ नन्हे दोस्तों, अब आपकी दीदी बात करेगी आपके पौष्टिक आहार को लेकर। कितनी अहमियत है आपके जीवन में पौष्टिक आहार की। जी हाँ, कितना खाना खाते हैं आप, चलो बहुत दूर की बात छोड़ते हैं। आज रविवार है, बताइए जरा सुबह उठकर आज आपने क्या क्या खाया। जी भरकर खाया, थोड़ा खाया, या अभी इंतजार में है कि आज रविवार है मम्मा थोड़ा सा सोने दो ना बाद में खा लेंगे। ऐसा भी बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है। तो ज़रा दोनों कान खोलकर आपने अब हमारी बात को सुनना है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि पौष्टिक आहार क्या होता है। बच्चों, ऐसा आहार जो हमारे बच्चों को, जी हाँ हमारे बच्चों के शरीर और मन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें सभी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल। ऐसा पोषक तत्व जो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को प्रदान करें। तो सोचो सोचो, क्या आप ऐसा भोजन लेते हैं जिससे ये सारे पोषक तत्व हों? बताइए ज़रा, शायद नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे कम सब्जियाँ, कम रोटी खाते हैं, कम पानी पीते हैं और ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड लेते हैं। ऐसा ही होता है ना, सारे बच्चे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। और कुछ एक हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें जंक फूड की तरफ देखना भी, जी हाँ, गवारा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों, ये जो आते हैं ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा तमाम अभिभावकों से यही आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को स्वस्थ भोजन की आदत डालें। दलिया, रागी, गेहूं की रोटी, फल और हरी सब्जियां, दालें, अंकुरित अनाज, इसके अलावा सूखे मेवे भी आप

अपने बच्चों की आहार तालिका में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। और हाँ, दूध का एक गिलास बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अगर बच्चे नॉन वेज के शौकीन हैं तो उनके लिए आप अंडा भी दे सकते हैं। अगर बच्चे खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर उन्हें ये चीज़ें भी आप दे सकते हैं। और अगर दूध का गिलास देखकर बच्चे नखरे दिखाते हैं ना, तो किसी दिन बच्चों को पकड़कर दीदी के पास ले आना। फिर हम अच्छे से सारे अपने नन्हे दोस्तों की क्लास लगाएंगे कि क्यों भाई आप दूध नहीं पीते हैं, मम्मा को परेशान करते हैं, बीमारी होती है तो बैठ जाते हो फिर मम्मा की गोदी में, मम्मा ठीक कर दो, डॉक्टर के पास लेकर मत जाना, ऐसा ही बोलते हो ना। तो अजी जो मम्मा बनाती है खिलाती है चुपचाप खाया करो, क्यों इतने नखरे दिखाते हो, शहनशाह बनते हो अपने आप को। हाँ हाँ, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है नन्हे दोस्तों। पौष्टिक आहार जब तक आप नहीं लेंगे आप बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। पौष्टिक आहार अगर आप लेते हैं तो आप बीमारियों से लड़ने की ताकत अपने पास रखते हैं। इसलिए घर का बना ताज़ा पौष्टिक और संतुलित आहार ही आपने लेना है। और ये आहार बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और टेस्टी टेस्टी होता है। तो अब जल्दी से, जी हाँ, हम बढ़ते हैं ज्ञान की दुनिया में और पहुंच जाते हैं ज्ञान के मोती आपके घर द्वार। जल्दी जल्दी से आपने सुनना है, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव या चिंता आपके दिमाग को कुछ समय के लिए सुस्त कर सकती है। तो कम सोचें और ज़्यादा खुश रहें। बच्चू मोर को सन 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और कला का प्रतीक है। रोचक जानकारियां यानी ज्ञान की मोती इकट्ठे कर रहे हैं हमारे नन्हे दोस्त कार्यक्रम बाल सभा के माध्यम से। बच्चों, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल जैसे कि नींबू प्रजाति के फलों में प्रचुर मात्रा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो भाई ये जो खट्टे फल होते हैं ना, यानी नींबू को सलाद के तौर पर, यानी जब आप खाना खाते हैं तो उस समय आप अपने दाल में इसे ज़रूर शामिल करें। थोड़ा सा नींबू आपने अपनी दाल के ऊपर ज़रूर निचोड़ना है और उसका सेवन करना है। भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट है। इसकी स्थापना सन 1862 में हुई थी और बच्चों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधु थी। अब जी हाँ, कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट यानी जी हाँ, आज की कक्षा का ज्ञान भी हम अपने नन्हे दोस्तों तक पहुंचाते हैं। कोशिश करते रहो, क्योंकि हार मानना समाधान नहीं है, लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। तो क्या सीखते हैं नन्हे दोस्तों आप? दीदी हमेशा आपको यही कहती है ना, जब आपको कोई छोटा छोटा कहे तो इन्हीं छोटे छोटे हाथों से, छोटे छोटे पैरों से, छोटी छोटी कोशिशें आपने लगातार करते रहना है। थकना नहीं है, हारना नहीं है, धीरे ही सही लेकिन दौड़ का हिस्सा, रेस का हिस्सा आपने ज़रूर बनना है। और ये जो ना शब्द होता है ना, इसको अपने शब्दकोश से आपने निकाल देना है, क्योंकि ना जैसा शब्द और कल कर लेंगे ये शब्द है ही नहीं। यानी कल कभी भी नहीं आता है, तो कभी भी कल के इंतज़ार में नहीं बैठना है। कल जब आएगा वो आज में बदल जाएगा और आपका काम वहीं का वहीं रह जाएगा। तो नन्हे दोस्तों, अब आपसे जी हाँ विदा लेने का वक्त भी हो गया है। तो चलते चलते हम आपको बता देते हैं, कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे विकास पठानिया और प्रस्तुत करता रहे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। उम्मीद करते हैं नन्हे दोस्तों कि आज जो भी बातें दीदी ने आपको सिखाई, आप उन

सारी बातों पर ज़रूर अमल करेंगे, यानी खेलों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा आप ज़रूर बनाएंगे। वैसे तो हमारे बहुत सारे नन्हे दोस्त पता है क्या करते हैं कि जब बहुत सारा समय हो तो बहुत सारा समय बच्चे खेलते ही रहते हैं, तब अपने बैग को बिल्कुल भी नहीं खोलते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। बराबर का समय सभी कार्यों के लिए आपने ज़रूर देना है। तो अब इसी के साथ आप बच्चों की रेडियो दीदी प्रवीण लेती है आपसे अनुमति। प्यारे बच्चों, जय हिंद।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का 1 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
2: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण ये दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाए

0: and claimed she only saw the narcotics when authorities forced her to pose for photos with them. In badminton, India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty have entered the China Masters final for the third time. The world number 5 pair defeated Malaysia's Noor Mohammad Azrin Ayub and Tan Wee Keong 21-15, 18-21, 21-11 in the semi-final. And that's the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

साथियों अपने विचार, अपनी बातें, अपने पैगाम और संदेश आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं, तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे। फिल्म का नाम था कारवा। जितेंद्र, आशा पारेख, रूना ईरानी, मदन पुरी और जूनियर महमूद ने इस फिल्म में भूमिका निभाई थी और निर्देशक थे नासिर हुसैन।

हमारे साथियों ने लिखा है कि राजेश खन्ना और देव आनंद के बिना कोई सफ़र सफ़र नहीं होता ज़िंदगी का। एक वक्त था जब ज़िंदगी बेरंग थी, फिर तुम आए और सब कुछ बदल गया। हम एक दूसरे की बातों में ऐसे खोए कि दुनिया को भूल गए। तुम किसी हसीन ख्वाब जैसी हो और तुम्हें अपना बनाने की चाहत इस दिल में है। तुम्हारे साथ से ज़िंदगी मुकम्मल लगती है, इसलिए अब हर हाल में मेरा साथ निभाना। तुम एक खूबसूरत लत की तरह हो, चलो आज के इस हसीन पल को पूरी शिद्दत से जी लेते हैं, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। मन भी अजीब सा मुसाफिर है, कभी खुद में ही सफ़र करता है, कभी खामोश रहकर कह देता है सब कुछ, कभी कहकर भी कुछ नहीं कहता। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद और जॉब लगने के बाद मेरे मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मन के नगर को भरा और सूखी डाली में हरियाली भी आई, जब मेरे जीवन में आई मेरी पत्नी यानी के मेरी घरवाली। साथियों, टैक्सी कार या बसों से आपने कोई सुहाना सफ़र किया तो होगा, तो कहाँ कहाँ की सैर की उन खूबसूरत यादों को, बातों को हमारे साथ बांटिए और लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। टैक्सी चोर इस एक्शन थ्रिलर मूवी में मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिका निभाई थी, पर हम बात करेंगे खुददार। इस सुपरहिट फिल्म में महानायक ने एक ईमानदार टैक्सी चालक का रोल प्ले किया था, जो अपने उसूलों के लिए लड़ता है। तो बताइए गोविंदा यानी कि उस महानायक का नाम और इस गीत में कौन सी अभिनेत्री उनके साथ है उसका भी नाम बताएं। और इस गीत में आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

फिल्म आशा का गीत याद आ रहा है, जाने हम सड़क के लोगों से, जितेंद्र उसमें ट्रक चलाते हैं। अगला मैसेज है कि सफ़र जीवन का हो, किसी मंजिल तक जाने का हो, किसी के दिल तक पहुंचने का हो, या सुरीला सफ़र विविध भारती के साथ हो, हम तो हर सफ़र को एंजॉय करते हैं, क्योंकि असली मज़ा और सुनहरी यादें सफ़र की होती हैं। मंजिल या मकाम पर पहुंचने के बाद भी वही हमारे जहन में रहती हैं। सबसे लंबी सड़क मार्ग का सफ़र मेरा कटक से पुणे का था। काफ़ी रोमांचक था। चिल्का झील, घने जंगलों, पहाड़ों से गुजरते हुए पहली रात, विशाखापट्टनम समुद्र किनारे दूसरी रात, और हैदराबाद में गुजरने के बाद शोलापुर होते पुणे

पहुंचे मैं, मेरी पत्नी बेटा बेटी के संग सफर के हमने खूब मजे लिए। आवाज की दुनिया के हमारे दोस्त तो हमारी ही तरह इबारत लिखना सीख गए हैं। गीतों के इस सफर में बढ़ते हैं अब आगे। बेहतरीन लोकेशन और रोमांटिक फिल्म कश्मीर की कली, जिसमें एक अमीर बिजनेसमैन राजीव लाल को एक सीधी साधी फूल बेचने वाली लड़की चंपा से प्यार हो जाता है, और पेशे से ट्रक ड्राइवर मोहन चंपा पर बुरी नज़र रखता है और उसके गरीब पिता दीनू को ब्लैकमेल करता है। कहानी कई उतार चढ़ाव, गलत पहचान का नाटक, खलनायकों की चालें, और अंत में सभी गलत फहमियाँ दूर होकर एक सुखद मिलन होता है। तो किस खूबसूरत लोकेशन पर यह फिल्म बनाई गई थी। वैसे तो उसमें फिल्म के नाम में ही वो बात छुपी है। और राजीव, चंपा, मोहन की भूमिकाओं में कौन से कलाकार थे, और निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे ये जो गाना अभी आप सुनेंगे, इस ट्रक में भेस बदल कर गाना कौन से अभिनेता गा रहे हैं, और गीत में आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हैं SH बिहारी, संगीतकार हैं OP नैयर, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

नज़ीर हुसैन मदनपुरी और टुनटुन। कश्मीर के कली इस फिल्म की शूटिंग श्रीनगर और वहाँ की मशहूर डल झील और उसके आसपास की खूबसूरत वादियों में की गई थी। निर्देशक थे शक्ति सामंत और कश्मीर की कली ये फिल्म थी शर्मिला टैगोर की पहली हिंदी फिल्म। हमारे साथियों ने हमें कुछ और मैसेज लिखे हैं कि फिल्म नमकीन का गीत सफ़र में होता है ट्रक में संजीव कुमार गाते हैं, ठीक है। फिल्म 9-2-11 का गीत हम है राही प्यार के देव आनंद ट्रक चलाते हुए गाते हैं और फिल्म जौहर महमूद के गाने हम दो दीवाने मिलके भी सफ़र में गा रहे हैं। साथियों अब बात करते हैं बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक राजा हिंदुस्तानी की, जिसमें आमिर खान एक सीधे साधे टैक्सी ड्राइवर राजा की भूमिका में नज़र आए थे, जिसे एक बेहद अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। तो अब ये बताइए कि टैक्सी ड्राइवर राजा किस इलाके में टैक्सी चलाते थे और कौन थी वो अमीर लड़की, और लड़की की माता जी की भूमिका में नज़र आने वाली अभिनेत्री का भी हमें नाम बताएं, और साथ में हमें ये भी बताएं कि इस फिल्म में जो छोटा बच्चा था वो आजकल एक बड़ा अभिनेता है, तो उस छोटे बच्चे का भी हमें नाम बताएं। साथियों हम आपसे जानना चाहते हैं कि कभी कभी अक्सर लोग टैक्सी रिक्शा बसों में अपना कीमती सामान भूल जाते हैं, तो अचानक से मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जो टैक्सी चालक होते हैं वो पूरी ईमानदारी से आपका वो कीमती सामान लौटा देते हैं। तो कभी कुछ ऐसी बातें आपके साथ हुई या आपने देखी या आपने सुनी हो तो वो भी हमें लिख दीजिए, हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रावण का।

दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी की ज़्यादातर शूटिंग ऊटी, तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक और उत्तराखंड के रानीखेत में हुई और टैक्सी ड्राइवर राजा एक काल्पनिक इलाके पालनखेत में अपनी टैक्सी चलाते थे। आमिर खान, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय, जॉनी लीवर, कुणाल खेमू, अर्चना, पूरन सिंह, मोनिश बहल, टीकू तलसानिया, फरीदा जलाल, नवनीत निशान और वीरू कृष्णन इस फिल्म में नजर आए थे। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भूटान में जब मैं गया था तब गर्मी का मौसम था, फिर भी गर्मी में बहुत ही मज़ा उठाया हम लोगों ने। अगला ये मैसेज है कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। सफ़र में गाए जाने वाले गीत एक दो नहीं बहुत सारे हैं, जैसे कि परिचय में मुसाफिर हूँ यारो। और एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफ़र का ये सफ़र सचमुच बहुत ही रोमांचक सफ़र है, जिसमें हम अपनी बातों को यहाँ पर रखते हैं। साथियों, सड़क पर तो हम सभी रोज़ चलते हैं, गुजरते हैं, पर एक बेहद चर्चित रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आई थी सड़क, जिसमें संजय दत्त ने रवि नाम के एक टैक्सी ड्राइवर का किरदार निभाया था। तो इस फिल्म की अभिनेत्री और संजय दत्त के दोस्त के रोल में नज़र आने वाले अभिनेता और खलनायक के नाम भी हमें

दीजिए, साथ ही निर्देशक का नाम भी लिखकर भेजें। इस गीत में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है सड़क।

साथियों आपके जवाब हमें मिले हैं, पूजा भट्ट, संजय दत्त, दीपक तिजोरी, नीलिमा आजम, सदाशिव अमरापुर का जो महारानी के किरदार में नज़र आए थे, अवतार गिल, जावेद खान, पंकज धीर और निर्देशक थे महेश भट्ट। साथियों आपने कभी ट्रक की सवारी की है या उसमें बैठकर किसी शादी में गए हैं या ट्रक से जुड़ी कोई बात हो तो वो भी हमें बताएं। खेती करने में ट्रक का कितना और कैसा योगदान होता है वो भी बताएं। और अब बात उस ब्लॉकबस्टर मूवी की जिसमें सनी देओल पेशे से एक देसी ट्रक ड्राइवर के रोल में नज़र आते हैं और इस फिल्म में ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा भी है। तो उस फिल्म का नाम और सनी देओल की भूमिका का नाम, निर्देशक का नाम भी बताएं। वैसे इस फिल्म में सनी देओल ने एक चीज़ उखाड़ ली थी, क्या थी वो चीज़ उसका भी नाम लिख दे। तब तक आइए सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाज़ें हैं उदित नारायण और साथियों की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

हमारे साथियों ने जवाब लिख दिए हैं हमारे पेज पर। सनी देओल की भूमिका वाले किरदार का नाम था तारा सिंह, साथ में थे अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, सुरेश ओबराय और गदर। एक प्रेम कथा में तारा सिंह ने ज़मीन से सीधे एक लोहे का हैंडपम्प उखाड़ लिया था, जिसे हिंदी फिल्मों के इतिहास के सबसे लोकप्रिय सीन्स में गिना जाता है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं अनिल शर्मा। राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म को देखकर जब जब फूल खिले वाले शशि कपूर और नंदा याद आ जाते हैं हमें। साथी ने लिखा है कि मज़ेदार मनोरंजक कार्यक्रम चल रहा है और मेरी सात गीतों की लिखी हुई इबारत में से छठे नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल हो गया है। और एक साथी ने लिखा है कि सड़कों के सफ़र में हम कई बार ट्रक्स और सामान ले जाने वाली गाड़ियों के पीछे लिखी हुई लाइनें जो लिखी होती हैं उसे पढ़ते हैं, जैसे कि अनारकली अरे बढ़कर चली, जो सफ़र प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफ़र, नहीं तो गर्दिशों के दौर का मारा है सफ़र, और बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं हाईवे की। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा महावीर भाई नाम के एक ट्रक ड्राइवर और किडनैपर की भूमिका में नज़र आए थे और नायिका के साथ भारत के अलग अलग रास्तों पर ट्रक के ज़रिए वो सफ़र करते हैं। तो बताइए उन इलाकों के लोकेशन के नाम और फिल्म के निर्देशक का भी नाम बताएं, साथ ही उन जगहों के बारे में आप कोई ख़ास जानकारी रखते हो तो वो भी हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। और आलिया भट्ट की पहली फिल्म का नाम क्या था वो भी लिख दें, और इस गीत में आवाज़ें किसकी हैं वो भी बताएं। गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

साथियों, आपके जवाब हम पढ़ देते हैं। निर्देशक हैं इम्तियाज अली और उनकी ये जो फिल्म हाईवे है, भारत के अलग अलग इलाकों में फिल्माई गई थी, जिनके नाम है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर। आलिया भट्ट की पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर और संघर्ष में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था और इस गीत में आवाजें थी सुल्ताना और ज्योति नूरानी की। साथियों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर का, इस फिल्म का गीत, और इस गीत का एक जवाब हमें जल्दी से लिखकर भेज दीजिए कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है।

फिल्म का नाम था टैक्सी ड्राइवर, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था साहिर ने, संगीत था सचिन देव बर्मन का, और इस फिल्म में नज़र आए थे देव आनंद, कल्पना कार्तिक, जॉनी वॉकर, और ये जो गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री का नाम था शीला रमानी।

साथियों, सुरीला सफ़र के हमसफ़र बनकर आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। और आज की तरह कल भी हमारे साथ तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफ़र देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: त्रिवेणी तट पर मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह सभी को नमस्कार। दोस्तों, जीवन में खुशियां आसपास बिखरी होती हैं, हम खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। चलिए आज छोटी छोटी बातों में तलाश करें खुशी का खजाना। सुबह सुबह जब चिड़िया मुंडेर पर बैठकर फुदकती है, जब आकाश में चिड़ियों का समूह सैर पर निकलता है, जब नदी के शीतल पानी को स्पर्श कर माथे से हम लगाते हैं, जब अदरक वाली खुशबूदार चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह रेडियो ट्यून करते हैं और रेडियो की सुई विविध भारती पर ठहरा देते हैं, तब होती है असली खुशी। तो चलिए आज रेडियो के साथ खुशी मनाते हैं।
1: खुशियाँ

दोस्तों, किसी विशेष तिथि पर जब हम जश्न मनाते हैं तब खुशी में डूब जाते हैं। जश्न के इंतजार में जो खुशी मिलती है वो अलौकिक होती है।

खुशी हमें मिल जाती है किसी प्रिय व्यक्ति से मिलकर, कोई पसंदीदा कार्यक्रम सुनकर हम खुश हो लेते हैं, किसी की आवाज़ सुनकर हमारा दिन बन जाता है, कोई अपनी पसंद का सुनहरा गीत सुनकर हम होठों पर मुस्कान सजा लेते हैं, खुशी से तरबतर हो सकते हैं। आइए आज दिन भर नहीं, शाम को रात तक बीने खुशियों की सीपियाँ।

दोस्तों, अगर हम खुश होना चाहते हैं तो लोगों की छोटी मोटी चालाकियों, धूर्तताओं पर धूल डालकर आगे बढ़ जाएं और देखें कि कौन व्यक्ति अच्छा है, गुणी है। गुणी व्यक्तियों के साथ रहकर भी हम खुशी पा लेते हैं। किसी उत्सव, पर्व, त्योहार पर हम खुश हो लेते हैं। कुछ उत्सव आपको सिर्फ एक तिथि की याद नहीं दिलाते, बल्कि आपको खुशियों की टोकरी सौंप देते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ आपका मन समृद्ध कर देती हैं। हमारे चारों तरफ खुशियाँ बिखरी पड़ी हैं, ज़रूरत है उन्हें चुनकर सहेजने की, संवारने की। छोटे से बच्चे की किलकारी आपको खुशी से भर देती है। मासूम बच्चे को हंसाकर हम पाते हैं खुशी। कोई गीत गुनगुनाकर हम पा लेते हैं खुशी। तो चलिए गुनगुनाएं और बांटे सबको ढेर सारी खुशी।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन यांग यू से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं, तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। यह मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल

0: अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रस्ताव किसी खास मानचित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1,344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए DNA परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1,270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी हैं। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण ये दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी

0: लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर NDMC क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच NDMC नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आईब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
2: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी है। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए सांविधिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उप महापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरों मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठ की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर, लुधियानवी संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ों में। गीतकार हैं गौहर कानपुरी, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है जख्मी।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नख्मों का कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

साथियों लीजिए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं अमित खन्ना, संगीतकार हैं राजेश रोशन, फिल्म का नाम है स्वामी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार नखमी।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों से बीटेक के 44 मेधावियों को जापान के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। ये शैक्षणिक भ्रमण 12 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों को नवाचारों, तकनीकों और वैश्विक कार्यप्रणालियों से परिचित करवाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जापान से अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्कृति का अनुभव हासिल करेंगे, जिससे वे और अधिक आत्मविश्वासी बनेंगे। इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी विद्यार्थियों के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस भ्रमण से विद्यार्थियों को नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार प्रदेश की आर्थिक मदद कर रही है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस सरकार लगातार कर्ज ले रही है, जिसके चलते राज्य की स्थिति बदहाल हो रही है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में केवल केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं और राज्य सरकार कोई भी नई योजना शुरू नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में चल रही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का बंद होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका आम लोगों पर असर पड़ा है। प्रदेश में इन दिनों सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है और रोजाना 1.5 लाख से अधिक पेटियां मंडियों में भेजी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार अब तक 60 लाख से अधिक पेटियां बाहरी राज्यों को भेजी जा चुकी है। अधिक ब्यूरो के साथ ये रिपोर्ट।
1: मॉनसून की बारिश के बीच हिमाचल में सेब सीजन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा पेटियां भेजी जा रही है। एपीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 60 लाख पेटियां बाहरी राज्यों को भेजी जा चुकी है। वहीं अब तक करीब 1 करोड़ पेटियां हिमाचल और बाहरी राज्यों की मंडियों में पहुंच चुकी हैं। मंडियों के साथ साथ सीधे कारोबार के जरिए भी सेब लगातार बाजार का रुख कर रहा है। शिमला और किन्नौर क्षेत्र सेब भेजने में सबसे आगे है। इस बार फसल कम है, लेकिन बागवानों को दाम अच्छे मिल रहे हैं। शिमला और किन्नौर के 20 किलो के बॉक्स का दाम 400 रुपए से 4000 रुपए प्रति पेटी तक बिक रहा है। हिमाचल प्रदेश में सीजन की शुरुआत में 2.25 करोड़ पेटियों के उत्पादन का अनुमान था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए आंकड़ा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। पिछले साल करीब 3 करोड़ से ज्यादा पेटियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। इस बार उत्पादन 2.25 करोड़ पेटियों के आसपास सिमटने के आसार हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: राज्य सरकार आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इन पाठ्यक्रमों में दोनों संस्थानों में प्रवेश इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। इस पहल से कुशल तकनीकी कार्यबल तैयार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है। खासतौर पर सोलन और सिरमौर जिलों में पिछले कुछ दिनों से व्यापक वर्षा हो रही है। इस वर्षा से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। सोलन जिले के परवाणु क्षेत्र में भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी भी लगातार बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नुकसान का जायजा लेने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा राहत कार्य को भी तेज किया गया है।
2: अनफॉर्चुनेटली ये बारिश बहुत अलग तरीके की बारिश जो सिर्फ सटे हुए परमाणु के इलाके में ही हुई, एक लास्ट फ्लड की तरह ये वहाँ पे हुई और सरकार के समक्ष ये बात रखी गई और टास्क फोर्स का एक गठन हुआ है। उसके साथ ही अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वहाँ पे इंश्योर करें कि सबकी सेफ्टी पहले देखी जाए और उसके साथ ही साथ जो टास्क फोर्स है वो वहाँ पे मदद भी करेगी, लोगों के राहत कार्य में भी मदद करेगी और जो हमारी मशीन है लगभग 3 मशीनें वहाँ पे हमने की है।
0: मौसम विभाग ने आज कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। कल 7 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है। सिरमौर जिले के 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए ट्रायल आज नाहन

0: में आयोजित किए गए ट्रायल में जिले के सभी विकास खंडों से करीब 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चयनित खिलाड़ियों को 11 से 13 सितंबर तक पांवटा साहब में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। सिरमौर जिला बास्केटबॉल संघ के महासचिव राकेश चौहान ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों की तैयारी के लिए नाहन में 5 दिवसीय शिविर भी लगाया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भूतापीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत की नई छलांग। वाचक स्वर अनुराग प्राशर।
0: पृथ्वी के भीतर मौजूद अपार ताप ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भारत में उपलब्ध समृद्ध भूतापीय संसाधनों को देखते हुए ये ऊर्जा भविष्य में 24 घंटे उपलब्ध बिजली की एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी क्षमता को साकार करने के उद्देश्य से भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य भूतापीय ऊर्जा को भारत की नवीकरणीय ऊर्जा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। ये पहल वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में भारत की ऊर्जा यात्रा को और गति देने की क्षमता रखती है। लद्दाख में हाल ही में पहले 2 भूतापीय कुओं का संचालन शुरू होना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत की भूतापीय ऊर्जा यात्रा की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने जुलाई 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ONGC ऊर्जा केंद्र ने पूगा घाटी लद्दाख में देश के पहले 2 भूतापीय कुओं को चालू किया। समुद्र तल से 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पूगा घाटी भारत के सबसे संभावनाशील भूतापीय स्थलों में से एक है, जो अपने गर्म जल स्रोतों और धरती के भीतर मौजूद विशाल तापीय भंडार के लिए जाना जाती है। लगभग 1,000 मीटर गहराई वाले ये दोनों कुएं भूतापीय जलाशय के आकलन और उसकी क्षमता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही ये भारत की पहली 1 मेगावाट की प्रदर्शन आधारित भूतापीय ऊर्जा परियोजना की नींव रखेंगे, जो देश में भूतापीय बिजली उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु साबित हो सकती है। भारत जैसे जैसे स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति दे रहा है, भूतापीय ऊर्जा उसके नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने का एक भरोसेमंद और स्वदेशी विकल्प बनकर उभर रही है। पृथ्वी का आंतरिक भाग 4 प्रमुख परतों से बना है। सबसे भारी ठोस भूपटी क्रस्ट, उसके नीचे अर्ध ठोस मेटल तथा कोर, जो तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर में विभाजित है। मेटल और कोर की सीमा पर तापमान लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि कोर में ये 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। ये गर्मी यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे तत्वों के रेडियोधर्मी क्षय के साथ साथ पृथ्वी के निर्माण के समय से बची हुई अवशिष्ट ऊष्मा भी इस ताप का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये गर्मी मेटल में विश्वास संवहन धाराओं को जन्म देती है, क्योंकि गर्म सामग्री को सीमा से कूलर, मेटल और क्रस्ट के ऊपरी हिस्सों की ओर बढ़ती है। इस गर्म सामग्री में हाइड्रोक्साइड के रूप में जल भी मौजूद होता है। मेटल में होने वाली संवहन धाराएं पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक गतिविधियों को संचालित करती है, जिनमें भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधियां और पर्वतों का बनना शामिल है। भूवर्गीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में मौजूद भ्रंश और चट्टानों की दरारें इस गर्म सामग्री को पृथ्वी की सतह के करीब पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। परिणाम स्वरूप पारगम्य चट्टानों के भीतर गर्म पानी और भाप के भूमिगत जलाशय बन सकते हैं। पृथ्वी के भीतर संचित इस प्राकृतिक ताप का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय बिजली उत्पादन सतह के नीचे मौजूद गर्म पानी और भाप का उपयोग करके पृथ्वी की

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से मुन्ने मियां अंसारी, अयान अंसारी, नफीस अंसारी, शाहिद अहमद अंसारी और विंस टेलर। सदर नागपुर से कमल गोल्दा, अंकित गोल्दा, अभिषेक गोल्दा, प्रेम लता गोल्दा और समस्त गोल्दा परिवार। आमला ग्राम अंधारिया बैतूल एमपी से वीरेश झारे, योगेश झारे, त्रिवेश झारे और नवदीप। नेरदे वर्धा छिंदवाड़ा से पूजा देवी, बलराम पटेल, जानवी रामा और देव। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलविंदर कौर धीमान, रोनित नीशु और भूपेंद्र। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत को लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है उषा खन्ना का और फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थी।

साथियों, कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है और इसे सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। मालेगांव ज़िला वाशिम महाराष्ट्र से अरविंद साखरकर, सुनीता, रोहित, निखिल और दीपमाला साखरकर। रणपिसे नगर अकोला महाराष्ट्र से शिवराज भारती, कुमारी टीना भारती, तनिषा वेनो संगेफर, रीना रोहित, मनु गयालकर और राज भारती। कोपर गांव से पेंटर दारूवाला, मतिन दारूवाला, मसूदा दारूवाला, दिया और दानिश खान। बाला चौक यवतमाल से पत्र लिखा है मीना ताई, गायत्री, भूमि, नितिन, तनिश, मुकेश, दीपिका, लवीसा, शौर्य, शुभम, कल्याणी, कुकू और सुनीता श्रीवास ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। आवाज़ है आशा भोसले की, गीत को लिखा है शहरयार ने, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है उमराव जान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर खत लिखे हैं आपने। शैलू बाजार जिला वाशिम से नारायण गवार गुरु, सरला गवार गुरु, सचिन खाडेकर, दक्ष, आयुष पुरवा, निर्मोही और आधिराज ने, रिधोरा से बाबूलाल बोराखडे, गोकुला बोराखडे और मंगेश बोराखडे, दुर्ग रायगढ़ से गेंदालाल श्रीवास, कुशल और गेंदू भाई, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका बलविंदर बीरक, जय तेग बीरक और मीका बीरक, रामना हड़दी से मोहम्मद आरिफ, फातिमा अरफा और एमएच शरीफ, जलगांव सोमनाथ से आपने खत लिखा है डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, कार्तिक और आश्विन।

भुतेकर, संभाजी नगर महाराष्ट्र से वैष्णवी जगदाड़े हर्षुल साउंगी, संभाजी नगर भाव सिंह पूरा से वैभव और गौरव लोखंडे, और बदनापुर से मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी और रुद्र कोलकर ने ये पत्र लिखे हैं। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रवि, फिल्म का नाम है आँखें।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइश पढ़ने में हमें आसानी हो। आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आकांक्षा विश्वकर्मा और चंचल वर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

0: विविध भारती। आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आंख की किरकिरी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा।
1: कौन? तुम?
2: क्या पढ़ रही हो? जरा देखूं तो।
1: कुछ नहीं, ऐसे ही।
2: देखूं तो सही। अच्छा।

0: विष वृक्ष पढ़ रही हो, और मैं तो समझा कि कोई गुप्त चीज होगी।
1: मेरे पास गुप्त क्या हो सकता है?
0: जैसे बिहारी की कोई चिट्ठी।
1: क्या क्या कहा तुमने?
0: अरे मैं तो परिहास कर रहा था।
1: छोड़ो मेरा हाथ। परिहास किसका कर रहे थे? यदि उनकी मित्रता के योग्य होते तो तुम्हारा परिहास मैं सह लेती। तुम्हारा मन छोटा है, मित्रता करने की शक्ति नहीं तुम में।
0: मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ।
2: महिंदा, ओह बड़े समय में आ गया, किंतु ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। केवल एक बात कहने आया हूं। मैं काशी गया था, जानता नहीं था कि भाभी वहां है। बिना जाने उनके सामने जाकर अपराधी हुआ, पर उनसे क्षमा मांगने का अवसर नहीं मिला, इसीलिए तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मेरे मन को ज्ञान अज्ञान में यदि किसी पाप ने स्पर्श किया हो तो उसके लिए उन्हें किसी तरह का दुख ना सहना पड़े। बस
0: मैंने तो ना तुमसे दोष स्वीकार करने को कहा है ना स्वीकार करने को, तब तुम क्षमा मांगकर साधु बनने क्यों आए हो?
2: मैं
1: बिहारी लाला जी, तुम कुछ मत कहो। इस आदमी ने जो कहा है उससे इसी के मुंह पर कलंक लगा रहेगा।
2: अच्छा मैं जाता हूँ।
1: लाला जी मुझसे तुम्हें क्या कुछ भी नहीं कहना। यदि तिरस्कार करने की बात हो तो तिरस्कार करो। लाला जी कुछ तो बोलो लाला जी।
0: हट जाओ मेरे सामने से। अरे अरे, तुम्हारे बाएं हाथ की कोहनी से खून बह रहा है। ला फिरो, मैं अभी पट्टी बांध देता हूं।
1: कुछ मत करो, गिरने दो खून।
0: कैसी बात कर रही हो? पट्टी बांधकर अभी एक दवा देता हूं, दर्द जाता रहेगा और घाव शीघ्र अच्छा हो जाएगा।
1: नहीं, इस दर्द को बना रहने दो, मुझे अच्छा नहीं करा रहा है।
0: मैंने अधीर होकर लोगों के सामने तुम्हें अपदस्त किया, इसके लिए मुझे मुझे क्षमा करो।
1: क्षमा किस लिए? अच्छा किया। मैं क्या किसी से डरती हूँ? जो लोग थक्का देकर चोट पहुंचाकर छोड़ जाते हैं वे ही क्या मेरे सर्वस्व हैं? और जो पांव पकड़ कर रखना चाहते हैं वे कोई नहीं।
0: तो तुम मेरे प्रेम को कभी नहीं ठुकराओगी?
1: नहीं, मैं उसे माथे पर लगाकर रखूंगी।
0: चुन्नी, काशी से लौटने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है।
3: और तुम कैसे रहे?
0: अच्छा ही था। सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ।
3: आज इतनी जल्दी?
0: हाँ, कुछ आवश्यक कार्य है। अच्छा, चलता हूँ। महेंद्र, तू ये क्या कर रहा है? कभी तेरा मन आशा की ओर भागता है, कभी विनोदनी की ओर। आशा जब जब तेरे पास आती है तो उसकी ओर उपेक्षा का भाव रखता है, और विनोदनी के पीछे पीछे भागता है। तुझे क्या मालूम कि उस सरल हृदय पर क्या बीतती होगी? लेकिन आज ना तो भोजन के समय और ना उसके बाद ही आशा आई। मैं तो सोच रहा था कि अपने प्यार दुलार से उसकी सारी वेदना को दूर कर दूंगा। आशा को अब भी मैं कितना प्यार करता हूँ, वो बहुत कम स्त्रियों के भाग्य में होता है। और विनोदनी, आशा और विनोदनी दोनों के लिए मेरे हृदय में स्थान है, और दोनों में से किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं। ओह, ये मौसम, ये चांदी रात, लेकिन विनोदनी मुझसे दूर। नहीं नहीं नहीं, मैं भी उससे मिलूंगा। चलो उसे कमरे में। विनोद, बिस्तर बिछा है, विनोदनी कहाँ है?
1: कौन?
0: मैं हूं, मैं।
4: अरे महेंद्र, इतनी रात को तू यहाँ कैसे? विनोदिनी, महेंद्र बहू को छोड़ इतनी रात के यहाँ क्या करने आया था?
1: मुझे क्या मालूम, शायद किरकिरी के

0: खटपट हो गई होगी। आज भी समय से पहले कॉलेज चले गए, ना हमसे कुछ बोले ना कुछ कहा। चलो उनके कपड़े निकाल दो। अरे चिट्ठी देखो तो किसकी है, ये तो विनोदनी यानी किरकिरी की चिट्ठी, इनके नाम। हे भगवान, जरा पढ़ो तो। कल रात तुमने जो कुछ किया
1: उससे भी क्या तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई? आज फिर नौकरानी के हाथ गुप्त चिट्ठी क्यों भेजी? छी छी, वो अपने मन में क्या सोचती होगी? मुझे क्या तुम जगत में किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रखोगे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? प्रेम? तुम्हारी ये भिक्षा वृत्ति क्यों है? जन्म से तुम केवल प्रेम पाते आ रहे हो, तब भी तुम्हारे लोभ का अंत नहीं है? जगत में मुझे प्रेम करने और पाने का कोई स्थान नहीं, इसी से मैं खेल खेल कर प्रेम का खेत मिटा लिया करती हूं। जब तुम्हारे पास अवसर था तब उस मिथ्या खेल में तुमने भी साथ दिया, किंतु खेल की छुट्टी क्या कभी समाप्त नहीं होती? अब घर में तुम्हारी पुकार हुई है, अब धूल झाड़ कर घर जाओ। मेरे तो घर नहीं है। हाँ, मन ही मना के लिए बैठकर खेलती रहूंगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी।
0: हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों? क्या क्या ये हमारा संपूर्ण सर्वनाश है? मौसी, मौसी!

0: आज माँ ने मुझे रोज की तरह अभी तक आवाज नहीं दी, बात क्या है? चलो मैं स्वयं ही उनके पास भंडारे में जाती हूँ। माँ, माँ, माँ, जान पड़ता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बात भी है ऐसी है। उस रात देखो ना, एकदम पागल की तरह खड़े हो गए, मुझे तो फिर नींद ही नहीं लगी। शायद शायद किरकिरी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी, फैसले के लिए मुझे धर पकड़ना चाहा। रात भर सब्र कहाँ, आपके लड़के में माँ और चाहे हजार गुण हो पर धैर्य तो लेश मात्र भी नहीं है, इसीलिए अक्सर मेरे से उनका झगड़ा हुआ करता है।
1: बहू, तुम झूठ बक रही हो, मुझे आज कोई बात अच्छी नहीं लग रही।
0: मुझे भी आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ, तुम्हारे मन को चोट लगेगी, इसीलिए झूठी बातों से तुम्हारे लड़के के गुणदोष ठगने की चेष्टा कर रही थी, किंतु जो हो गया उसे ठगा नहीं जा सकता।
1: अपने बेटे के दोष गुण मुझे मालूम है, परंतु परंतु तुम ऐसी मायावी हो, ये मैं नहीं जानती थी।
0: कोई किसी को नहीं जानता माँ, अपने मन को ही क्या सब जानते हैं। तुमने क्या कभी अपनी बहू से द्वेष करके इस मायावनी से अपने लड़के का मन बहलाने की इच्छा नहीं की?
1: अभागिन, बेटे के बारे में तो माँ पर अपवाद रखती है, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती?
0: माँ, हम सब मायावनी की जाति की हैं। मेरे अंदर क्या माया थी ये मैं ठीक नहीं जानती, तुम जान गई। तुम में जो माया है उसे तुम नहीं जानती, मैं जान गई। माया थी अवश्य, अन्यथा ऐसी घटना ही न होती। मैंने कुछ जाने कुछ अनजाने जाल बिछाया, और तुमने भी कुछ जानकर कुछ अनजाने बिछाया था। हमारी जाति का धर्म ही ऐसा है।
1: अभागिन, तू तू
2: विनोद,
0: जाओ मेरे कमरे से, तुम चले जाओ।
2: क्यों, क्या किया है मैंने?
0: क्या किया है? डरपोक, कायर, तुम्हें क्या करने की शक्ति है? ना तुम प्रेम करना चाहते हो, ना कर्तव्य निभाना, फिर मुझे क्यों लोगों के सामने नष्ट किया चाहते हो?

0: मैं तुम्हें प्यार नहीं करता ये कह रही हो?
1: हाँ मैं यही कह रही हूँ। लुका चोरी ढकना उघाड़ना कभी इधर कभी उधर, तुम्हारी चोरों जैसी प्रवृत्ति देखकर मुझे घृणा होती है। अभी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जाओ यहाँ से।
0: तुम मुझसे घृणा करती हो विनोद?
1: हाँ घृणा करती हूँ। बिहारी लाला जी।
2: अरे भाभी आप कैसे?
1: यहाँ तुम्हारा आत्मीय स्त्रियों में कोई नहीं है?
2: आत्मीय भी नहीं पराई भी नहीं, बुआ है सो देश के मकान में रहती है।
1: तुम अपने देश के मकान में मुझे ले चलो।
2: तुम्हें क्या कहके वहां ले चलूंगा?
1: दासी कहके, मैं वहां घर का सब काम काज करूंगी।
2: ये बात मन में उठी कैसे?
1: महेंद्र मुझसे प्रेम करता है।
2: ये बात कोई नई नहीं है कि दोबारा सुनने की इच्छा हो।
1: मेरी इच्छा भी नहीं।
2: महेंद्र जिस रास्ते पर चला जा रहा था उसे उससे किसने हटाया?
1: मैंने, अपने हृदय की आग से मैंने महेंद्र का घर चलाया है। मैंने समझा था कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, पर वो मेरी भूल थी।
2: प्यार करने वाली क्या इस प्रकार आग लगा सकती है?
1: वो तुम्हारे शास्त्रों की बात है, अभी उसे समझकर चलने की बुद्धि मुझ में नहीं है। सुनो लाला जी, मैं निर्लज्ज होकर कह रही हूँ, तुम ही मुझे बचा सकते हो। महेंद्र मुझे चाहता है पर अंधा है, मुझे समझता नहीं। एक बार मुझे लगा था तुम मुझे समझ गए हो, शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी। सच कहना, छिपाना नहीं।
2: हाँ, की थी।
1: तुमने भूल नहीं की थी, किंतु यदि समझ नहीं लगे थे, श्रद्धा ही करने लगे थे, तो वहीं क्यों रुक गए? मुझे प्रेम करने में तुम्हें क्या बाधा थी? मैं आज निर्लज्ज होकर तुमसे कह रही हूं, तुमने भी मुझे प्यार क्यों नहीं किया? मेरा चला भाग्य, तुम भी आशा के प्रेम में थी। नहीं, तुम क्रोध न कर सकोगी, मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी। तुम आशा को प्यार करते हो, ये बात जब तुम स्वयं नहीं जानते थे तब भी मैं जान गई थी। आशा में तुमने क्या देखा मैं समझ नहीं पाती। विधाता के पुरुष को आंख के साथ अंतर्दृष्टि कुछ भी नहीं देते, तुम लोग क्या देखकर भूल जाते हो?
2: भाभी अब तुम जो सुनाओगी सुनूंगा, पर जो बात कहने की नहीं है वो ना कहो, यही मेरी प्रार्थना है।
1: लाला जी मैं जानती हूं तुम्हें कहां पीड़ा हो रही है, किंतु जिसकी श्रद्धा मुझे मिली थी और जिसका प्रेम पाने पर मेरा जीवन सार्थक हो जाता, उसके पास इस रात मैं संपूर्ण भय और लज्जा छोड़कर आई हूं। उसमें मेरे मन की कितनी वेदना छिपी है, जरा इस पर विचार कर धीरज धरो। मैं सच कह रही हूं लाला जी, यदि तुम आशा को प्रेम ना करते तो मेरे द्वारा उसका सर्वनाश कभी नहीं होता।
2: आशा का क्या हुआ? तुमने उसके साथ क्या किया?
1: महेंद्र सब कुछ छोड़कर कल ही मुझे साथ ले घर से निकल जाने को तैयार है।
2: नहीं, ये किसी तरह नहीं हो सकता, किसी तरह नहीं।
1: महेंद्र को आज कौन रोक सकता है?
2: तुम।
1: किसके लिए रोकूं? तुम्हारी आशा के लिए? मेरा अपना सुख दुख क्या कुछ नहीं? तुम्हारी आशा का भला हो, तुम्हारे महेंद्र के घर गृहस्थी का भला हो, इसके लिए मैं अपने समस्त दावों को छोड़ दूं? इतनी भली मैं नहीं हूं, धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी नहीं पढ़ी है। मैं जो छोड़ूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा?
2: सुनो, मैं भी तुमसे एक बात स्पष्ट कहता हूं कि ये सब जो तुमने कहा है उसका अधिकांश तुम्हारा नहीं है। छोटे दर्जे के नाटक उपन्यास तुमने पढ़े हैं और उससे ही चुराया हुआ है। तुम अगर नितान

0: शांत अभूत बालिका रहती तो भी संसार में प्रेम से वंचित न रहती। नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है, घर में उसे लेकर काम नहीं चल सकता।
1: तुम मुझे क्या करने को कहते हो?
0: असाधारण कुछ न करो, साधारण स्त्रियों की शुभ बुद्धि जो कहती है वही करो। देश चले जाओ, मैं जनानी डिब्बे में बैठा कर तुम्हें देश तक पहुंचा दूंगा।
1: तो आज की रात यहीं रह जाऊं?
0: नहीं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं।
1: बस इतनी दुर्बलता बनाए रखना लाला जी, पत्थर की देवता की तरह बिल्कुल पवित्र ना हो जाना। किसी बुरे से प्यार करके सरा बुरे बने रहना।
0: विनोद, मैं
1: जीवन सर्वस्व जानती हूँ, जानती हूँ कि सदा के लिए तुम मेरे नहीं हो सकते, किंतु आज एक मुहूर्त के लिए मुझे प्यार करो, उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी और किसी से कुछ न चाहूंगी। मरण पर्यंत मन में रखने लायक तुम कुछ तो दे दो मुझे, कुछ तो दो।
0: रात 1 बजे पैसेंजर ट्रेन जाती है।
1: मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मुझे चिट्ठी अवश्य लिखना, मैं रोज तुम्हारी चिट्ठी पाने की प्रतीक्षा करती हूँ। तुम मेरे विचारक हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारी 2 लाइन की चिट्ठी ही मेरे निर्वासन में मेरा आहार है। कहते हैं एकाग्र मन से जिसे पुकारा जाता है वह अवश्य आता है। मैं भी तुम्हें पुकार रही हूँ, मेरा जीवन सूना है। इस सूनेपन में एक बार तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा। मैं किसी तरह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें आना ही होगा। तुम आ जाओ, एक क्षण के लिए आ जाओ, तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। आ गए प्रभु।
0: आ गया विनोद।
1: तुम चले जाओ यहां से, मैं कहती हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।
0: मैं इतना कायर नहीं कि तुम्हें इस लोक निंदा की आग में छोड़कर चला जाऊं यहां से। तुम्हें ले ही जाऊंगा, उसके बाद मुझे छोड़ देने की इच्छा हो तो छोड़ देना, मैं कुछ भी बाधा नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें छूकर कसम खाता हूं कि तुम जो इच्छा करोगी वही होगा। मैंने अविश्वास के कितने ही काम किए हैं, परंतु आज मेरा विश्वास ना करो। चलो, मैं सवारी लेकर आया हूं।
1: चलो, मैं चलती हूं। जल्दी चलकर माँ को देखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है उन्हें।
2: माँ, प्रणाम माँ।
3: बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं रे, तू है तो अच्छी तरह।
2: माँ, तुमने अपनी बीमारी का समाचार क्यों नहीं दिया? सुनकर मैं एक क्षण भी रुक सकता था।
3: खोकू, अरे क्या मैं जानती नहीं,
2: माँ
3: तुझे सिर्फ पेट पे नहीं रखा रे, अन्यथा तुझसे बढ़कर दुनिया में मेरा कौन है रे?
2: माँ,
3: बहुत दुबला हो गया रे, तेरे देख रेख करने वाला कोई नहीं, अब तो बहू लिया, मछली बहू।
4: हाँ जी जी,
3: इसका भार तुम पर रहा।

0: इसे सुखी रखना।
1: न्यारी, जरा बाहर तो आ।
2: कहो काकी।
1: तुझे नहीं मालूम क्या, महेंद्र विनोदी को लेकर कहीं चला गया है। एक बार महेंद्र को तो बुला नहीं लाएगा, और देरी करना उचित नहीं है।
2: अच्छा काकी, तुम माँ की पथ्य और दवा का ख्याल रखना। काकी काकी, महेंद्र का उद्धार मैं करूंगा।
3: विनोद, ये क्या तुमने फूलों से अपनी बेकी गूंथी? गले में भी फूलों का हार, ये सादा मोटे कपड़े, सारा कमरा, ये बिछोना, सब तरफ फूल ही फूल। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? ये बिछोना जी चाहता है।
4: नहीं नहीं, तुम जाओ, इस बिछोने पर मत बैठना।
3: तो फिर ये श्रृंगार किसके लिए किया है?
4: जिनके लिए किया है वे मेरे हृदय के भीतर हैं।
3: कौन है वो? बिहारी?
4: उनका नाम तुम मुंह से न लो।
3: उसी के लिए तुम मेरे साथ इधर उधर घूमती हो?
4: हाँ, उन्हीं के लिए।
3: उसका पता ठिकाना जानती हो?
4: किसी न किसी तरह जान ही लूंगी।
3: मैं किसी भी तरह जाने नहीं दूंगा।
4: न जानने दोगे ना सही, पर मेरे हृदय से उन्हें किसी भी प्रकार निकाल न सकूंगी।
3: ओ, तुम मर क्यों ना गई? तुम्हारे मरने से कितना मंगल होता।
4: जब तक बिहारी की आशा है मैं मर नहीं सकती।
3: अगर तुम मेरी नहीं हुई तो बिहारी की भी नहीं हो सकती, समझी?
4: मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
3: मेरी माँ रो रही है, मेरी स्त्री रो रही है, उनके आंसू मुझे दूर से ही जला रहे हैं। तुम्हारे मरे बिना मुझे उनके आंसू पहुँचने का अवसर नहीं मिलेगा।
4: मैं कहती हूँ तुम अपने घर जाओ, जाओ यहाँ से। तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। ओह, तुम नहीं मानोगे, क्यों मुझे बार बार तंग करने के लिए आ जाती हो तुम?
2: महेंद्र, महेंद्र?
4: महेंद्र नहीं है, वो शहर गया है।
2: अच्छा, मैं चलता हूँ।
4: तुम्हारे पांव पड़ती हो, तुम्हें थोड़ी देर बैठना होगा।
2: कहो, क्या कहना है?
4: तुम जो कुछ मन में समझ रहे हो वो बात नहीं है। इस घर को किसी कलंक ने नहीं छुआ है। ये फूल तुम्हारी ही पूजा में सूख गए हैं। तुम्हें यही बैठना होगा। बैठो।
2: लो, बैठ गया।
4: तुमने दयापूर्वक मुझे ये स्थान दिया है, और दूर रहकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगी। अच्छा बताओ, मैंने गांव से जो पत्र लिखा था उसे तुमने खोलकर उत्तर दिए बिना महेंद्र के हाथ वापस क्यों कर दिया?
2: मुझे तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, और ना ही महेंद्र के हाथों मैंने कोई चिट्ठी वापस की।
4: अच्छा, अब समझ में आया। सुनो, मैं सब बातें तुमसे कहती हूँ, विश्वास करोगे तो अपना सौभाग्य मानूंगी, ना करोगे तो तुम्हें दोष ना दूंगी।
2: ना ना ना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बिना कुछ कहे ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं। मैं खुद तुमसे घृणा नहीं कर सकता। बस अब तुम एक शब्द भी मत कहो।
4: तो भी बताए बिना जी न सकूंगी। मैंने तुम्हें मन में रखा है, इसीलिए पवित्र बनी रही। आज मैं तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है, मेरा मूल्य नष्ट नहीं हुआ है।
5: अच्छा, तो अब रंग भूमि से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश।
2: सुनो महेंद्र, तुम्हें विनोदनी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। मैं उससे विवाह करूंगा। और सुन लो महेंद्र, तुम्हारी माँ मृत्युशैया पर पड़ी है, उसके बचने की कोई आशा नहीं। मैं आज रात की गाड़ी से विनोदनी को लेकर चला जाऊंगा।
3: ठीक है, मैं जाता हूं।
4: सुनो, ये बात तुम्हारे मुंह से निकली कैसे?

0: उपहास कर रहे हो?
1: नहीं, मैं सचमुच तुमसे विवाह कर रहा हूं।
0: इस पापिष्ठा के उद्धार के लिए?
1: नहीं नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए।
0: बस यही मेरा चरम पुरस्कार है। इतना जो तुमने स्वीकार किया है उससे अधिक मुझे कुछ न चाहिए। मिलने पर भी वो रहेगा नहीं, धर्म उसे कभी सहन नहीं करेगा।
1: क्यों नहीं करेगा?
0: जी जी, ये बात सोचने पर भी लज्जा होती है। मैं विधवा हूं, निंदिता हूं, समस्त समाज में तुम्हें लांछित करूं ये कभी नहीं होगा।
1: किंतु विनोदी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं।
0: सुनो, दूसरे जन्म में तुम्हें पाने के लिए तपस्या करूंगी। इस जन्म में और कोई आशा नहीं करती। मुझसे विवाह करके तुम सुखी ना हो सकोगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, मैं भी संपूर्ण गौरव खो दूंगी। तुम सदा से निर्लिप्त और प्रसन्न रहते आए हो, आज भी वो ही बने रहो। मैं अन्नपूर्णा काकी के साथ काशी चली जाऊंगी।
1: भाभी, न जाने इस जिंदगी में फिर आपसे मिलना हो या ना हो, मैं तुम्हारी कोई निशानी अपने पास रखना चाहता हूं।
0: जी जी
1: भाभी, मैं क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता?
0: तुम तो बहुत पहले ही मुझे जो दे चुके हो वो मेरे शरीर का भूषण है, उसे मरते दम तक कोई नहीं ले सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
1: मैं समझा नहीं, मैंने ऐसा तुम्हें क्या दिया है?
0: भूल गए लाला जी, ये देखो।
1: अरे, ये तुम्हारे हाथ में चोट का निशान?
0: हाँ लाला जी, एक दिन गुस्से में घृणा के साथ तुमने मुझे धक्का दिया था ना, मेरे हाथ में चोट लगी। उस घाव का ये निशान उसी दिन से मेरी आत्मा का आभूषण बन चुका है।
1: भाभी,
0: लाला जी, भगवान तुम सबको सदा सुखी रखे, सदा सुखी।

आंख की किरकिरी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली के इस रेडियो नाट्य रूपांतरण का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। ये हमारे आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।
2: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। साई के 4 बज चुके हैं और हमारे केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम
3: उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में

0: आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक, रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है, उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं चौथा और अंतिम भाग।
1: चूंकि बातें गौरी जी की हो रही हैं, तो इसी विषय पर बना रहता हूँ। आपके निर्देशन में उन्होंने किन नाटकों में काम किया?
2: काफी जुलवा में ही थी पहले तो
1: जी,
2: और जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। मतलब जितने शो हो गए, शायद वो एक आध दो शो में नहीं थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन लगभग मैं नहीं होता था कई बार शो में, लेकिन वो जरूर होती थी। तो उन्होंने रेणुका करके उसका कैरेक्टर था, सैया जी और उनका पेयर होता था वो साथ में, वो भी जोगतीन कम्युनिटी की थी और सैया जी जोगत्या था। तो उसको कर्जा देने वाली, उससे वसूलने वाली, ऐसी एक थोड़ी सी रिच उन्हीं के कम्युनिटी की, पर धाकड़ कैरेक्टर था, उन्होंने वो बखूबी निभाया। उसके बाद एक झुंझ वारियाशी जो मैंने नाटक किया, उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया, क्योंकि उस पूरे नाटक में उनके हिस्से में केवल दो छोटे छोटे सीन्स थे।
1: ओके।
2: लेकिन पूरा नाटक उनके हस्बैंड जो जर्नलिस्ट होता है, उसके करियर को लोगों ने कैसे बर्बाद किया, बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए, बड़े अहदे पे जाने के लिए, और वो सारा कैबिन में हो रहा है और ये कैबिन के बाहर बैठी हुई है, और उनको पीठ ऑडियंस की तरफ करके बिठाया था मैंने। वो पता चलता था इनके पीठ से कि ये अंदर के इसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही, इसके ऊपर क्या क्या परिणाम हो रहा है। और जब वो अंदर आके बर्स्ट आउट होती थी, दैट सीन वॉज मेमोरेबल सीन इन दैट प्ले। उसके पास मी राष्ट्रपति नाम का प्ले मैंने किया था, उसमें भी उन्होंने बहुत मेजर रोल निभाया। तो मुझे लगता है ये दो तीन चार नाटक थे। उसके बाद फिर मैं बाहर भी नाटक करने लगा, व्यावसायिक भी नाटक करने लगा। फिर उसके बाद ये भी हो गया कि चार पांच साल में ऋत्वी का जन्म हुआ, तो वो स्कूल में काम करती थी, हफ्ते में दो बार सेंट कोलंबा जो स्कूल थी वहाँ जाके बच्चों के साथ क्लास लेती थी। तो इसीलिए वो भी एक उनके लिए मर्यादा हो गई कि व्यावसायिक नाटकों में जाना है तो फिर लंबा जाना पड़ता है, 10-15 दिन के टूर लगते थे उस समय पर। पर उन्होंने अपने लेवल पे स्पर्श नाम के नाटक में काम किया, जो दि गोवा हिंदू एसोसिएशन का व्यावसायिक नाटक था। फिर उन्होंने हैंड्सअप नाम के नाटक में काम किया, जो व्यावसायिक नाटक था। तो उन्होंने अपने लेवल पे बहुत सारे, तू का जातो एकुंठाला नाम के नाटक में काम किया, तो बहुत सारे नाटकों में काम किया उन्होंने, सीरियल में काम किया। सह्याद्री की बहुत फेमस इर्जिक नाम की एक धारा चली थी, उसमें उन्होंने कई सारे एपिसोड किए। विजय मेहता के साथ लाइफलाइन जो उन्होंने सीरियल पहली डायरेक्ट की थी उसमें काम किया, गोटिया जो सीरियल चल रही थी उसमें भी उन्होंने काम किया, बहुत सारी सीरियल्स में उन्होंने काम किया, फिल्मों में काम किया। फिर उसके आगे बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्मों में भी काम किया। अशोक सराफ जी के साथ उन्होंने फिल्म संजय सुरकर ने डायरेक्ट की हुई चौकट राजा, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। उसके बाद अक्षय कुमार जी के साथ खिलाड़ी 420 में उन्होंने हिंदी में काम किया
1: जी,
2: फिर मराठी में और सारी फिल्मों में काम किया। और खास उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर काम रहा है वो देवयानी नाम की जो सीरियल लगातार 3-4 साल चली, उसमें मेजर रोल था उनका, और जिसको हाईएस्ट टीआरपी थी उस सीरियल को। तो उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं दिल्ली से आता था तब भी वो 30 दिन शूटिंग करती थी, और कभी कभी संडे को एक स्पेशल एपिसोड होता था उसके लिए रात दिन वो भी काम करती थी। ऋत्विक भी उसी समय सीरियल में काम करता था लीड रोल में, मानसी था चित्रकार तो स्टार प्रवाह के ऊपर। तो मैं जब दिल्ली में आता था ये दोनों बिजी होते थे, और ये दिल्ली आते थे कभी कभी जब मैं दिल्ली में था तब, तो ये जैसे ही पहुंचते थे तो दूसरे दिन सुबह फोन आता था कि कल के एपिसोड में प्रॉब्लम हो गया, आप तुरंत निकल आइए
1: लीजिए।
2: तो एक या दो दिन से ज्यादा हम रह नहीं पाते थे। तो फिर उन्होंने, दोनों ने भी यह तय किया वो सीरियल कंप्लीट करने के बाद कि अब हम ज्यादा समय सीरियल में नहीं देंगे, फिल्म और नाटक यही है। और उनका सबसे अच्छा मुझे लगा कि पैरेलल जो उन्होंने करियर किया वो चिल्ड्रन थिएटर।

0: थिएटर में
1: जी बहुत बड़ा योगदान।
0: लीडिंग थिएटर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट इन महाराष्ट्र की बहुत सारे बच्चों को उन्होंने करियर तक पहुंचाने का काम किया है और अपने किस्म का वो नाटक करती है बच्चों के साथ। उनको एक अपना नैक है, उनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी बनी है कि 10 दिन में वो बच्चों को पूरा आर पार बदल देती हैं और नाटक भी करवाती हैं अंत में, और जो नाटक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी होते हैं, ह्यूमरस भी होते हैं और कुछ मैसेज लेके भी वो नाटक करती हैं। तो इसीलिए अपने आप में वो अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, वो एक्ट्रेस भी है, थिएटर की भी है, सिनेमा की भी है, सीरियल की भी है, ये तीनों मीडिया में वो कम्फर्टेबल है। और चौथा है वो चिल्ड्रन थिएटर की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटर है। मुझे लगता है कि सुधा कर्मरकर और दो तीन सुलभा देशपांडे और इनके बाद बहुत ज़्यादा कंचन सोनटक्के जी के बाद मराठी थिएटर में बहुत ज्यादा उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर में काम किया है
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: जब आपके शुरुआती दो तीन नाटक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए और ये लगा कि ये अलग ताप के नाटक हैं, इनके तेवर बहुत अलग हैं, और आपने उसमें अपना बहुत कुछ झोंक दिया था और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस डायरेक्टर के तत्व जल्दी चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो क्या चीज थी जो लगातार आपको आगे प्रेरित करती रही? और दूसरा, दलित थिएटर मूवमेंट को आप लगातार जिंदा रखे रहे?
1: दलित थिएटर मूवमेंट की बात तो थी, जैसे मैंने कहा कि दो नाटक में तो मैं उसका हीरो था
0: जी,
1: नायक की भूमिका में था। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद एक्चुअल उस मूवमेंट से मेरा संबंध थोड़ा सा विरल हो गया, कम हो गया, लेकिन मैं जो नाटक करता रहा
0: यस,
1: उसमें वो तत्व जो है, मतलब मैंने जिस काम के लिए मैं नाटक में आया था, मैं आज तक उसको भूला नहीं हूं। मैं नाटक में क्यों हूं ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से

0: डायरेक्ट ये मेन स्ट्रीम कंटेंट था कि किस तरीके का भ्रष्टाचार पूरे सत्ता कारण में हो रहा है और उसमें इनोसेंट टैलेंट का बलि कैसे चढ़ाया जाता है, और वो भी जो जर्नलिस्ट है। उसके बाद मैंने नाटक किया दूसरा सामना जो सतीश आलेकर जी ने लिखा, जो हमारी ये शुगर सहकार मूवमेंट है उसके अंदर किस तरीके से फिर वही दलित का बलि कैसे चढ़ाया जाता है। पहला सामना तो जो था वो फिल्म थी, उसका सिक्वेल था जो लिखा गया कि जो दलित का बेटा है जो आईएएस है और आज वो अपर कास्ट का है क्योंकि उसको अडॉप्ट किया गया और उसको मालूम नहीं, और एक दिन अचानक उसको मालूम हो जाता है कि वो जिस जाति से और जिस संस्कार को बिलोंग करता है उसका है ही नहीं, जो भी आईएएस होने के बावजूद भी वो तो है दलित। उसके बाद जो टूटना है उसका, वो टूटना विक्रम गोखले वो रोल करते थे और दूसरा विनय आप्टे करते थे और तीसरा इला भाटे का पहला नाटक था
1: जी।
0: तो ये उस नाटक में भी वही बात अलग किस्म से थी, नाती गोती था। एक मिडिल क्लास फैमिली में एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने के बाद उस फैमिली की वाताहत कैसे होती है, उस फैमिली की जिसको हम मराठी में वाट कैसे लग जाती है और उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, इस तरीके का विषय था
1: जी।
0: जाने मन का बिल्कुल किन्नरों के जीवन पे विषय था उसका, लड़ी नजरिया पे डेमोक्रेसी की कैसी हम लोगों ने 12 बजा दिए हैं उस कॉन्सेप्ट के और हम अपने तरीके की डेमोक्रेसी कैसे लाद रहे हैं, ये विषय था। तो जितने भी विषय हैं ती फुलराणी तक रणांगण एक ऐसा विषय था कि ये भारतीय आदमी जीतता क्यों नहीं है, क्या ऐसे उसमें खून में संस्कार में उसके जीवन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वो विष घोला है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं करता, ये बेदिली है, ये धोखा देना है, ये भारतीय स्वभाव में कैसे, और उसके बाद ज्यादा तो मराठी में कैसे हैं, पानीपत का थर्ड वॉर हम हारे क्या जीते, इसको लेकर वो सारा का सारा असेसमेंट था भारतीय मन का, भारतीय स्वभाव का, बिल्कुल बहुत तटस्थता से किया हुआ और जो नाटक बहुत अंतर्मुख करता था
1: जी,
0: और जिसके 700-750 शो, मतलब दैट वाज सपोज टू बी फर्स्ट 70 mm प्ले ऑन मराठी स्टेज,
1: बिल्कुल,
0: जिसमें भानु अथैया गांधी फिल्म के लिए जिनको ऑस्कर मिला था उन्होंने जीवन में पहली बार नाटक के लिए कॉस्ट्यूम किए,
1: वाह,
0: मंगेश पाड़गांवकर जी ने गाने लिखे,
1: क्या बात है,
0: ये ऐसे ऐसे दिग्गज, पहले कुसुमाग्रज गाने लिखने वाले थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, फिर उसके बाद फिर हमने मंगेश पाड़गांवकर जी से गाने लिखवाए, अनंत अम्मेम्बल ने उसमें म्यूजिक किया, ये सारा का सारा मुझे लगता है कि वो भी एक अलग किस्म का विषय था। तो लेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी हम ये कह रहे कि हमारे पास जीतने का जज्बा क्यों नहीं है, जीतने के बाद भी हमारे आसपास क्या है कि दिल्ली मराठों ने जीतने के बाद भी उस समय मराठों को दिल्ली के गद्दे पे नहीं बिठाया, हमारे नेता ने क्या थी उसके पीछे की सोच, क्योंकि उससे पहले ही हमारे कारोबारियों ने दिल्ली पंजाब के राज्यों को भेज दी थी
1: जी।
0: तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कुरघोड़ी करने का स्वभाव है, एक तरीके से धोखा देने का स्वभाव है, कभी भी कोई भी आदमी एक दूसरे से बेदिली करने का स्वभाव जो है, इसको उस नाटक में क्या कहते हसीये पे रखा था। और वो एक नाटक लोगों को लगा था पानीपत थर्ड यू आर जैसे हार गए वैसे ये नाटक भी बहुत जोर से गिरेगा, उसकी आवाज सुनने के लिए सारे कान बेताब थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस नाटक ने जो खौफ है मराठी मानस में, कुछ भी हुआ तो पानीपत हुआ बोलते हैं हम उसका, डिजास्टरस एक्सपीरियंस इज पानीपत, तो उस पानीपत शब्द से हमने उस नाटक ने लोगों को बाहर निकालने का काम किया। पानीपत वॉज नॉट डिजास्टर बट इट वॉज द बिगेस्ट वॉरफेयर प्लेड बाय मराठाज हेल्प ऑफ अदर पीपल इन इंडिया, और जिसमें मुसलमान भी थे
1: जी।
0: तो ये भूमि पे प्यार करने वाले लोगों का जो एक गठ्ठा था वो मरते दम तक एक दूसरे के लिए लड़ते रहे मरते रहे, उसकी कहानी थी ये रणांगण।
1: क्या बात है। और फिर ती फुलराणी आया,
0: उसके बाद ती फुलराणी आया, उसके बाद ये मध्यम व्यय किया, जब एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का पहला प्रोडक्शन कौन सा किया जाए तो हमने कहा चलो परंपरा से शुरू किया जाए, कालिदास भास ये पहला नाटककार माना जाता है तो हमने उनके मध्यम व्यय से शुरू किया। उसमें भी मुझे हिडम्बा है वो मुझे दिखाई दी, मैं क्योंकि केरल में रहा था, द्रविड़ में मात्र सत्ता कुटुंब पद्धति है और आर्य में पितृसत्ताक है, तो उनकी जो प्रेम की कहानी है भी।

0: इनकी और हिडम्बा की और उनका बेटा जो घटोत्कच है, मुझे लगा कि जो औरत हमारे स्वार्थ से परे हैं, स्वार्थ के अड़े आती हैं, जो भी है, हम किसी को डेरोगेटिव टर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हम हिडम्बा बोल देते हैं। अरे यार, उसके हिडम्बा के क्या चक्कर में आता है? मतलब देखने में वो खूबसूरत भी हो तो जो हमारे स्वार्थ के अड़े आता है उसका कैरेक्टर असेसिनेट करने का हमारा पुराना स्वभाव है।
1: जी जी जी,
0: उस स्वभाव को पकड़कर वो नाटक बनाया हुआ है। और फिर आर्य और अनार्य के बीच की जो राजनीति है, वो जेंडर बेस्ड भी है, वो क्लास बेस्ड भी है, वो हर तरीके की राजनीति है। और वो जब सवाल पूछती है भीम को, और बेटा सवाल पूछता है कि आप कहाँ गए थे, बच्चा पैदा होने से लेकर बच्चा बड़ा होने तक, वॉरियर होने तक वो वापस आके देखा नहीं उन्होंने, उसके बारे में जो सवाल पूछती है, बोलती है कि अगर होती मैं आर्य स्त्री तो क्या होता आपका यही उत्तर?
1: वाह,
0: तब तो राजदरबार बैठते, तब तो तहकीकात होती, चर्चाएं होती, न्याय मंडली बैठती, न्याय होता। चूंकि मैं आर्य नहीं हूं इसलिए आपको लगा कि यू कैन इग्नोर मी।
1: ओहो,
0: तो इस तरीके के मुझे लगता है बहुत बुनियादी जो सवाल है हमारे ही समाज के विसंगति के, वो कहीं ना कहीं मेरे नाटक उठाते हैं। और वो केवल कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं उठाते हैं, मुझे लगता है वो अंतर्मुख करने के लिए उठाते हैं। क्योंकि नाटक का मूल जो स्वभाव है वो किसके लिए नाटक करना है?
1: जी,
0: नाटक केवल लोगों को हा हा हो हू करके जाओ घर में,
1: केवल मनोरंजन,
0: केवल मनोरंजन के लिए नाटक नहीं, मनोरंजन तो रुलाना भी है। नौ रसों में से कोई ना कोई एक रस ऑडियंस के मन में पैदा करना नाटक का मूल रस है, मूल स्वभाव है, मूल चिंतन है, मूल भाव है। हम ये कहते हैं कि नाटक इसीलिए करते हैं ताकि हम समाज को उसका आईना दिखाए।
1: बिल्कुल,
0: उसमें विसंगतियां क्या है, संगतियां क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है, वो आईना दिखा के हम समाज में एक अच्छा समाज कैसे हो, कल्याणकारी समाज कैसे हो, ये करने के लिए, एक आशावादी दृष्टिकोण देने के लिए नाटक होता है। वो हमेशा ऐसा नहीं है कि व्यवस्था के खिलाफ कोई विद्रोह बार बार दिखाने के लिए नहीं है
1: जी,
0: पर वो विसंगतियां हैं, जो विरोधाभास है, वो सारा तो दिखाना नाटक का काम है ना। सिनेमा नहीं करेगा, नाटक नहीं करेगा, साहित्य नहीं करेगा, पेंटिंग नहीं करेगी तो कौन करेगा?
1: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है, मेहनत।

0: समाज को समृद्ध भी करना है, संवेदनशील भी करना है और आगे अच्छा समाज बनाने के लिए सोच के लेवल पर अग्रेसर भी बनाना है, इसके लिए ये मुझे लगता है कला दालन है।
1: बिल्कुल,
0: ये संस्कृति का दालन यही है कि वो आपको एनरिच करता है
1: जी,
0: एक आपके दायरे का विस्तार करता है, सोच का विस्तार करता है, आपकी दिमाग में जो दीवारें आपने बनाई है उसको ढाने का काम करता है, क्योंकि आखिरी इंसान और आप दोनों एक ही है, क्योंकि आप एक भूमि के हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप एक हैं क्योंकि नैसर्गिक अधिकार आपको दोनों को एक ही दिया है और जिसका नाम है शांति से जीना। मुझे लगता है वो नाटक का मूल पर्पज है। अब वो पर्पज हम किस एंगल से दिखाए वो आपका तरीका है। अगर हम बीरबल की एंगल से दिखाए तो बीरबल वही करता था जो अकबर को विसंगतियों का, विरोधाभास का वो आईना ही तो दिखाता था। वो भी नाटक ना करे तो कौन करेगा, वो भी सिनेमा ना करेगा तो कौन करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था में नाटक का रोल यही होता है, व्यवस्था को अपना मन खुला होकर। इसीलिए एक कहावत है ना कि एक ऐसा कहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आपको समझना है, मान लीजिए आप यूरोप गए या किसी भी समाज में, कोई भी देश में चले गए, आपको उस समाज को फास्ट समझना है तो आप जाके उसके 5-6 नाटक देख लीजिए।
1: क्या बात है,
0: उस समाज का आकलन उस 5-6-7-8 नाटकों में से जो आपको जितने जल्दी मिलेगा उतना एक साल भर रहने से नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आईना दिखाता है। अगर ये सच्चाई है तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये निराशावाद है, ये तुलनात्मक फैसिलिटी का कम आंकना है एक दूसरे को, ये जो दीवारें खड़ी करना है इंसान इंसान में, वो चाहे धर्म की है, जाति की है, परंपरा की है, वर्ण की है, वर्ग की है, कुल की है, परिवार की है, इससे क्या बनने वाला है
1: जी?
0: इससे कुछ नहीं बनने वाला। अगर हमें एक स्ट्रेंथफुल देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें सारे समाज की सारी क्षमताओं को साथ लेकर इस देश का जब विकास करेंगे तो हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें विश्व गुरु बनाइए
1: जी। एनसीपीए में एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था, एक ही दिन में 3 अलग अलग भाषाओं के नाटक
0: जी। ये मध्यम व्यायोग नाटक जो था, इसको मैंने हमारे एकेडमी के विद्यार्थियों के लिए एज अ डेमो ऑफ क्लासिकल इंडियन थिएटर किया था। उसके बाद एक 10-12 शो के बाद वो खत्म हो गया और मैं भूल गया उस नाटक को। ये 2004 में किया था, 5 साल में वो बैच निकल गई, उसके बाद भूल गए। कुछ सालों बाद जैसे मैंने कहा कि भास ने जो लिखे हुए नाटक में जो अधूरे छोड़े हुए थ्रेड्स है उसका कहीं ना कहीं मुझे हंट आउट करने लगे। बेटा भी पूछ रहा है और माता भी पूछ रही हिडम्बा भीम जी को, वो सारे सवाल बाद में दिखाई देने लगे और मैंने कहा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग नाटक हो सकता है, इसका नया संस्करण तैयार करना पड़ेगा। ये रंगावृति नई तैयार करनी पड़ेगी, जहां भास रुके हैं उसके आगे भी तो हम नाटक को ले जा सकते हैं। इसको लेके हमने वो नाटक करने की बात सोची। पहले मराठी में करते हैं, फिर करते करते पता चला हम हिंदी में क्यों ना करें इसको।
1: क्या बात है,
0: तो हमने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके उसकी शुरुआत की। फिर ऐसा लगा कि यार ये हिंदी मराठी तो ठीक है, लेकिन जो कुछ मराठी या हिंदी भाषी लोग है जिसको जब तक आप अंग्रेजी में कुछ नहीं करते तब तक वो आपको समझना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, उनके लिए हम अंग्रेजी क्यों ना करें।
1: अब तीन भाषाएं हो गई
0: तो तीन भाषाओं में हमको लगा कि एक ही टीम के साथ करें, नहीं तो बड़ी सर्कस हो जाती। तो इसीलिए सारे मराठी स्पीकिंग एक्टर्स है मूलतः, उसी को हिंदी भी सिखाई, उसमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आती थी, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो अंग्रेजी भी हमारी इंडियन इंग्लिश है। तो ये सारे तीनों भाषाओं में 3 जुलाई 2011 को एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में इस नाटक को लेके हमने सोचा कि इसका शुभारंभ करेंगे
1: जी,
0: और तीनों नाटक एक ही दिन में ओपन करेंगे, एक ही टीम, एक ही डेट, एक ही थिएटर।
1: वाह।
0: तो हमने दोपहर 2 बजे मराठी में नाटक ओपन किया, वही नाटक प्रिया बावरी, उसके 3 अलग अलग नाम जानबूझ के रखे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता कि मराठी कौन सा है, हिंदी कौन सा है। दोपहर 4:30 बजे हमने वही से नाटक किया मोहे पिया हिंदी में, और शाम को 7 बजे वही नाटक किया हमने ओ माय लव इस नाम से, वही नाटक तीनों भाषाओं में, सेम फॉर्म, सेम कॉस्ट्यूम, एवरीथिंग इज सेम। भाषा अलग है, गाने अलग है, सब अलग है।
1: गजब।
0: और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया और आज तक वो विश्व रिकॉर्ड ऐसे ही है, अभी तक किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की उसको, तो हम ही शायद तोड़ने की कोशिश करेंगे कि इसको और एक भाषा में, गुजराती में करके चार भाषाओं में एक ही दिन में कर लेंगे। तो इसको लेकर ऐसा काम हो गया और वो नाटक ने पूरे देश में गजब ढा दिया
1: जी।
0: मराठी में हमने 150-200 शो किए, हिंदी में अभी भी वो चल रहा है, मोहे पिया अभी 300 शो होने को आए हैं अलग से हिंदी में
1: जी।
0: वो कभी हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अंग्रेजी के भी हमने 70-75 शो किए, तो हम ये 15 दिन की नोटिस पे हम किसी भी भाषा में ये नाटक कर सकते हैं।
1: क्या कमाल है।
0: हाँ, तो अभी बहुत सारे भारत भवन में भी, दिल्ली में भी संगीत नाटक अकादमी है या और कोई है, वो चाह रहे कि ये इस तरीके का एक प्रयोग हम दिल्ली में भी करें या और शहरों में भी करें। इस तरीके के आमंत्रण न्योते आ रहे हैं, अब हम उसके ऊपर भी सोच रहे हैं।
1: एक और कमाल है आपका, NSD के दोनों अवार्ड आपको मिले।
0: जैसे एक संगीत, क्योंकि हमारे देश में एक ही अवार्ड था जो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिलने के बाद एक आपका रुतबा माना जाता था कि आपके योगदान को माना जाता था। मैं ये अनुपम खेर जी चेयरमैन थे, तब उन्होंने मुझे सोसाइटी का मेंबर बनाया। उसी समय हमने ये कहा कि भाई पूरे देश को, संगीत नाटक अकादमी तो पूरे देश को लेकर काम करती है, अब उसमें ज्यादातर अलग अलग भाषाओं में NSD के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, पर अवार्ड देते समय ये तो ध्यान में रखा जाएगा कि भाई हर साल NSD एल्यूमिनाई को तो वहाँ अवार्ड नहीं दिया जाएगा ना
1: जी।
0: दूसरे भी भाषाओं के लोग हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने भारतीय थिएटर को जिंदा रखा है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही स्वाभिमान पूर्वक है। तो हमें ये काम करना चाहिए, हमें दो अवार्ड स्टार्ट करने चाहिए, नहीं तो बूढ़ा होने तक जब तक उसको दो आदमी उठा के पकड़ के ले जाते तब उसके बाद अवार्ड दे के उसका इंस्पिरेशन क्या है
1: जी।
0: तो हमने एक सुझाव दिया था कि भाई ऐसे दो अवार्ड, एक 50 साल के ऊपर जो रंगकर्मी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है NSD के एल्यूमिनाई ने, उसको एक अवार्ड दिया जाए, और 50 के नीचे जो भी नया हो 20-25 साल से लेके उस रेंज में एक अवार्ड दिया जाए, ताकि NSD जब एल्यूमिनाई को अवार्ड देगी तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है
1: जी।
0: तो हम NSD के एल्यूमिनाई को ही इंस्पायर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर करते रहें, काम करते रहें। तो फिर वो सोसाइटी ने मंजूर कर लिया और एक युवा जो आवास पुरस्कार था उसको मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार के हैसियत से उसका नाम दिया, और जो दूसरा था जो सीनियर को मिल रहा है वो BV कारंत स्मृति पुरस्कार
1: जी।
0: और हम भूल गए वो सोसाइटी में, फिर उन्होंने कोई कमेटी वगैरह बिठा दी और पहला ही जो पुरस्कार डिक्लेयर किया कि जो सीनियर कैटेगरी में पुरस्कार जो दिया गया BV कारंत पुरस्कार, वो रतन थियाम जी को दिया गया,
1: आपके गुरु।
0: हाँ, हमारे गुरु मतलब
1: जी।
0: और दूसरा जो पुरस्कार युवा रंगकर्मी का पुरस्कार, तो वो अमन केंद्रे को दिया गया।
1: क्या बात है।
0: अब तब तक के लिए योगदान के लिए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और जब मैं NSD छोड़ने के बाद, मतलब मेरा टर्म खत्म होने के बाद 2-3 साल वो अवार्ड दे नहीं पाए थे कई कारणों की वजह से, उसके बाद 2-4 साल नहीं दे पाए थे, तो फिर हमारे बाद के डायरेक्टर ने वो सारे पुरस्कार की घोषणाएं की समिति गठित करके, तो उसमें से जो दूसरा पुरस्कार जो मिलता है
1: सीनियर वाला
0: वो मैं पहला एल्यूमिनाई हूँ कि दोनों भी पुरस्कार, पहला तो स्मृति मिला ही था मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार, और ये BV कारंत स्मृति पुरस्कार भी मुझे दिया गया। एंड ये भी एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई ये दोनों पुरस्कार पाने वाला पहला एल्यूमिनाई ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वामन केंद्र है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन एक रिकॉर्ड और भी तो है कि वहीं पढ़ के वहीं के डायरेक्टर भी बने
1: जी,
0: और एक तूफानी कार्यकाल आपने किया जिसमें बहुत वाइब्रेंट काम वहाँ हुआ।
1: यस, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पहले भी कई सारे, मतलब जब विवेकानंद भी वहीं पढ़े थे वो डायरेक्टर हुए थे, ही वाज फर्स्ट एग्जांपल
0: जी।
1: उसके बाद बीएम शाह तो एनएसडी में नहीं पढ़े थे, लेकिन रतन थियाम हो गए, पर उन्होंने अपना डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर हुए वो भी। मोहन महर्षि हुए, पर उनके कार्यकाल छोटे छोटे रहे, मोहन महर्षि 2 साल के लिए रहे। उसके बाद कीर्ति जैन रही, उसके बाद अंकुर जी रहे
0: जी।
1: तो ये सारे जो थे वो वहीं पढ़े और वहीं डायरेक्टर हो गए। पर महाराष्ट्र का ये पहला रंगकर्मी था जिसको सम्मानपूर्वक वहाँ पर विद्यार्थी के हैसियत से नहीं, पर बाहर के कंट्रीब्यूशन के हैसियत से आमंत्रित किया गया एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो वहाँ पढ़ा था और उसके बाद डायरेक्टर बना, कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये तो दर्ज हो ही जाएगा। पर वहाँ के इतिहास में भी जो बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया उसमें से थोड़ा बहुत नाम तो ले ही लेंगे लोग, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए भी वो कार्यकाल वाइब्रेंट रहा ऐसा लोग अब कह रहे हैं। तब तो क्या होता है कि कोई भी कार्यकाल का महत्व योगदान रजिस्टर होने के लिए बीच में काल जाना चाहिए होता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि दैट वाज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वो इतना ही था कि मैं बहुत ईमानदारी से काम करने गया था, जितना संभव है 24 घंटे से 36 घंटा कैसे हो सकता है ये कोशिश करके। मुझे लगता है कि वहाँ की खूबसूरती, मतलब कैंपस की खूबसूरती, कैंपस का आर्टिस्टिक होना, एकेडमिक जो हमारी गतिविधियाँ हैं उसको पुख्ता करना, जितनी विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उसको पहले सुनना, क्योंकि अल्टीमेटली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बाकी चीज़ों के लिए नहीं, पहले विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है
0: जी,
1: वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसमें क्या क्या मैं था तब उस समय में कौन सा माहौल था, फिर क्या खामियाँ थी, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई विश्वविद्यालय में 10 साल अकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स खड़ा कर चुका था, तो यहाँ क्या प्लस पॉइंट्स है, वो सारे उसमें ढालते ढालते ढालते ढालते एक बहुत स्ट्रांग एकेडमिक स्ट्रेंथ वाले विद्यार्थी पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को एक्टिंग में काम मिले, जो एक्टर्स है डायरेक्शन में, डायरेक्टर को स्पेशलाइजेशन 3 कर दिए, 2 ही थे, एक एक्टिंग था और डिज़ाइन एंड स्टेज टेक्निक्स था, तो इसमें से डायरेक्शन हटाता था वो डिज़ाइनर को ही डायरेक्ट करने के लिए बोल देते थे। तो मैंने कहा ये उसके

0: साथ न्याय नहीं हो रहा है ना। डायरेक्टर एक सेपरेट टेम्परामेंट है, वो अलग स्वभाव है, डिजाइनर एक अलग स्वभाव है, एक्टर एक अलग स्वभाव है। तो सिलेक्शन से ही फिर हमने वो सारा माहौल बदलने की कोशिश की और तीनों स्पेशलाइजेशन वापस शुरुआत करके, तो एक ही साथ एक बैच के साथ दो दो नाटक करने से एक्टर को काम मिलना शुरू हो गया और जो एक्टर भी और डायरेक्टर भी, तो दोनों को भी ये कॉन्फिडेंस मिलना। और डिजाइनर कॉमन होते थे, उनको तो दो दो प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता था, फिर उनको अपना डिप्लोमा प्रोडक्शन तो करना ही करना है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि एकेडमिक माहौल बहुत स्ट्रांग बन गया, फैकल्टी जितनी संभवतः देश की और दुनिया की लाने की कोशिश की गई। तो ये सारा है, उसके साथ साथ उसका विस्तार किया, जो लोग कहते थे कि वो नेशनल नहीं बचा है, उसका थोड़ा सा स्वभाव दिल्ली के आसपास का बना है, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हम उसको डिसेंट्रलाइज कर लेते हैं, मतलब एकेडमिक एक्टिविटी तो रहेगी लेकिन उसका विस्तार हो। मतलब मेरे दिमाग में यह था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल एल्यूमिनाई को यह ना लगे कि यह हमारी संस्था है, पर जो भी थिएटर कर रहा है, वो चाहे अमेटर थिएटर कर रहा है, चाहे प्रोफेशनल कर रहा है, चाहे पैरेलल कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे मूवमेंट की हैसियत से थिएटर कर रहा है, चाहे चिल्ड्रन थिएटर कर रहा है, कोई भी किस्म का थिएटर कर रहा है, फार्मर का कर रहा है, कामगारों का कर रहा है, वो हर किसी को कोने में खड़े हुए किसी खेत में थिएटर करने वाले आदमी को ये लगना चाहिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरी है,
1: वाह,
0: और मैं वहां जा सकता हूं, या वो मुझ तक पहुंच सकती है और मुझे लाभ दिला सकती है, वो ट्रेनिंग के लेवल पर हो, फेस्टिवल के लेवल पर हो। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शंस इन फेस्टिवल्स यहां से हो, क्वालिटी इज द ओनली क्राइटेरिया।
1: यस,
0: मैं हमेशा ये कहता था, भारत रंग महोत्सव हो या कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे जश्न-ए- बचपन हो, बाल संग हो, कोई भी हो, या हमारे आदि क्या कहते हैं ये क्लासिकल थिएटर का फेस्टिवल हमने शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट में अलग फेस्टिवल शुरू किए, इस सब में एक ही था, क्वालिटी इज इन सेंटर। मैं ये कहता था भारंगम में कि अगर कल को मेरे पिताजी का नाटक आता है और यहाँ कंसीडर करने के लायक नहीं है तो उस डीवीडी को फेंक दो और तोड़ दो। कोई पर्सनैलिटी नहीं, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं, कोई किसी का नहीं है, जो थिएटर क्वालिटी का काम करता है वो हम सबका है।
1: क्या बात है।
0: और उसको ही सेंटर में रख के कोशिश यही की गई कि 5 साल उस एनएसडी का जो क्वालिटेटिव माहौल है उसको भी एनहांस करने की कोशिश की गई। बहुत विनम्रता के साथ ये सब कह रहा हूं। दूसरा, मुझे लगा कि जो विस्तार होना चाहिए था उसका, जैसे बंगलोर में हमारा एक सेंटर था पर वो रिसोर्स सेंटर बन के रह गया, तो हमने कहा ये तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको कन्वर्ट किया 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वहां बच्चों को स्कॉलरशिप देके अब वहां 20 बच्चे हर साल पढ़ते हैं। जो एक सेंटर नया क्लासिकल थिएटर में, जो हमारी धारणा थी कि एक संस्कृत शैली का थिएटर जो करना चाहता है, सीखना चाहता है, कहीं और से थिएटर सीख के आया और उसको स्पेशलाइजेशन करना है, उसके लिए मौका ढूंढना चाहिए, रखना चाहिए, इसलिए वाराणसी में 1 साल का कोर्स शुरू किया, सेंटर शुरू किया, और वो क्लासिकल इंडियन ड्रामा सीखने के लिए।
1: जी,
0: जो सिक्किम का सेंटर था वो 1 साल का था, हमने कहा इसको 2 साल करिए, फिर उसको 2 साल करने का सारा जो कुछ था उसको करने की कोशिश की। एक त्रिपुरा में था, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, तो हमने कहा नहीं है, वो केवल टीचर्स ट्रेनिंग जो थिएटर एजुकेशन में निर्माण करना इतना ही उसका काम नहीं है, आर्टिस्ट निर्माण करना भी उसका काम होना चाहिए, थिएटर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, प्रैक्टिशनर भी निर्माण करे और हम टीचर भी निर्माण करे, इसी के लिए वो सेंटर, और दोनों सेंटर नॉर्थ ईस्ट कन्फाइंड हो कि वहां के लोगों के लिए बनाएं, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उस 7 और 8 स्टेट को होना चाहिए। तो इस तरीके से मुंबई सेंटर का जो लेआउट था वो पूरा सैंक्शन करके रखा था। जम्मू कश्मीर में भी अभी अभी सेंटर खुल गया मेरे आने के बाद, तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें वहां करने का मौका मिला। फिर थिएटर ओलंपिक्स, एक सबसे बड़ी जो मतलब भारत रंग महोत्सव का, तो हमने ये तो किया ही किया, पर एक दिन मुझे अचानक पता चला कि थिएटर ओलंपिक्स नाम की कोई एक चीज होती है। तो जब मैंने उसका इतिहास ढूंढने की कोशिश की तो जो पहले ओलंपिक होता था जो स्पोर्ट्स का है, उसमें स्पोर्ट्स भी होता था, उसमें थिएटर भी होता था, म्यूजिक भी होता था, डांस भी होता था, विजुअल आर्ट्स भी होती थी, ये सब मिलके ओलंपिक होता था।
1: ओके,
0: पर आगे चलकर स्पोर्ट्स वाले ने उस

0: प्लेटफॉर्म को हाईजैक किया और ये सब पीछे छूट गए। फिर थिएटर के कुछ लोग इकट्ठा आ गए और उन्होंने कहा कि यार हम इसका हिस्सा थे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे हाथ से गया। तो कुछ विद्वानों ने, थिएटर के रंगकर्मियों ने यह तय किया कि हम अपना थिएटर ओलंपिक्स क्यों ना शुरू करें। और फिर वो शुरू किया, पहला वो ग्रीस में हुआ और ये मुझे पता चला फिर बाद में तुर्की में हो गया, फिर कहीं जापान में हो गया, चाइना में हो गया, कनाडा में, यहाँ वहां हो गया और आठवां होना है ये मुझे पता चला। तो मैंने अपने सोसाइटी से कहा कि भाई ये ओलंपिक अगर हमें मिलता है तो हमको लेना चाहिए। फिर हमारी मिनिस्ट्री है जो केंद्र सरकार की, उनको कहा तो उनकी परमिशन ले ली और आठवां थिएटर ओलंपिक्स भारत में हो इसके लिए हमने कमिटी से रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा हमें आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो हमने बुलाया उनको, आइए, न्योता दिया, वो आए, सब देख लिया, दिल्ली देखा, मुंबई देखा, ये दो चार जगह देखा और उन्होंने कहा नहीं है, ओलंपिक होने लायक तो यहाँ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एनएसडी कैन हैंडल इट, क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल तो हैंडल करती ही है। तो फिर उन्होंने वो हमको मौका दिया और सौभाग्य की बात है कि 51 दिन का तो आठवां थिएटर ओलंपिक्स हो गया जो 17 राज्यों में हुआ, जम्मू कश्मीर से लेके त्रिवेंद्रम तक और इधर मणिपुर और गुवाहाटी से लेके आसाम से लेके इधर अहमदाबाद तक, मुंबई, बंगलोर, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, ये सारे उसके सेंटर थे। 17 सेंटर में 51 दिन में हमने 450 नाटक, 32 देशों का पार्टिसिपेशन, ये मेजर नाटक जो मेन थिएटर में किए उसी को यूथ से जोड़ने के लिए हमने 300 कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 300 नाटक सेलेक्ट करके, मतलब उसमें भी 1100 नाटक आए थे, एक कमेटी ने 300 नाटक सेलेक्ट किए, वो 300 शो और फोक, ट्राइबल और स्ट्रीट प्लेयर्स जो है हमारे संस्कृति के आधार स्तंभ, वो कव्वाली से लेके सारा कुछ, तो उनके 600-650 शो।
1: तो ये तो कितने,
0: ये लगभग 1500 शो, 1500 शो हमने उसमें 51 दिन में किए और जिसमें 25-26 हजार आर्टिस्ट इन्वॉल्व हो गए देश के और दुनिया के।
1: तो बहुत भव्य,
0: बहुत हो गया। ये ऐसा माना गया कि ये भारत के इतिहास का नहीं, रंग जगत के इतिहास का नहीं, नाटक जगत के इतिहास का नहीं है, दुनिया के इतिहास का, नाटक जगत के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट किसी ने किया हो तो भारत देश ने किया और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने किया।
1: वाह वाह,
0: ये मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट हुआ। और एक बहुत अच्छी बात है, जितने नाटक वाले थे हमने 125 डायरेक्टर को इनवाइट किया जिन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिस किसी भी भाषा में, उनको हमने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनवाइट किया कि भाई आप अपना बेस्ट प्रोडक्शन लेके इसमें शामिल हो जाइए। अब 125 तो नहीं हो पाए लेकिन 105 इनवाइटेड डायरेक्टर ने उसमें नाटक किए।
1: वाह,
0: कॉम्पिटेटिव फेस्टिवल में हमने कहा था कि उसमें 1200 नाटक आ गए, उसमें से 250 नाटक चुन लिए गए और विदेशी नाटक 32 देशों के नाटक आ गए। तो ऐसा मिलाकर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा इवेंट हो चुका है और इतना बड़ा क्वालिटेटिव थिएटर फेस्टिवल मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ। उसके बाद तो एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और सौभाग्य से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, और उसका मैं डायरेक्टर था, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: सिनेमा के आकर्षण से आप कैसे बचे रहे अपने पूरे जीवन काल में?
1: नहीं, मुझे मालूम था कि मुझे पहले अपनी स्पेस नाटक में पैदा करना जरूरी है, क्योंकि मेरी जगह है। मैं कहीं भी जाऊं, भूला भटका हो जाऊं, पर गिरने के बाद मुझे अपनी एक जगह चाहिए, वो पुख्ता जगह तैयार होना जरूरी था। पर वो क्या हो गया कि मैं एकेडमिक से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया पहले से ही।
0: जी जी,
1: एनएसडी हो गया, रिसर्च हो गया, आके एनसीपीएम में 10 साल, फिर वही एसोसिएट हो गया, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 साल हो गया। जब भी मैंने थिएटर से फिल्म की तरफ जाने की कोशिश की, रंग देवता ने किसी न किसी बहाने मुझे वापस खींच लिया।
0: वहां नहीं जाना है,
1: वहां जाने नहीं दिया। मतलब ऐसी कोई परेशानियां या उस तरीके की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी की कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करो। मतलब मैं जाने मन नाटक किया और रणांगण किया, दो बहुत मेजर प्लेस थे मेरे हिसाब से, एक ही साल के आसपास किए मैंने। और ये तय किया था कि आप 5 साल में नाटक नहीं करूंगा, तब भी ये नाटक चलते रहेंगे और नाम गूंजता रहेगा, तो अब मैं फिल्म करूंगा। तो कोई एक प्रोड्यूसर उस समय मुझसे बहुत बड़ा मेगा इवेंट करना चाह रहे थे फिल्म में, और मेगा कंटेंट पे वो बजट लेके बैठे हुए थे। तो उसी दरमियान डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, जो वाइस चांसलर थे मुंबई विश्वविद्यालय के, बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर हो गए, फिर राज्यसभा के मेंबर हो गए, तो उन्होंने एक कमेटी स्थापन की। उस कमेटी में मुझे भी लिया गया और बोले कि 35 साल से मैंने देखा हिस्ट्री मुंबई विश्वविद्यालय में, नाटक का विभाग हो इसके लिए इतनी कमेटियाँ हो गई, इतना हो गया, पर आज तक वो हो नहीं पाया। उसमें जब्बार पटेल थे, दामू केंकरे थे, मैं था, उसके बाद रघुवीर तड़ाशीलकर थे, जयंत पवार, ऐसे 7-8 लोग थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई कमेटी बिमिटी, आपकी कमेटी है अंतिम है, अब आपको 4 महीने के अंदर मुझे ये विभाग शुरू करना।
0: अरे गजब,
1: आप जो जो चाहिए बताइए मुझे क्या चाहिए। तो पहले उन्होंने कहा एक सिलेबस दे दो, तो हमने कहीं यहाँ वहां से कटिंग पेस्टिंग करके एक सिलेबस दे दिया उनको, जो उन्होंने एकेडमी काउंसिल में पारित कर लिया, मैनेजमेंट काउंसिल में पारित कर लिया कि हमको ये डिपार्टमेंट खोलना है। 4 महीने में उन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वो 4 महीना मेरे पीछे पड़े रहे कि तुमको इसका हेड होना है, तो मैंने मना कि मुझे तो जाना है, मैं तो सिनेमा करने वाला हूँ।
0: कोई मेगा प्रोजेक्ट है?
1: हाँ, मेगा प्रोजेक्ट है। और फिर उन्होंने जब्बार पटेल जी को, दामू केंकरे जी को, ये सारे हमारे दोस्तों को बोला कि नहीं, इसको राजी करो। तो फिर वो होते होते फिर सुशील कुमार शिंदे जी तक बात पहुंच गई, और एक दिन उनका भी फोन आ गया कि वैसे भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर अच्छा नहीं है मुंबई में, तो इसीलिए अगर वो सही आदमी के हाथ में नहीं जाएगा तो फिर ये आप लोग रोते रहोगे। तो वो जो कह रहे हैं मुणगेकर, उसकी बात मानो, और मैं आपको महाराष्ट्र की जनता की ओर से बोल रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि 1-2-3 साल दे दो, 2 दिन 3-3 घंटा 4 घंटा दे दो, बाकी अपना काम करते रहो। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है सर, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है तो आप, मैं आपको बता देता हूँ, 10 साल रात दिन काम करेंगे तभी खड़ा होगा। बोले जो भी है कर लो और इसको फाउंडेशन करके फिर बाद में छोड़ के जाओ। तो अब इतने सारे रंगकर्मी भी हैं, राजनेता भी हैं और मित्र भी हैं, ये सारे मेरे नाटक देखने वाले भी थे, तो सभी की ओर से, चारों ओर से वो लगा कि आपको करना चाहिए। फिर हमने कहा कि चलो यार, इसको 2 साल के बाद प्रोजेक्ट को करते हैं, वह 3 साल के बाद फिल्म को, तो वो स्वीकारना पड़ा। और एक बार वो स्वीकारने के बाद 2003 में मैंने उसको स्वीकारा, 13 कब आया मुझे समझ में नहीं आया।
0: जो 2-3 साल सोचा,
1: 2-3 साल सोचा था। और रात दिन मैं सुबह 7:45 पहुंचता था, रात को 12 बजे घर पहुंचता था।
0: अरे बाप रे।
1: पर चूंकि वो उतनी इन्वॉल्वमेंट से किया, इसलिए एक नेशनल लेवल का 10 साल में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया और

0: जहां पर लोग पढ़ने के लिए ज्यादा पसंद करते थे बजाय कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए। तो जो सारा का सारा फ्लो था वो वहां से मुंबई की तरफ मुड़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली मुंबई में ही जाना है सबको, मतलब ज्यादातर लोगों को, अपवाद तो बहुत है। तो फिर 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी मिल रही है।
1: जी जी,
0: तो ये भी जिसको एकेडमिक्स में जाना है उसके लिए ये भी और एक शॉर्टकट हो गया। और वो सारे लोगों को हम बुलाते थे जो बाहर जाके जिनके साथ इनको काम करना है, चाहे वो फिरोज अब्बास खान है, चाहे दिनेश ठाकुर है, चाहे रमेश तलवार है, एम एस सत्यू साहब है, जब्बार पटेल है, डॉक्टर लागू है, नीलू फुले जी हैं, विजया मेहता जी है, जितने भी मराठी हिंदी अंग्रेजी और परेश रावल जी है, नसीरुद्दीन शाह है, मैं ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं हमने जिनको बुलाया नहीं। तो एक तरीके का वो अड्डा बनते बनते वो एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया, वो भी एक अपने आप में एक यूनिक, यूनिवर्सिटी के पूरे प्रेशर में, सेटअप में वो खड़ा करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, बट आई एंजॉयड दैट आल्सो। और एक बहुत अच्छे एक से एक बेहतर प्रोडक्शन भी हो गए। ये मध्यम व्यायोग तो उसी के लिए किया था, फिर ईडीपस किया 2 मंजिला सेट लगा के। मेरे बाद और भी डायरेक्टर्स ने भी काम किया, विजय केंकरे ने किया, चंद्रकांत कुलकर्णी ने आके काम किया, पुरुषोत्तम बेर्डे ने किया, रंजीत कपूर ने आके काम किया, अंकुर जी ने आके काम किया, इतने सारे। और ये पहला विभाग है पूरे देश में यूनिवर्सिटी के मर्यादा में कि पहले साल हमने अपना नेशनल फेस्टिवल शुरू किया।
1: वाह वाह वाह,
0: राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव।
1: जी,
0: इसमें ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है कि जिसको हमने इनवाइट नहीं किया, पूरे हर एक, रतन थियाम मणिपुर से 2 बार आ गए, बंसी कौल आ गए, उसके बाद रैना साहब आ गए, उसके बाद रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आ गए, मतलब कोई भी, साउथ का बी जयश्री आ गई, अहमदाबाद से फलाना आ गया, सौम्या जोशी आ गए, इतने सारे पुराने भी डायरेक्टर्स और नए भी डायरेक्टर्स सबको वहां लाया। ऐसे प्रोडक्शन हम चुन चुन के लाते थे कि जो अदरवाइज मुंबई में देखने सुनने को मिलेंगे नहीं, तो वो लंबी लाइन में खड़े होके लोग अंदर जाते थे और वो माहौल भी देखा हमने। और सारा का सारा विद्यार्थी ऑर्गेनाइज करते थे, हम सिर्फ उसके पीछे खड़े रहते थे।
1: वाह वाह,
0: कि अंत में अगले जनरेशन के रिस्पॉन्सिबल लोग बनाने का काम वो यज्ञ जैसा हो रहा था। तो वो भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि मिसाल है, जो माहौल दिल्ली में मैं ले गया वो यहीं बनाया हुआ था।
1: जी,
0: क्या करने से बच्चे के जीवन में परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा वहां तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें एड ऑन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कम पड़ा था, क्या ज्यादा था। तो मुझे लगता है कि वो सारा जो एकेडमिक्स है उससे मेरी कहीं दोस्ती नहीं टूटी, जो प्रैक्टिसेस है उसमें मेरी कोई दोस्ती नहीं टूटी, तीसरा है मेरा रिसर्च का स्वभाव अभी तक वैसा ही है, चौथा है दुनिया भर का जो हो रहा है उसका कॉग्निजेंस रखना कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी एक अपने आप में दिलचस्प बातें थी। मुंबई में जो जो भी आता था, जो किसी भी देश से आए, वो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में आए बिना जा नहीं सकता था।
1: जी जी,
0: ऐसा कुछ हमने, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, चाहे अमेरिकन सेंटर हो, चाहे जर्मन सेंटर हो, रशियन सेंटर हो, छोटे से छोटे देश का कोई भी रंगकर्मी आता था वो मुझे पता चलता था, क्योंकि वो नेटवर्क था, दोस्ती थी इन लोगों से, जो दिल्ली में भी बहुत काम आया मुझे बाद में आगे चल के। तो इसकी वजह से ये भी खड़ा हो गया। और अभी तक मैं जब तक था, मुझे लगता है 8 बार राष्ट्रीय वसंत नाट्य महोत्सव हुआ, 8 या 9 बार।
1: जी,
0: तो उसमें भी हमारे बच्चों को दुनिया भर का बेहतर नाटक देखने को मिलता था। कोई नॉर्वे से आ रहा है, एक कोई आदिवासी ग्रुप थिएटर लेके, उसका परफॉर्मेंस हम वहां करते थे।
1: बाबा,
0: मतलब ऐसा नहीं है कोई से भी, कोई भी आए और हमको पता चले कि हम उसको हाथ जोड़ के पकड़ के लाते थे और जितना भी संभव है हमारी अपनी इसमें सुविधा देना उतना करते थे। क्योंकि एक क्लोज थिएटर कुसुमाग्रज जो भाषा सभागृह है वो हमारे हाथ में था, और एक ओपन एयर थिएटर हमने हमारे लिए हमारे इंजीनियर से कंस्ट्रक्ट करवा लिया था, उससे बेहतर थिएटर तो आज इस देश में कहीं नहीं है। ओपन एयर थिएटर में जाइए, माहौल है कि यहाँ बैठे बैठे आप करियों का आस्वाद ले सकते हो।
1: सही है, सही है। तो सिनेमा के जो आपके सपने है, आपकी धारा को,
0: तो इसीलिए सिनेमा, मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि मैं सिनेमा नहीं करूंगा, मुझे लगा था कि यहाँ पर एक स्पेस बननी चाहिए, आपकी जगह बननी चाहिए। और ये मेरा स्वभाव नहीं कि इसको छोड़ के उसको पकड़ो और उसको पकड़ के उसको ताड़ो। मुझे लगा कि ये जहां काम करना है, जहां आनंद आ रहा है, और हर बार आप अपनी डिस्कवरी कुछ कर रहे हो, मतलब अभी तक मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं किया कि मैं अपने आप को रिपीट कर पाऊं। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कुछ नया नाटक करना

0: जी जी
1: सिनेमा का भी सपने आते हैं कि भाई मुझे ऐसा सिनेमा करना है कि जैसे पहले नाटक ने देश को हिला दिया, वैसे मैं कम से कम पहले फिल्म में दुनिया को हिला दूं। ऐसा कोई कंटेंट मैं ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई कहने का तरीका ढूंढ रहा हूं, ताकि वो माध्यम में जाने के बाद लोगों को ये ना बुलाए मेरा कुछ देखो।
0: जी जी जी
1: वो अपने आप इतना बोलना चाहिए कि यार आई शुड गो एंड सी दैट फिल्म।
0: तब तक इस धारा को ऋत्विक आगे बढ़ा रहे हैं।
1: ऋत्विक के 2 या 3 सिनेमा आ गए हैं और तीसरा ही पिछले हफ्ते में उसके सिनेमा का फिल्म फेस्टिवल में एक स्क्रीनिंग हुआ है।
0: जी जी
1: उसके पहले उसका ड्राई डे एक सिनेमा रिलीज हो गया है। अभी रिसेंटली एक बहुत इम्पोर्टेंट सिनेमा है जो उतना अंडरलाइन होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया पर आगे चलकर होगा, सरगम नाम का सिनेमा है और बहुत यूनिक स्टोरी पे बनाया है और उसका खासियत यह है कि गिरीश कर्नाड जी का आखिरी सिनेमा है जिसमें गिरीश कर्नाड जी ने स्वतः काम किया है।
0: जी
1: और वो मराठी सिनेमा है और वो बहुत अच्छा रोल किया है गिरीश कर्नाड जी ने और ऋत्विक और गिरीश कर्नाड जी आमने सामने हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: ऋत्विक प्रमुख भूमिका में नायक की भूमिका में है और वो ऐसा लगता है खलनायक है लेकिन वो है ही नहीं।
0: जी
1: तो ये सारा जो मुझे लग रहा है कि ये जो धरोहर है या ये जो थ्रेड्स है या जर्नी है वो तो आगे चलती रहेगी। ऋत्विक अपने तरीके से वो थिएटर भी कर रहा है और सिनेमा में भी काम कर रहा है और भी कुछ वो करना चाह रहा है जो कभी बोलता है कभी नहीं बोलता है।
0: अच्छा क्या बात
1: तो
0: है।
1: ये तो चलते रहेगा सिलसिला पर सिनेमा भी करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आई हैव रेजिस्टेंस अबाउट सिनेमा। आई एम वेरी हैप्पी विथ सम एक्सप्रेशंस। सिनेमा में भी लोग बहुत यूनिक काम कर रहे हैं और भारतीय सिनेमा में भी कर रहे हैं
0: जी,
1: पर वो मेन स्ट्रीम में नहीं है।
0: जी
1: मेन स्ट्रीम जो हमारा व्यावसायिक सिनेमा है उसमें बहुत रेयरली आपको लगता है कि यार ये ठीक है।
0: जी
1: इसलिए मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर भी हूँ तो वो इसीलिए हूँ कि मैं सिनेमा देखते रहता हूँ
0: हर तरह की सिनेमा
1: पर नजर। सिनेमा देख
0: जी वामन केंद्रीय जी आपकी तमाम अगली अभिव्यक्तियों का हमें इंतजार रहेगा और इस लंबी बातचीत में बहुत आनंद आया। सबसे अच्छी बातचीत वो होती है जिनमें अगली बार की बातचीत की गुंजाइश बनी रहे।
1: जी जी जी
0: तो मुझे लगता है इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूनुस जी और विविध भारती का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना सारा गपशप करवाने के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू। धन्यवाद।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का 4th और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: उजाले उनकी यादों के।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है पहले हिंदी में समाचार, व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारतीय लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं।
2: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना ही सच्चा सशक्तिकरण है। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1.19 करोड़ किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडप में आयोजित होगा। सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों के तहत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़ी प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट और अडिग है। कोयला मंत्रालय ने पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन का कारण केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पंजाब के बिजली संयंत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया गया है। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज 4 मंजिला इमारत ढह गई। अग्निशमन विभाग के अनुसार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की गई हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तेज वर्षा का अनुमान जताया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति गीता दत्त की आवाज में फिल्म बहार से।

अभी आपने सुना गीता दत्त की आवाज में गाया ये भजन। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं रफू चक्कर फिल्म से ये भक्ति रचना।

0: कंचन व साथियों की आवाज़ों में गाए इसी भक्ति रचना के साथ हमारा आज का भजन फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
2: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
3: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जाँच करवाएं और अपनी आँखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: अभी आप सुन रहे थे भजन फिल्मों से FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज के दिन आप श्रोता और युवा साथी सुना करते हैं वीकली पल्स, जिसमें हम देते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल अपडेट्स।

कार्यक्रम युवा मंच सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को, युवा भाई बहनों को, आपकी दोस्त वर्षा टोश का प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि संडे वाले दिन तो कम से कम आप बिल्कुल तंदुरुस्त फिट होंगे, क्योंकि आज का दिन जो होता है वो मौज मस्ती का होता है। पूरे हफ्ते भर की थकान जो है वो हम आज ही के दिन उतारते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी हाजिर हैं आपकी सेवा में ठीक उसी समय पर, लेकर आपके लिए नई जानकारियाँ, और साथ ही साथ हम आपका मनोरंजन

भी करवाएंगे अच्छे अच्छे गीतों के साथ। तो शुरुआत हम करेंगे म्यूजिकल ब्रेक के साथ, क्योंकि हमें पता है हमारे युवा साथी जो हैं सबसे पहले इंतज़ार करते हैं म्यूजिकल ब्रेक का। तो चलिए चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: युवा साथियों, कार्यक्रम में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं हूँ आपके साथ वर्षा टोच। और रविवार के दिन युवा साथियों, आप तो जानते ही हैं कि रहता है वीकली पल्स, और इसमें हम आपको देते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल अपडेट्स। तो चलिए सबसे पहले हम इंटरनेशनल अफेयर्स की कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करें। युवा साथियों, रूस के आदेश की अगर हम बात करें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी की पर शनिवार आधी रात से 72 घंटे यानी 3 दिन तक हमले ना करने का आदेश दिया है। और मॉस्को में अमेरिकी दूतों से बातचीत की पुष्टि भी की गई है। अमेरिका और ईरान के तनाव की अगर हम बात करें तो अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी के पास 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमले किए हैं, जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा अमेरिकी नौसेना के जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद हुआ है। युवा साथियों, जुड़े रहें आकाशवाणी धर्मशाला के साथ, यूं ही हम जानकारियां आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन फिर लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। युवा मंच कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त वर्षा कटोच, और बात हो रही है वीकली पल्स पर। तो चलिए युवा साथियों, अब अपने राष्ट्र की कुछ बात कर लें। भारत की जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ ने अनुमानों को पछाड़ दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.8% दर्ज की गई है। ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 7% के अनुमान से काफ़ी अधिक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 9.2% और सर्विसेज सेक्टर ने 10% की मजबूत बढ़त दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर देश की अर्थव्यवस्था की तारीफ की है युवा साथियों। और अब हम बात करते हैं इसरो की। तो इसरो ने लॉन्च किया है नया अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन युवा साथियों यानी इसरो ने 4 सितंबर को अपने GSLV-F17 रॉकेट के जरिए EOS-05 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ये भारत का पहला ऐसा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जा रहा है, जिससे भारत की सीमाओं और पर्यावरण पर लगातार पैनी नज़र रखी जा सकेगी। और अब हम बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की। तो युवा साथियों, डिजिटल अरेस्ट ठगों पर सीबीआई का बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। देश भर में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट घोटालों के खिलाफ बड़ी कार्य

कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 7 के तहत 20 राज्यों में 89 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान गिरोह के कई सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया, जिन्होंने हाल ही में बिट्स पिलानी के एक पीड़ित से 7.67 करोड़ की रंगदारी वसूली थी। तो और भी जानकारियां हम अपने युवा साथियों व श्रोताओं के साथ साझा करेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत युवा साथियों, जुड़े रहें आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुनते रहें जानकारियां और संगीत।

0: जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
1: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
0: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: युवा साथियों, कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है और आशीर्वाद हो रही है वीकली पल्स पर। तो चलिए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और अब महिला एशिया कप 2026 की बात करते हैं। तो इसमें भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। दुबई में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया। पाकिस्तान की टीम केवल 55 रनों पर सिमट गई, जिसे भारत ने महज 8.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा ने इस मैच के दौरान इतिहास रच दिया। वे महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज और सबसे कम उम्र में 3000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने ये कारनामा महज 22 साल और 220 दिन की उम्र में कर डाला है। और युवा साथियों, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के अगर इस सप्ताह के अपडेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस साल मॉनसून की आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में अब तक 270 लोगों की जान जा चुकी है और 492 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही राज्य को करीब 1242 करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। सड़कें और बुनियादी ढांचा लगभग ठप है। वर्तमान में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य की 85 से अधिक सड़कें पूरी तरह बंद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 45 सड़कें मंडी जिले की हैं। इसके अलावा 29 बिजली ट्रांसफार्मर और 51 पेयजल योजनाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 11 सितंबर तक राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले एक सप्ताह के लिए कोई गंभीर ऑरेंज या भारी अलर्ट जारी नहीं किया गया है, बल्कि हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। और आगे हम बात करें तो छात्रों के जापान दौरे के बारे में हम आपको बताएं तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 44 इंजीनियरिंग छात्रों के एक दल को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर जापान के शैक्षणिक भ्रमण पर रवाना किया। इस यात्रा के लिए प्रदेश भर से 650 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। युवा साथियों, जानकारियां तो हम यूं ही आपके साथ साझा करते रहेंगे 5:55 तक, लेकिन अब लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में।

युवा साथियों, इसी गीत के साथ अब हमारा युवा मंच कार्यक्रम जो है वो संपन्न होने वाला है। लेकिन संपन्न करने से पहले हम ये कहना चाहेंगे युवा साथियों कि हमें हमेशा स्वीट पॉइजनिंग से बचना चाहिए। अब चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और अब अपनी दोस्त वर्षा टोश को आज्ञा दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम के प्रसारण में शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामे गजल। कार्यक्रम मिंजरा जो कि महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन रहेगा। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे शाम 6:30 पर और इसमें जुड़ने के लिए आप हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर डायल कर सकते हैं और ये है 01892224391। इस पर डायल करके महिलाएं हमारे साथ जुड़ सकती हैं।

शाम 7:10 पर हम अपने किसान भाइयों को सुनवाएंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। इसमें जानकारियों के साथ साथ आपको लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। रात्रि 8 बजे हम प्रसारित करेंगे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। देश का नाम आप सुना करती हैं रात्रि 8:30 पर, रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्माता निर्देशक महबूब खान द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। और अब एक नज़र आकाशवाणी दिल्ली से शाम के प्रसारण में रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7 बजे व रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 और रात्रि 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और रात्रि 10 बजे रविवार सीरियस संगीत सभा भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएगी। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के केंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी आपके नाम?
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: चुप चुप बोलो क्या
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की दुधाल्टी पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कई बार पात्र लोग योजनाओं की जानकारी के अभाव में सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभों से वंचित रह जाते हैं। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का उल्लेख करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को इस योजना के लिए पात्र परिवारों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बदहाल हुई है। नाहन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार करीब 2000 स्कूलों को बंद कर चुकी है और इसके बावजूद भी शिक्षा सुधार का गुणगान किया जा रहा है। बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में करीब 3500 स्कूलों में एक एक अध्यापक है, जबकि 150 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग भी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। भाजपा द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सेवा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव सैजल ने आज नाहन में बताया कि प्रधानमंत्री का जीवन सेवा समर्पण

0: और संघर्ष को समर्पित है और 25 वर्षों का उनका राजनीतिक सफर प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में शुरू हुई योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्रिय राजनीति में 25 वर्ष जो है वो पूर्ण हो रहे हैं। उनके ये 25 वर्ष सेवा समर्पण और संकल्प से भरे हुए, संघर्ष से भरे हुए 25 वर्ष हैं। और उनका ये राजनीतिक जीवन में ये समझता हूं कि एग्जाम्पलरी है, उदाहरण है पूरे विश्व के अंदर। जब से केंद्र में उन्होंने इस देश का नेतृत्व संभाला है, उनकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है और कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार से भी कभी केंद्र की सरकार जो है वो योजनाओं के माध्यम से इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है लोगों के जीवन में जो है वो परिवर्तन लाया जा सकता है।
0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिले में रामपुर पुल से हरोली जल भवन क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी सहित योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। हरोली में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की तर्ज पर विकसित हो रही न्यू हरोली एक वर्ष के भीतर क्षेत्र के विकास की नई पहचान बनकर उभरेगी। अग्निहोत्री ने बताया कि रामपुर पुल से हरोली जल भवन तक करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार से जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर शिक्षकों की कमी पाई गई है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये खामियां सरकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावे पर सवाल खड़े कर रही है।
2: शिक्षा के आंकड़े आप देख लें, शिक्षा का स्तर क्या है, बड़ी हैरानी होती है जब 150 से ज्यादा स्कूल हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जिसमें एक भी अध्यापक नहीं है, 3,500 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक अध्यापक है। और जो दावा करते थे कि हिमाचल प्रदेश तो पिछले 4 सालों में शिक्षा में बड़ी लंबी छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर देश भर में आ गए हैं, मैं देख रहा था आंकड़े, जो टॉप के 10 राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का कहीं नाम भी नहीं है।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिले में भटियात क्षेत्र के थुलेल में आज छात्राओं की अंडर-19 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं से खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। पठानिया ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेल व अन्य गतिविधियां व्यक्तित्व निर्माण और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र में भारी बरसात के चलते क्षतिग्रस्त हुए बलाणा गोला संपर्क मार्ग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन से प्रभावित हो रहे हिस्से स्थायी समाधान के निर्देश भी दिए। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को वर्ष भर खेल गतिविधियों से जोड़े रखने पर बल दिया है। वे कांगड़ा जिले में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भरमाण में अंडर-19 खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ शिक्षा और खेलों पर विशेष ध्यान दे रही है। चंद्र कुमार ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा करते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: रुक जा बुद्धू।
5: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
6: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।
8: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामे गजल। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई इस गजल के साथ।

0: अभी आपने सुने अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई ये गजल। गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामे गजल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का हम फिर से स्वागत करते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शामे गजल और इसमें अब हम आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज की आवाज में गाई ये गजल।

अभी आपने सुनी तलत अजीज की आवाज़ में गाई ये गज़ल। कार्यक्रम शामी गज़ल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज़ में गाई ये गज़ल।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शामे गजल FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिलाओं के लिए विशेष, सचिव फोनिन मिंजरा। और इस कार्यक्रम में आज का विषय है बचपन के खेल गिट्टियाँ। और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप श्रोताओं को, यानी कि महिला श्रोताओं को डायल करना होगा हमारे स्टूडियोज का दूरभाष नंबर, जो कि है 01892224391।

कार्यक्रम सुना दियां सारियां साड़ियां जेड़ियां बो भैनां न्याणियां स्याणियां छोटे छोटे बच्चे साढ़े बड़के पाओ छोटे पाओ तुसां सारियां जो तुहाड़ी बड़की बोबो यानी वर्षा कटोश दी प्यार भरे नमस्ते। तां मैं अज रोई यो कने लेके तुहाड़ा बड़ा शैल दिया एक कार्यक्रम यानी कि मिंजरा कने तुहानूं जो मैं पहले ही दसी दियां कि ये जिहड़ा कार्यक्रम है ये विशेष तौर पर साड़ियां बोबो भैणां वास्तै है कने कुड़ियां बिटियां वास्तै सब इस फोन करी सकती हैं कने साढ़े कने जुड़ी सकती हैं कने इस कार्यक्रम च अज हाँ गप्पां मारनियां यानी कि गप्पां इ'यां नहीं मारनियां तां तूं दियां कोई चुगली चकाटी नहीं करनी हाँ अहां कम्में दियां गप्पां मारनियां कम्में दियां गप्पां इ'यां मारनियां भाई अज हाँ जिहड़ा विशे लिया सै बचपन दी खेल गिटियां। ठीक है तो इस पर अहां गलबात करनी है कने साढ़े स्टूडियो का नंबर है 0182224391। वैसे तो साड़ियाँ बोबो भैणा बड़िया कामियां भी हैं तेज तराट भी हैं मतलब जिथू जिथू जियां जियां जरूरत होवे तियां तियां जूझी लैंदियां सै है ना। तो स्टूडियो का नंबर दसना जिहड़ा ऐ सै साड़ी ड्यूटी है सै अहां दित्ता दसी कने भाई बड़के भाऊ जेहड़े हैं साढ़े सै इस कार्यक्रम च फोन ना करन कने कोई सुनने दा अगर लोक गीत सुनने दा दिल कीते है तां अपने घरें जेहड़ी भी कोई बोबो भैन है साड़ी तिसा ते गल करवान। ठीक है जी कने साड़ी बोबो भैन कोई जुड़ी चुकी होवे तां आवा गलबात करदे गलबात करने

0: दुए ते पौंता त्रीए चली जाना है ना।
1: हां जी ना, गाली तो पहुंचा था, कोई गाल नहीं, पर सोढ़िया लेके तड़ाई पौंदे हे।
0: साड़ियां दादियां जेड़ियां सियाणियां थियां घरे च बोलदियां, ओ छोकरी ओ हथां मत बजा, बुरे हुंदे हथ बजाना है ना।
1: ओ तू अंगने च खेला जाए करी,
0: हाँ
1: चली
0: कने,
1: आ तू तई।
0: हाँ बोलदे हे गिटियां तोड़ी देनियां ने, तुहाड़ियां जली जाने गिटियां है ना।
1: हां जी हां जी,
0: तां सत्तू जे खेलदे हे तां पकड़ोई जांदी ही गिटी।
1: हां पकड़ो ही आंदी ही मेम,
0: अच्छा जी,
1: इन्हें तो थोड़े माहिर है ना गिटी खेलने दे। हां
0: कने बड़ा मजा आंदा है ना जालू जीता दे हे तां।
1: हां जी हां जी हां जी
0: ता ओ नारा भी खेलियां,
1: हां जी, नारा खेलिए मैं।
0: ता पंजा गिटियां च जालू बाग बनांदे हे ता बणी जांदा। हा
1: हां जी हां जी, मत बनाना पौंदा पंजा गिटियां, को कुत्ता कोई केटी और मोर ना, मता कुछ बनाना पौंदा चीज।
0: है ना,
1: हां जी हां जी,
0: ता अजकले दे बच्चे भी जोड़ा दे तुहां इना खेलना कन्ने की सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित करी थी बच्चे।
1: अजकल खुद में मोबाइल ना सीमित है।
0: पर
1: ठीक
0: अहां ये
1: है
0: जिहड़ा कार्यक्रम दे दौरान तुहां जो जानकारी दिया दे ना, अहां इस तरह
1: जी
0: दिया दे कि ये जिहड़ियां पुरानियां साड़ियां खेलां ना, इन्हां पासे
1: जी
0: बच्चियां दा जिहड़ा रुझान है करा, ताई इन्हां मोबाइले दी जिहड़ी ये बुरी लत लगी हो ना। बच्चे बुरी लत तां नहीं गलाई सकदे, खैर इतना टाइम नहीं हुंदा सारयां दी, यहां गल नहीं करा दे, पर कुछ एक बच्चे जिहड़े हन से बड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम है इन्हां दा मोबाइल पर। ता अहां
1: हाँ
0: तां
1: जी
0: कार्यक्रम दे माध्यम ते बोलना चाहना कि ये जिहड़ियां साड़ियां पुरानियां पुरानियां खेलां ना, जिवें पिठुआ होई या नारां सत्तू गिटियां, ये सारियां खेलां, इस कन्ने क्या हुंदा हा कि हत्थां दी वर्जिश होनी सै अलग है ना,
1: हाँ
0: कन्ने
1: जी
0: जिहड़ा
1: हाँ
0: सांजो
1: जी
0: दिमाग है बिल्कुल गिटियां पर रखना पौंदा हा, ना तां ना तां है ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी हाँ जी
0: अगर जरा कि
1: हाँ
0: ध्यान
1: जी
0: हाड़ा हटिया तां गिटी गई,
1: हाँ जी
0: मतलब बड़े बड़ी ध्यान
1: हाँ
0: पूर्वक सांजो ये गेम खेलना पौंदी ही। तां मैं ये
1: जी
0: चाहंदी
1: हाँ जी
0: तुहाड़ी बड़की बोबो, तुहाड़े सारयां ते ये अपेक्षा रखदी मैं, पुरानियां पुरानियां चीज़ां तां इस कार्यक्रम च तोपी के लियोंदी तुहाड़े वास्ते, कि गां बच्चे आयो भी दसा इन्हां चीज़ां आयो।
1: बच्चे क्या मेम, बच्चे मनदे नहीं, बस बिक बरी नाल फोन मिली या फिर तो माओ डरदियां मरिया ना, दादियां जे मजे मजाक फोन कदी दे जाने
0: खेल
1: बस।
0: खेल च ना समझाना सीखना कि आहाड़ा बचपन जेड़ा था से इन्हां खेलां कन्ने बीतिया, कन्ने बहुत अच्छा बीतिया, तां ही यहां आज तक तंदुरुस्त फिट हैं। ठीक है जी,
1: मेरा ले बड़बड़ती टाइम था, आ जानी ही कुड़ियां खेलने, एक चीज दूसरे घर चली जाना, पांच पांच छे छे कुड़ियां इकट्ठियां हो जाना,
0: हाँ जी हाँ
1: फिर
0: जी हाँ
1: खेला
0: जी
1: खेल लेनिया, बड़ा
0: हाँ
1: मजा
0: जी
1: आंदा
0: हाँ
1: हा।
0: जी।
1: पर हुण सा टाइम मनेरी आका ना, हुण सा कुड़ियां मनेरियां।
0: पर चलो अगर इयां हाँ इस टाइम जो छड़ना लगे तो सब कुछ छुटदा जाना, तो हाँ कोशिश करनी कि ये चीज़ा हाँ बनी के रखनी है। ठीक है जी, हूँ
1: खेल
0: में जो
1: छुट्टी गया मैं हुण कहे ना, हुण गांद जेड़े हैं ना इंटरेस्ट लिया नहीं कर दे,
0: चलो
1: हुणे पुरानी जेड़ी
0: कोशिश करनी है
1: पुरानी
0: ना,
1: जेड़ी खेलन मैं से छुट्टी नहीं,
0: नहीं कोशिश
1: बढ़िया
0: करनी तो।
1: खेला
0: हाँ
1: उन्हें पुरानियां,
0: हाँ जी,
1: जिया रस्सी टप्पण होंगी ही,
0: हाँ जी
1: इमलिए दे नम लैने से तोड़ने से नमू खेलने है,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ
1: और
0: जी।
1: बड़िया बार खेला उन्हीं मैं, पर होने से ना खेलना बीच है ही नहीं
0: पर
1: कोई।
0: साड़ा कार्यक्रम दे दौरान इस विषय जो लेने दा मकसद ही ये है कि तुहां बच्चे हो इन्हां चीज़ां कन्नै दोबारा फिरी जोड़ने दी कोशिश करनी। एक बारी बच्चा मना करे दोबारी फिरी यहाँ बोल गए, बार बार बोल गए, बोल दे ना करत करता भी हास के जड़मती हो सुजान है ना, ता
1: हाँ जी
0: कोशिश करनी उन्हें दसा भी बाकी कार्यक्रम भी सुन दे तुहां।
1: मैं मेरा रेडियो भी आ गया थे लेके, संगत कर लगी ही रहंदा
0: अच्छे लगते कार्यक्रम
1: कन्न
0: सारे,
1: मैं। हाँ जी मैं बड़ी पुरानी श्रोता रेडियो जी, 13 साल
0: बिल्कुल।
1: आंदी ही तालु दे रेडियो सुनदी आई, अज 67 साल उम्र हुई है मेरी। हाँ
0: वैसे कुछ करने सुना दे आज तुम्हारा ये कार्यक्रम मिंजरा,
1: जी
0: आज कार्यक्रम च तो अड़े कन्ने कौन जुड़िया है मिंजरा कार्यक्रम च, कुछ पता है?
1: हाँ जी पता जी, बरसक चोच है ना।
0: बड़की बोबो है तुम्हारी आज बैठी
1: अच्छा
0: हो।
1: बच्ची बोबो, ठीक है
0: हाँ
1: मैं बच्ची बोबो।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ
1: हाँ
0: जी, चलो
1: जी हाँ जी,
0: लता मंगेशकर जी,
1: तू से तो मैं बच्ची बोबो जी, मेरे घरे वाला बड़ा जानदा
0: चलो अच्छी गल है, पर तुहां कार्यक्रम च जुड़े इस तरह
1: मैं।
0: तुहाड़ा मता मता धन्यवाद। इयां ही तुहां फोन करते रहना, कने साढ़े कार्यक्रम दी शोभा बढ़ाते रहना, जुड़ने वास्ते मता मता धन्यवाद।
1: तो बंदिया साइड दे अन्ना
0: तो भाई गल ही है कि ये जिहड़ा अहां विषय लिया दिखा जालू, अहां पुराने पुराने विशे लैंदे तां बहुत ज़्यादा साड़ियां जिहड़ियां श्रोता भैणां हैं ना सै इन्हां चीज़ां दे बारे च जानदियां ने, कने अज मेरियां बोबो जिहड़ियां ने इन्हां मिंजो गीत सुनाने दा मौका नहीं देना है। एक और बोबो जुड़ी है, हेलो
1: नमस्कार मैडम जी, कौन
0: नमस्ते जी, अपना नाम भी
1: बोला?
0: दसा कने ग्राएं दा नाम दसा,
1: ग्रां द्वारा पड़ोसियां
0: थोड़ा
1: चढ़ी
0: जोरे ने गला।

0: ग्राइंडर
1: ऐसा
0: ना
1: इंदौरा इंदौरा।
0: इंदौरे थे, क्या बात
1: हाँ
0: है।
1: जी
0: बड़ी दूरे दूरे ते जुड़ा दी मेरिया श्रोता भैन जड़िया ने, तां कुण कुण गए खेलिया सत्तू नारा की पंज।
1: मैं ना नहीं पता, मतलब कि जिया तुम ले करते हो ना कि इस तरह के ना, वो नहीं पता, पर इन कि पांच गीटियां हुई हैं तो बस वो नाल ही हाथ नाल मतलब कि खेलना
0: हाँ जी
1: ते गिल्ली डंडा भी
0: हाँ,
1: खेलना
0: गुल्ली डंडा भी बड़ी अच्छी खेल थी।
1: गिल्ली डंडा भी खेडना मैडम, छुपन छुपाई भी खेडे भी है, क्योंकि
0: हाँ
1: जो साडे टाइम दे सारे ये है ही ना, मतलब कि खेडा ये बच्चे हुण ते
0: है ना,
1: बच्चे मत हुण ते है नहीं इनके कोल इन्ना टाइम कि ये बाहर जाइए खेडन ले
0: गुल्ली डंडा खेलने तैयार तो गाली भी मतियां पौंदियां, पता नहीं कुदी अख फटाई
1: सही
0: देनी ना,
1: गल है, यही
0: है
1: लगता कि
0: ना।
1: हाय उनके पे साडी आखी कि ना बची
0: हाँ,
1: जाए
0: पर ये भी जेडे गुल्ली बनाई के दिंदे हे ते सह बड़ा नहीं तिसे उम्मीद नहीं करदे हे अगे ते ना, भी ज्यादा नहीं तिसे छिलदे हे, मोटियां मोटियां रख दे कि
1: हाँ थोड़ा
0: कुसी दी।
1: मोटा मोटा रख दे उसे ताकि वो बस
0: हाँ
1: ज्यादा नुकीला ना हो तो किसी भी अख से ना लगे जाए।
0: जी, ता दिखा बड़ी खुशी हुआ दी कि इतनियां पुरानियां खेलां दी अज
1: यादा
0: अहां गलबात करा
1: हाँ
0: दे, कने तुहाड़ियां यादां
1: जी
0: ताजा हुआ दियां। पर
1: हाँ
0: अहां यो
1: जी
0: इस कार्यक्रम च इस खेल जो लेने दा मतलब ये है कि आने वाले जेडे साडे घरां च बच्चे हैं ना, तिन्हें भी इन्हें खेलना करने थोड़ा थोड़ा जरूर
1: थोड़ा
0: सांझो
1: थोड़ा
0: दसना
1: जोड़ना
0: है।
1: चाहिए। हाँ
0: हाँ
1: जी ये
0: जी,
1: तो है,
0: कि
1: ये तो
0: साढ़े
1: है,
0: टाइम
1: वैसे
0: से
1: बच्चे
0: खेलना होंदिया
1: खेलते
0: हियाँ।
1: है। हाँ जी वैसे खेलते बच्चे अज भी हो जी, कि मतलब कि छुपन छुपाई खेल ली थोड़ा, मतलब कि बैट बॉल तो चलो आम ही
0: बिल्कुल
1: है खेल,
0: दिखा ना हुण
1: पर
0: क्रिकेट कने तो खेला
1: नॉर्मल
0: दे ही, तो टीवी च भी दिखा दे, सब जगह दिखाई, पर ये चीज़ा नहीं मिलनी है, ये तो तू आपू बठाली के बच्चे दसगे ना जी,
1: दस गए
0: है ना,
1: ताही
0: ता
1: साढ़े
0: ही
1: टाइम मैडम
0: होनी।
1: टीवी फोन होंगे कितने आए
0: कहने
1: होंगे ही
0: सब
1: नहीं
0: ते
1: कि
0: बड़ी गल है कि गिटियां खेलना बड़ियां औखियां, अजकले दे बच्चे पकड़ना नहीं आउणियां गिटियां।
1: पता ही नहीं चलना जी पत्थर नाल
0: हाँ,
1: पकड़ने
0: कहने गिटियां पकड़ना ही नहीं आउणियां, पहली गल कि
1: नहीं आईया
0: ऊपर जालू
1: साढ़ी
0: हवा च
1: दूजिया
0: उछाल दे हाँ, गिटी तो सह हाथे च आउंदी है ही नहीं।
1: हाँ स्कूल का काम करना ते फटाफट मकी मल्ले च रहना ते सारे बच्चे ने कट्ठे हो जाना कुड़ियां कुड़ियां ने ते चलो जी खेलो खेतियां ते वो इमली दे बीज दे होंदे हे उनदे नाल भी खेडा
0: तिने
1: खेडे
0: ने
1: दी
0: सह बनाना
1: हां
0: स्टापू दिया बनाना है, कहने तीस
1: जी
0: सह गां गां
1: स्टापू हां
0: चलानी है
1: जी
0: ना,
1: हां
0: जिया सह
1: हां
0: अजकल
1: मकी
0: क्या बोल दे सह खेल दे।
1: टाइम बड़ा अच्छा मतलब कि टाइम पास हो जाता। हाँ हूं बच्चे की क्या करें क्या करें बोर हो रहे हैं बस यही डायलॉग आता
0: बस
1: है
0: तो हुण
1: वो
0: अज
1: बोल
0: मैं
1: रहे
0: तुहानू
1: कि
0: दसी ता है ना कार्यक्रम दे माध्यम ते, हुण तुहां जरूर है
1: सत्तू
0: कोशिश करनी, सत्तू हुंदे 7 गिटियां है कने नारा होंदियां 12 गिटियां खेलणियां, कने
1: हाँ
0: सब ते अच्छी खेल हुंदी भी 5 गिटियां जेड़ा एक ही हत्थे च समेटी लै सै, सब ते बड़ा खिलाड़ी मन्निया जांदा
1: हाँ
0: हा,
1: जी हाँ
0: है
1: जी
0: ना।
1: ये भी है मैडम
0: तां चलाकी
1: बिल्कुल
0: करनी कि
1: बिल्कुल
0: छोटी छोटियां गिटियां लियाणियां कि पंजो इक्की मुट्ठी चाहिए।
1: सारियां हाथ भी चाहिए साढ़े टाइम चलाकियां बड़ी होती
0: चला जी, तो हाँ कार्यक्रम च जुड़े तिस ते तुहाडा
1: मैं
0: मता
1: काफी
0: मता दे।
1: टाइम तो सुने करनी है प्रोग्राम ये तो
0: अच्छा
1: पर
0: जी,
1: कभी फोन लगता कभी नहीं लगता, पहली बार ही
0: आज तुम
1: ट्राई
0: दही
1: किया
0: खाई के
1: मैं
0: फोन किया, कहने फोन लगी है तुहाडा, है ना, जुड़ने
1: ये समझ लो
0: वास्ते।
1: कि पहली बार ट्राई किया है फोन। एक्चुअली मेरे को पता नहीं है कि मतलब 6:30 बजे एतवार मतलब संडे की ये आता है
0: हाँ
1: मीरा
0: जी
1: का
0: हाँ
1: मतलब
0: जी,
1: लाइव प्रोग्राम
0: टाइम
1: आता
0: बदलो
1: है
0: ही है ना, इस दा
1: वैसे।
0: पहले
1: हाँ जी
0: 7:10 पर आंदा है ना, उन टाइम
1: अच्छा
0: बदलो ही है
1: अच्छा
0: इस दा 6:30 बजे।
1: वही ना वैसे मैं सवेरे 6 बजे तो लेइए राती दे जी मतलब एतवार वो फिल्म संगीत भी आंदा है राती 9:30 बजे
0: हाँ
1: तो
0: जी, 11:10 तक
1: साडा टाइम यही
0: तुहां
1: है कि 11:10 10:30 बजे तो साडा प्रोग्राम है कि रेडियो मेरा चलना ही चलना। मैं कि
0: चलो जी,
1: मैं सुननी
0: बड़ी
1: है ना
0: खुशी
1: दसी बनी
0: हुई
1: चुकी है
0: ना
1: सर
0: दसी दिया एक बारी फिरी अपना।
1: मैम इंदू बोले
0: इंदु
1: जी
0: जी तुहाड़ा मता मता धन्यवाद, इयां सुनदे रहे तुहां आकाशवाणी धर्मशाला दे सारे कार्यक्रम, जुड़ने वास्ते फिरी ते धन्यवाद। ता दिखा भाई अहां अज का जेड़ा विषय लिया था, मेरियां बोबो भैणा नहीं मना दियां भाइया, अपने टाइम मेरियां खेलां दे बारे च बड़ा कुछ दसा दियां, जेड़ा मिंजो भी पता नहीं सब भी दसा दियां। तो आवा हुण सुनी लैंदे अहां राज प्रभाकर होरां दी आवाज़ च इक गीत, इसते पहले कि साड़ी बोबो भैन जेड़ी कोई सै जुड़े अहां गीत सुन लैंदे।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो। हाँ जी, मेरा
0: हाँ जी, अपना नाम दसा कने ग्राएं दा भी नाम दसा। हेलो
1: नाम सारिका है।
0: सारिका जी, कुथू ते बोला दे, ग्राएं दा नाम बोला।
1: कांगड़ा।
0: कांगड़ा ता तुहां खेल दे, ए जेड़ा आज का विषय ऐसे सुनिया, तुहां
1: हाँ जी,
0: गिटियां खेलियां, तुहां
1: हाँ जी, मैं खेली है ना।
0: कुंडे खेल खेलियो, सत्तू नारा की पंज गिटियां।
1: मैं 5 गेटिंग
0: अच्छा, पकड़ोइया नहीं ही हाथे च,
1: नहीं कद के बारे छुट्टियां दी गई
0: छुट्टी भी जानी ही है ना।

0: अच्छा जी, तो तुहां क्या कर दे? ग्रहणी हैं, स्टूडेंट हैं कि
1: स्टूडेंट
0: हैं? अच्छा, कुसा क्लासा दे? अठवीं दे। वेरी गुड। तो और भी जेडे तुहाडे इर्द गिर्द बच्चे हैं ना, तुहां तिने भी ये खेलां दसणियां है ना?
1: हाँ जी, सब खेल दे ना, हड़े कने खो खो जिना के या
0: कने। वेरी गुड। हाँ, स्क्रीन टाइम जेड़ा ना सकटाई देना मोबाइलों पर, कने दे दी गे खेल जड़ियाँ जलू अह खेलते हैं ना जी, तो इस साढ़िया हाथों की भी बड़ी बारी कसरत होंगी, कने दिमागे की भी बड़ी कसरत होंगी है ना जी। हाँ, तो ना क्या दस्या तुह अपना? सारिका। सारिका तो बाकिया भी दसनिया ने खेलना, ठीक है? कुछ स्कूलें पढ़ते तुह? अच्छा जी, तो बड़ी खुशी हुई कि साढ़े जेडे भैन हैं सह भी जुड़ा दी हैं इस, छोटिया भैन जड़ियाँ सह भी जुड़ा दी हैं, कने सह इस खेला है वह भी जान दी है, तो इससे भी बड़ी के खुशी दी गल है। तो जुड़ने वास्ते सारिका जी थोड़ा मता मता धन्यवाद। इं जुड़े रहे आकाशवाणी धर्मशाला कन्नै।

0: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: तपाई बोबो पैनो एजड़ा कार्यक्रम मिंजरा है इस वेला तुहां सुना दिया आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते कने अज मैं तुहाड़े कने बड़की बोबो यानी वर्षा कटोच कने इस कार्यक्रम च अज अहां गलबात करा दे गिटियां दे बारे च। कने गिटियां जिहड़ियां से मतियां किस्मां दियां हां खेलदे थे बचपन च, जियां नहरां, सत्तू, पंज गिटियां, और भी मतियां सारियां गिटियां ने जुड़ियां जिहड़ियां से खेलां थियां। पर हुण कड़िया दियां सूईयां जिहड़ियां ने सै बोला दियां भी बोबो अपनियां जवानियां जिहड़ा सै थोड़ा बोलती बोलदे ना हाँ, तो इसे थोड़ा बंद करी लै कि टाइम होई गया कने हुण आह चलना है दिल्ली हो ना खबरां सुनने ते हैं। पर चक्कर यह है कि इससे पहले मैं तुहानू दसी दियां कि इस कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग यानी कि इस कार्यक्रम जो तुहाड़े घरे तक पुजाने च जिहड़ा साडा साथ दिता सह दिता सुरिंदर कपूर होर ने, कने इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह, कने तुहाड़े कन्ने जिहड़ियां गप्पां चुथियां सह थी तुहाड़ी बड़की बोबो यानी वर्षा कटोच। कने हुण मिंजो दिया अनुमति करें जाने दी अगलिया वरिया फिरी मिलगी एक नोए विषय कन्ने तुहाड़े कन्ने। तैलू तक तो सारे तुहां सुखी रहा तंदुरुस्त रहा है ना जी, तो जल्दी कने तुहां सारियां हुण मेरी प्यार भरी नमस्ते। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने बताया है कि 4 लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है जबकि एक व्यक्ति को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब तक 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस के अनुसार स्थानीय जांच में पता चला कि इमारत 40 से 50 वर्ष पुरानी थी और हादसे के समय इसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां तैनात की हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात के तौर पर पास की एक इमारत को भी खाली करा लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर भी प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान भी किया है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
3: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा

0: डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी हैं। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। ईरान और अमरीका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा है कि उसके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। IRGC ने दावा किया है कि इन पोतों ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी में हिस्सा लिया था। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया है। अमरीकी सेना के अनुसार यह कार्रवाई उस समय की गई जब IRGC ने क्षेत्र में गश्त कर रहे अमरीकी नौसेना के 2 युद्धपोतों की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Union Home Minister Amit Shah has said that a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks.
3: Between 2014 and 2026, the quantity of drugs seized has increased significantly to more than 1 crore 19 lakh kilograms. The value of these seized drugs stand at approximately 1.89 lakh crore rupees. Between 2014 and 2026, the government led by Narendra Modi has destroyed approximately 48 lakh 66,000 kilograms of drugs.
0: Dinisht karne ka kaam Narendra Modi sarkar ne kiya hai.
2: Mr. Shah also highlighted the government's development efforts in Jammu and Kashmir. He said the Union Territory is now on the path of progress and development, while Naxalism is becoming a thing of the past under the Narendra Modi-led government. Meanwhile, the Union Home Minister has cut short his visit and left for Delhi following the collapse of a multi-story building in the national capital. Mr. Shah reached Panaji last night on a 3-day visit to Goa. A major rescue operation is underway after a multi-story building housing a student paying guest or PG accommodation collapsed in Satiniketan area of Delhi this afternoon. According to the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi, 4 persons were brought to the trauma center for treatment. Of them, 1 person was brought dead, 2 are in critical condition, and 1 has been discharged. Meanwhile, the Delhi police has said that 6 persons have been rescued so far and shifted to hospitals. Several people are still fear trapped. The police said during the local inquiry, it was revealed that the building was 40 to 50 years old and some repair work was underway in the basement of the building when the incident happened. The Delhi Fire Service has deployed 18 fire tenders for the relief and rescue work at the location. The area where the incident occurred is close to the heart of Delhi University's South Campus and has several buildings, mostly housing student PGs, hostels and eateries. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu has directed all concerned agencies to work in coordination to ensure swift rescue efforts on the ground. Delhi Chief Minister Rick

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान बागवान व पशुपालक भाई बहनों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुना कर दे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथियों हाजिर है मैं इस बेले थोड़े ताएं जानकारी ले करी और प्यारे प्यारे कहने मिठे मिठे लोकगीत ले करी। तो कार्यक्रम च तुहां कहने जड़ी हाँ अज गलबात करने से है कार्बनिक और जैविक खेती। तो किसान साथियों देखा कि भाई पुराने समय दे ही भारतीय किसान प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे कने उस समय खेती च रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग के भी बड़ा घट या फिर बिल्कुल नहीं हुंदा था। आधुनिक समय च ज्यादा उत्पादन लेने दे उद्देश्य दे रासायनिक उर्वरक कीटनाशक और खरपतवार नाशक का प्रयोग के भी बढ़ गया कने इस दे उत्पादन तो बढ़िया लेकिन मिट्टी की उर्वरता जल की गुणवत्ता पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर मते सारे जड़े दुष्प्रभाव कहने भी पे हैं। ऐसी परिस्थितियों च कार्बनिक और जैविक खेती का महत्व के भी बढ़ गया है। कार्बनिक खेती का अर्थ है ऐसी कृषि पद्धति दे है जिस प्राकृतिक और जैविक स्रोत मिल्य पदार्थों का उपयोग करके फसलों का उत्पादन के भी किया जाता है। इस गोबर की खाद कंपोस्ट हरी खाद कने बर्मी कंपोस्ट जैव उर्वरक और प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग के भी किया जाता है।

और बीज दे बने अर्क जैविक कीटनाशक और मित्र कीटा का प्रयोग के भी किया जा सकता है। फसल चक्कर और मिश्रित खेती भी कीट और रोगा जो नियंत्रित करने च सहायक है। जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि एक कृषि जो टिकाऊ बनाने च सहायता करती है। टिकाऊ कृषि का उद्देश्य केवल वर्तमान समय च ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियां ताई भी भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधन जो सुरक्षित रखना है। अगर किसान मिट्टी की उर्वरता जो बनाए रखता है, तब भविष्य च भी कृषि उत्पादन के भी संभव रहना है। किसान साथियों, सरकार द्वारा जैविक खेती जो बढ़ावा देने ताई मती सारी योजनाएं और कार्यक्रम के भी चलाए जाते हैं। किसाना जो जैविक खेती की तकनीका का जो प्रशिक्षण, कने जैविक इनपुट की जानकारी और बाजार के जोड़ने के प्रयास कैन भी किए जाते हैं। अगर किसान समूच जैविक उत्पादों का उत्पादन और विपणन करन ता उन्हें जो बेहतर जड़ा बाजार उपलब्ध के भी हो सकता है। तो किसान साथी, ये थी जैविक खेती के बारे में जानकारी। उन्हें हाँ शामिल करना एक प्यार दिया लोकगीत और उसके बाद जानकारी।

0: किसान साथी आशा आशा करने कि इस संझा दे वेले तुसां जो ये प्यारा दे लोक गीत जरूर पसंद आया होना। और इस लोक गीत दे बाद वहां चलना अगली जानकारी दी तरफ, तो सुनदे ने जानकारी।
1: कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता की कड़ी विच जिवें कि तुहां जो पता है हर दिन अहां दा प्रयास रहिंदा एक नित नोएं ते नोएं जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए। मैं किसान मित्र अज अहां दे टियाले पर आए हो न अज दे खास परौहणे जिहड़े कि हन डॉक्टर केर सिंह ठाकुर कने ए विज्ञानिक हन कृषि विज्ञान केंद्र चंबा च कार्यरत हन। तो डॉक्टर साहब जी टियाले पर तुहां दा बहुत बहुत स्वागत है जी।
2: धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका आभार।
1: तो डॉक्टर साहब जी गलबात करदे न जिवें कि अज का जड़ा अहां दा विषय है सह है सुगंधित पौधे कने औषधीय पौधे दी खेती जो करी के किन्या अहां दे किसान साथी बागवान साथी अपनी आर्थिकी जो मजबूत बनाई पान। ता अहां दे सुनने आले तुहां सबसे पहला ए दसा कि ए जड़े सुगंधित पौधियां विच जड़े से कुण-कुण पौधे आउंदे कने औषधीय पौधियां दी श्रेणी च कुण-कुण पौधे आउंदे न।
2: बिल्कुल, बड़ा बढ़िया तुहां प्रश्न कीता। सारे ते पहले तां मैं तुहां ए दसना चाहदा कि ए जड़े चाहे से औषधीय पौधे होण चाहे सुगंधित पौधे होण इन्हां दा जिक्र आज ते नहीं है।
1: हाँ जी,
2: बड़े पुराने समय थे है कने यहाँ जेड़े ऋषि मुनि जेड़े थे सह इन जड़ी बूटियां ते ही दवाइयां बनांदे थे कने आहां दा जेड़ा सह आदमी होन चाहे जानवर होन ते नादा इलाज करदे थे।
1: जी डॉक्टर साहब जी, तो हाँ बिल्कुल जेड़ा सह एक पते दी गल जेड़ी से दसी है कि पुराने समय च दिखा अज दी आहां गल करन दा कितनी सारियां मशीनां आई हैं चाहे आहां दे एक्सरे होने सिटी स्कैन होने या होर, लेकिन उस जमाने च दिखा एक वैद नाड़ी दिखी के दसीन दे कि तुहां जो ए बीमारी है अगर तुहां ए खाद
2: आयुर्वेदा है, आयुर्वेद दे जेड़े प्रोडक्ट हैं या जड़ी बूटियां हैं ना इस दा इस्तेमाल होंदा।
1: हां जी,
2: कने सारे ते बड़ी हैरानी दी गल है कि अज दे समय पर भी ज्यादातर जेड़ी यहां दी जड़ी बूटियां हैं ना सह जंगले ते आउंदियां।
1: बिल्कुल
2: ठीक है।
1: हां जी,
2: तेना दा अगर तुहां देखन ता वैज्ञानिक तौर पर सह जड़ी जड़ी बूटियां हैं ना सह हाले भी यहां दे जेड़े किसान बागवान भाई जेड़े से अपनी जमीन पर नहीं उगा दे। ता सारे ते पहला प्रश्न जेड़ा सह यही है कि भई किसान जो किया जे तेना अगे लान कने तेना प्रोत्साहित करन कि भी तुहां अगे आ कने इन्हां चीज

0: जी
1: तेना दी भी जड़ी सारे दे बड़ी जड़ी समस्या होंदी तेना दी यही होंदी कि भी आ बेचणा कुता है बाहर
0: हां जी जी बिल्कुल
1: सारे ते जेड़ा प्रेशन चैन बड़ा जेड़ा प्रेशन चैन लगदा सै लगदा मार्केटिंग दा
0: जी बेचणा कुतु है
1: बेचणा कुतु है
0: हां जी।
1: ता इस विच ए जेड़ा एमओयू साइन होया इस विच ए भी गारंटी है कि भई जेना देना है अगर जे डाबर वाले देंगे से पौधे तो तेना जेड़ा से प्रोडक्ट जेड़ा बाद विच से डाबर वाले नहीं लेना सरकार दी तरफ ते अश्योरिटी हो जानी कि अगर किसान कोई चीज सुगंधित पौधे या औषधि पौधे उगा दे ता तिसियो खरीदार जेड़ा से पूरी सरकार बैठी हो कने सेना डाबर जे माध्यम ते जेडी से वापस तेना से चीज ले जानी।
0: हां जी देखा जितने भी बाजार विच आहा जितना कोई साबुन है शैम्पू है या परफ्यूम है ना देखो सुगंधित पौधे ते जेड़ा से सब तैयार होंदे है ना
1: बिल्कुल बिल्कुल ये सारी चीजें
0: कने अगर आहा दुए बाहा जी तोहा जिक्र कीता हा दस्या आयुर्वेदिक दवाइयां विच जिया औषधीय पौधे होई ये हरड होई भेड़ा
1: हो गया आंवला
0: है ना
1: ये तो सुने होना तो त्रिफला बनदा है।
0: हां जी बिल्कुल
1: है ना जिना जिना आदमियों दिक्कत होंदी जिना दा पाचन शक्ति ठीक नहीं होंदी जिना भुख नहीं लगती है ना तिना वास्ते स्पेशल त्रिफला बनता है त्रिफला विच यही चीज तीन चीजा पौंदी है हरड़ भेड़ा कने आंवला
0: कने देखा ये हरड़ भेड़ा आंवला जेड़ा सा आहां दे ग्रां विच आहां दी जमीना विच कने बणा विच काफी मात्रा विच
1: बिल्कुल होंदा अभावे ही है ना कि आहां जानकारी नहीं है
0: जी
1: कि किया इसी इस्तेमाल करना से भी जरूरी है ना। इसके अलावा और भी तुहां देखिया होना एक पीछे जालो कोविड का दौर आया ना
0: जी जी
1: तो कोविड का दौर विच आहां साइकोलॉजिकली ना बड़ी बड़ी समस्या आई गई यानी इस दौरान जेड़े ज्यादातर आदमी मरे ना सह बीमारी दे नहीं मरे
0: हाँ जी
1: साइकोलॉजिकली प्रेशर ने मरी गए
0: जी बिल्कुल
1: ठीक है
0: हाँ जी।
1: जिन्हों लगे पता नहीं मिंजो क्या हुई गया हूं क्या हुई है कोरोना आई गया कोरोना आई गया
0: हाँ।
1: मैं तो हाँ दसना चाहता कि भाई इस दौरान मैं भी इसका हिस्सा था कने जल लॉकडाउन लगे कने कोई बाहर नहीं जाते था तब मैं लोगों विच जाता था ठीक है
0: हाँ जी।
1: और मेरा जेड़ा एक इस विच बचाव का सारे से बड़ा काम जो किया था सह किया जेडे मैं अपने घरे दो तीन चीजा तैयार की थी मैं इसका काढ़ा लेंदा था मैं कोई दवा नहीं ली कोई कुछ नहीं ली कने मैं लोगों के बिच गया जिथो मिंजो ये भी लगे कि दस्या लोगों की इसी कोरोना हो गया मैं तेना दे भी मिलिया मिंजो कोई दिक्कत नहीं हुई तो सह कुछ जेडी चीजा ना कने हरेक दे घरे च होनी चाहिए तीन चीज चार चीजा मैं हमेशा कलांदा
0: हां जी।
1: एक तो हां दा गलोए हो गया गलोए हर घरे होना चाहिए था।
0: बिल्कुल
1: तुलसी हर घरे होना चाहिए
0: जी
1: ठीक है जेड़ा लेमन ग्रास तो हां बोला दे
0: हां जी
1: सह हर घरे होना चाहिए था।
0: हां जी
1: स्टीबिया एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लांट है
0: हां जी
1: ठीक है स्टीबिया प्लांट सह चीनी दा काम करता
0: हां जी
1: ठीक है जितने भी तुहां शुगर पेशेंट है ना तेना वास्ते सह रामबाण है
0: हां जी
1: ठीक है। ये जेड़ी चीजा है ना एलोवेरा हुई है
0: एलोवेरा हां जी
1: ठीक है ये चार पांच जेड़ी चीजा है ना ये तो मैं बोलता कोई भी घर दे नहीं होना चाहिए जिस घरे गमले विच नहीं होना चाहिए
0: बिल्कुल हां जी। देखा इस तरह हां जी ज्यादा जगह जमीन दी भी
1: जरूरी तो नहीं है
0: गमले विच ही है ना
1: गमले विच। मैं तो हां एक और चीज तुहां ने साझा करना चाहता कि दो तीन साल ते मेरा ये ट्रेंड हो गया कि मैं स्टीबिया दी जेड़ी गल करा दा
0: जी
1: ठीक है
0: हां जी।
1: इससे कितनी मिठास होंगी कि भाई अगर तुहां एक चम्मच लेंगे ना जी मन लो एक ही चम्मच की मिठास है तो एक पत्ता जेड़ा से चार गुणा इस चम्मच दे बराबर मिठा देता इतना मिठास होंगी थी
0: हाँ जी
1: ठीक है। बड़े सारे किसान जेड़े से कोई उन्न ते चंबे आए जालू तेना ने इंट्रैक्शन की सह खरीदी करी ले गए मेरे ते पौधे तिथू ते ले करी कि नहीं नहीं आहां तो ये चाहिए चाहिए। ज्यादातर जेड़े थे से बेचारे तेना च बुजुर्ग भी थे कोई शुगर दे मरीज थे तेना बोले आहां तो बहुत ही बढ़िया चीज मिली गई है आहां तो चीनी ते छुटकारा पाना चाहते ये मिली गया तो आहां काढ़ा पी सकते चाय पी सकते दुध पी सकते पत्ता पाया इस कने मिठास दी मिठास कने स्वाद दा स्वाद कने फायदे दा फायदा
0: जी
1: ठीक है।
0: डॉक्टर साहब जी इसके बाद अगला प्रश्न तुहां करना हां दा ए रहना कि दिखा जेड़ा जिला कांगड़ा कने जिला जेड़ा चंबा दी जेड़ी सीमा है दिखा हां दे इतू शाहपुर द्रमण ते जेड़ा सा चंबा शुरू हो जांदा है कने इलाका जेड़ा सा पूरा जिया लगदा कि कांगड़े दी जेड़ी जलवायु है तो जिया जेड़ा जिला चंबा कने तितू दी जेड़ी जड़ी बूटियां ने जेड़ा जेड़े तितू दे औषधीय पौधे ने क्या उन्हां दी खेती भी उस हिसाब बिना जेड़ी करना पौनी कि ए आपू च मिलीजुली के हो सकदी है
1: नहीं इसे आजकल तो ये करने का वो ही नहीं रहे आजकल आजकल तो तुहां मैं तुहां एग्जांपल दसदा मेरा जेड़ा विश्वविद्यालय नौणी विश्वविद्यालय तिस दे दो बच्चे एक बच्चा जेड़ा सै केसर दी खेती करा था
0: जी
1: सोलन दे अंदर
0: हां जी।
1: दूजा बच्चा जेड़ा सै कोर्डीसेप्स होंदा एक
0: हां जी
1: जिसे बोलते कीड़ा जड़ी आज दे समय पर सारे ते महंगी जड़ी है सै
0: हां जी
1: ठीक है। एक बच्चा होर है
0: हां जी
1: सै गुच्छी मोरचाला जिसे बोलते ठीक
0: है
1: आजकल जेड़ा गुच्छी होंदी ठीक है
0: जी
1: तिसदा काम करा दे तो तिसियो तक कुछ भी कर सकते है करना क्या है कि सह वाला एनवायरमेंट क्रिएट करना है खेत दी भी जरूरत नहीं है अंदर कमरे विच बेही करी भी काम कर सकते जिना करना सह करी सकते तेना वास्ते कोई सीमा नहीं है
0: हां जी
1: है ना तेना वास्ते कोई वैरियर है अगर इच्छा शक्ति है तो सह कुछ भी बेही करी मनी ले जेड़ा कांगड़े वाला है
0: हां जी
1: धर्मशाला वाला या धर्मशाला ते छड़ी के कांगड़े अगर कोई करना चाहता था सह तिथू ही जेड़ी हिमालय दी कंडीशन है ना जेड़ी किन्नौर कने चंबे दी या भरमौर दी जेड़ी कंडीशन है उपर दी सह तिथू ही अपने घरे क्रिएट कर सही वाला टेम्परेचर सही वाली जलवायु सारी चीजा सह तैयार करी करी कने ये कंड्यूसिव कंडीशन होंगी।

0: अपने कंट्रोल च कने दूजा होंदा जेड़ा ओपन च तो ओपन च है कि जिस चीज दा जित्थु ते स्थान होंदा ना इसी बोलदे है एंडेमिक भी ए जेड़ी ए चीज फलानी जगह ते ते तित्थु होनी ठीक है तो तुहां अगर बाहर करके तो सह चीज दूजी जगह नहीं हो सकती जी हाँ मैं उदाहरण के तौर पर ले लैंदा जे अतीश की गल करिए ना हाँ कुटकी की गल करिए ना हाँ तो सह जेड़ा सह चंबा की उच्ची पहाड़ी भी नहीं हो सकता सह प्लेन भी नहीं हो सकता है ना फिर इतों अगर सफेद मुसली की गल कर या एलोवेरा की गल कर या बाकी होर कर सह जे निचले क्षेत्र ही हो सकता सह उपर वाले क्षेत्र नहीं हो सकता इसी तरीके से अगर तुम पेड़ पौधे की गल करते हूँ खैर है तो खैर भी तुम देखे होने या चंदन है कपूर है ये जो कुछ क्षेत्र है ना जिन्हें तक सीमित होता है तो क्या चाहता होता कि तिथु की जलवायु जी सह भी इसके अनुकूल होना चाहिए तिथु की जी मिट्टी है सह इसके अनुकूल होना चाहिए ताई सह चीजा हो सकती
1: कुण दे बनस्पति जी सह ताई देखा इलाकों वास्ते जी सह वैज्ञानिक अलग अलग किस्म अनुमोदित कितनी होंगे
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी तो डॉक्टर साहब जी जेडे आंदे किसान साथी बागवान साथी तुहाने संपर्क बनाना चाहते हैं तिना जो कुतु ते पौध मिलनी है तो तुहां तिना जे भी दसा की सह किया तुहाना संपर्क जेड़ा सह बनाई पान
0: बिल्कुल बड़ी अच्छी गल तुहां बोले सारे ते पहले ता कोशिश ए करा जी मैं मन लियो अगर कोई इस वास्ते अगर जानकारी लेना चाहता सारे ते पहले ता आहां दे दो विश्वविद्यालय ने इत्थे
1: हां जी
0: एक नौणी विश्वविद्यालय करे तिथु भी एक विभाग जेड़ा सह इसी वास्ते है
1: अच्छा
0: इसी बोलते हां फॉरेस्ट प्रोडक्ट इसका जेड़ा काम है सह है ही सिर्फ जड़ी बूटियां दा ही काम ठीक है इस तरीके से तुहां दा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है ठीक है इत्थों तुहां संपर्क कर सकते नौणी विश्वविद्यालय तुहां संपर्क कर सकते इसके अलावा आयुर्वेदी दा जेड़ा अपना इन्हां दा एक अलग संस्थान है जोगिंद्र नगर ठीक है तिथु भी तुहां जेड़े तिथु अच्छे जेड़े अधिकारी हैं डायरेक्टर लेवल दे बंदे तिथु बैंदे ना अधिकारी बैंदे ना तिथु भी तुहां से जानकारी ले सकते हैं कने सारे ते नजदीक अगर तुहां जानकारी लेना चाहते ना तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र हरेक जिले च तुहां मिली आने कने तिथु जेड़े ना से कंसर्न अगर वैज्ञानिक नहीं भी होगा तो तिथु चालू संपर्क कर दे तो तेना कोई ना कोई तेना रस्ता जेड़ा से किसान बागवान जो दसी रहना कि तुहां इन्होंने गल करी लिया कने ये तुहां संपर्क सूत्र लिया कने तुहां इस दी जानकारी तिथु ते ले सकते
1: जी डॉक्टर साहब जी बड़ी अच्छी जानकारी जड़ी सह तुहां आहां दी सुनने वाले तक जड़ी सह सुगंधित कने औषधीय पौधे के उपर जड़ी सह पुजाई है तुहां अपना कीमती समय निकाली के जिला चंबा ते जड़ा सह तू आकाशवाणी धर्मशाला दे टियाले पर आए तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद
2: किसान साथियों असा आशा करने कि इस जानकारी दे तुसां जरूर लाभ लेना है और जरूर सुगंधित और औषधीय खेतीबाड़ी के भी करनी है तो फिर यहां शामिल करना एक प्यारा दया लोकगीत तो सारे सुनते रली मिलिए लोकगीत।

किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्ने खेतीबाड़ी कार्यक्रम इतू संपन्न हो करदा। कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा सुरेंद्र कपूर, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। हुण अपने ट्रायल दे सस्य बड़का चाचू दे अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कई बार पात्र लोग योजनाओं की जानकारी के अभाव में सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभों से वंचित रह जाते हैं। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना का उल्लेख करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को इस योजना के लिए पात्र परिवारों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया है। बिलासपुर जिले के बरमाणा में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत हुई एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और देश सेवा सुशासन और विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस बीच भाजपा द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सेवा से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव सैजल ने आज नाहन में बताया कि प्रधानमंत्री का जीवन सेवा समर्पण और संघर्ष को समर्पित है और 25 वर्षों का उनका राजनीतिक सफर प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में शुरू हुई योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्रिय राजनीति में 25 वर्ष जो है वो पूर्ण हो रहे हैं। उनके ये 25 वर्ष सेवा समर्पण और संकल्प से भरे हुए, संघर्ष से भरे हुए 25 वर्ष हैं। और उनका ये राजनीतिक जीवन मैं ये समझता हूँ कि एग्जाम्पलरी है, उदाहरण है पूरे विश्व के अंदर। जब से केंद्र में उन्होंने इस देश का नेतृत्व संभाला है, उनकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है और कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार से भी कभी केंद्र की सरकार जो है वो योजनाओं के माध्यम से इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है लोगों के जीवन में जो है वो परिवर्तन लाया जा सकता है।
0: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बदहाल हुई है। नाहन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार करीब 2000 स्कूलों को बंद कर चुकी है और इसके बावजूद भी शिक्षा सुधार का गुणगान किया जा रहा है। बिंदल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में करीब 3500 स्कूलों में एक एक अध्यापक है, जबकि 150 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग भी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप को खारिज कर इसकी प्रश्नावली रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि तेलंगाना और बिहार में अपनाई गई पद्धति के अनुसार जातियों की प्रमाणित सूची के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार कर पारदर्शी तरीके से जातिगत जनगणना करवाई जानी चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से व्यापक चर्चा के बाद ही नई प्रश्नावली तैयार करने का सुझाव दिया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: अरे वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करे?
3: अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ।
4: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है और रोजाना 1.5 लाख से अधिक पेटियां मंडियों में भेजी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार अब तक 60 लाख से अधिक पेटियां बाहरी राज्यों को भेजी जा चुकी है। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
6: मॉनसून की बारिश के बीच हिमाचल में सेब सीजन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा पेटियां भेजी जा रही है। एपीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 60 लाख पेटियां बाहरी राज्यों को भेजी जा चुकी है। वहीं अब तक करीब 1 करोड़ पेटियां हिमाचल और बाहरी राज्यों की मंडियों में पहुंच चुकी है। मंडियों

0: साथ साथ सीधे कारोबार के जरिए भी सेब लगातार बाजार का रुख कर रहा है। शिमला और किन्नौर क्षेत्र सेब भेजने में सबसे आगे है। इस बार फसल कम है लेकिन बागवानों को दाम अच्छे मिल रहे हैं। शिमला और किन्नौर के 20 किलो के बॉक्स का दाम 400 रुपए से 4000 रुपए प्रति पेटी तक बिक रहा है। हिमाचल प्रदेश में सीजन की शुरुआत में 2.25 करोड़ पेटियों के उत्पादन का अनुमान था लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए आंकड़ा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। पिछले साल करीब 3 करोड़ से ज्यादा पेटियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। इस बार उत्पादन 2.25 करोड़ पेटियों के आसपास सिमटने के आसार हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिले में भटियात क्षेत्र के थुलेल में आज छात्राओं की अंडर 19 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं से खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। पठानिया ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेल व अन्य गतिविधियां व्यक्तित्व निर्माण और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र में भारी बरसात के चलते क्षतिग्रस्त बलाणा गोला संपर्क मार्ग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन से प्रभावित हो रहे हिस्से का स्थायी समाधान करने के भी निर्देश दिए। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को वर्ष भर खेल गतिविधियों से जोड़े रखने पर बल दिया है। वे कांगड़ा जिले में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भरमाड़ में अंडर 19 खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ शिक्षा और खेलों पर विशेष ध्यान दे रही है। चंद्र कुमार ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा करते हैं। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पाहल में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की छात्राओं की खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने छात्राओं को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि अगले माह टूटू और सुन्नी में स्थानीय महिलाओं के लिए महिला खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार से जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर शिक्षकों की कमी पाई गई है जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये खामियां सरकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावे पर सवाल खड़े कर रही है।
2: शिक्षा के आंकड़े आप देख लें, अशिक्षा का स्तर क्या है। बड़ी हैरानी होती है जब 150 से ज्यादा स्कूल हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जिसमें एक भी अध्यापक नहीं, 3,500 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक अध्यापक है। और जो दावा करते थे कि हिमाचल प्रदेश तो पिछले 4 सालों में शिक्षा में बड़ी लंबी छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर प्रदेश भर में आ गए हैं, मैं देख रहा था आंकड़े, जो टॉप के 10 राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का कहीं नाम भी नहीं है।
1: और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम जारी है। खासतौर पर सोलन और सिरमौर जिलों में पिछले कुछ दिनों से व्यापक वर्षा हो रही है। इस वर्षा से जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। सोलन जिले के परवाणु क्षेत्र में भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल 7 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 44 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को जापान के अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भ्रमण पर किया रवाना। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को बताया ऐतिहासिक, कहा इन वर्षों में स्थापित हुए विकास के नए आयाम। भाजपा का आरोप, कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था हुई बदहाल। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप को खारिज कर इसकी प्रश्नावली रद्द करने का किया आग्रह। और प्रदेश में सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार, अब तक मंडियों में भेजी गई करीब 60 लाख पेटियां। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
4: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
3: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
4: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। रोजगार समाचार सुनिए। निदेशालय अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश शिमला 2 से प्राप्त सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में प्रशामक राजपत्रित कर्मचारी के 42 पदों को बैचवाइज जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरा जाना है। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षु नीति के तहत विभाग में व्यवहारिक कार्य अनुभव के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक मुख्य शमन अग्निशमन अधिकारी हिमाचल प्रदेश बार्नेस कोट शिमला 2 के कार्यालय में दिनांक 10 सितंबर 2026 को सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आवेदक का संबंधित श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व जारी किया हुआ होना चाहिए। पात्र उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया दिनांक 21 सितंबर 2026 से आरंभ की जाएगी। इसके लिए उन्हें कार्यालय में दिनांक 21 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे मूल प्रमाण पत्र व उसकी एक एक अनुप्रमाणित प्रति सहित उपस्थित होना होगा। सामान्य वर्ग के लिए 24 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 9 पद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद आरक्षित हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 0177-262-9945 और दूसरी संख्या 2622-945 पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं हाजिर हुए हैं कार्यक्रम सबरस में और आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको ले चलते हैं अनेक रंगों में जो कि गीतों के होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गजल के साथ।

कार्यक्रम सबरस की पहली प्रस्तुति आपने सुनी, गुलाम अली की आवाज़ में गाई ये गज़ल। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाया ये गीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये पंजाबी गीत दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में।

अभी आपने सुना दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में गाया ये पंजाबी गीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लकी अली की आवाज़ में कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना लकी अली की आवाज़ में गाया ये गैर फिल्मी गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए सुनिए जयेश गांधी अंतरा मित्रा कविता शाह के मिले जुले स्वरों में ये गीत।

ये गीत जिसे गाया था जयेश गांधी, अंतरा मित्रा और कविश ने अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अमित खन्ना व साथियों की आवाजों में गए इसी गीत के साथ हमारा आज का अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब रस अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब रस FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला के केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर व साथियों की आवाज़ों में गाया ये देशभक्ति गीत, और ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: सोनू निगम व साथियों की आवाज़ों में गाए इसी देशभक्ति गीत के साथ हमारा आज का देशगान कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे देशगान FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। NDRF के महानिरीक्षक NS बुंदेला ने बताया कि NDRF की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी है।
3: 2 टीम में करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को NDRF की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और NDRF आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

0: श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
1: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित फोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
1: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीता नगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
5: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
0: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम

0: कार्यक्रम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी।

0: मां निकोबार द्वीप समूह बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
1: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China Masters in Shenzhen. And now the news in detail. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said, relief and rescue operations are continuing on a war footing. Ms. Gupta said, those found responsible for the incident will not be spared.
3: Whether it is the building owner or any official found responsible, guilty will not be spared. It was an old building and was undergoing construction and renovation, and excavation in the basement reportedly caused a pillar to shift, leading to the collapse. The building was being used as a paying guest accommodation with children inside. All agencies are working round the clock, with saving lives our top priority.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। इस कड़ी में आज आपको हम सुनवाएंगे निर्माता निर्देशक महबूब खान द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं रोटी फिल्म के इस गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज आप सुन रहे हैं निर्माता निर्देशक महबूब खान द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्माता निर्देशक थे महबूब खान, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। उनका जन्म 9 सितंबर सन 1907 को गुजरात के बिलीमोरा में हुआ था और 28 मई 1964 को उनका निधन हो गया। वे मुख्य रूप से अपनी कालजयी सामाजिक महाकाव्य फिल्म मदर इंडिया 1957 के लिए जाने जाते हैं, जो ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में नामांकित होने वाली भारत की पहली ऐतिहासिक फिल्म थी।

कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं निर्माता निर्देशक महबूब खान द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। महबूब खान का जीवन और सिनेमाई सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। शुरुआती संघर्ष और अभिनय अस्तबल से हुई थी उनकी शुरुआत। सिनेमा के प्रति जुनून के कारण वे कम उम्र में घर से भागकर मुंबई आ गए थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने घोड़ों के अस्तबल में नाल ठोकने का काम भी किया था, एक्स्ट्रा के रूप में भी काम किया। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक मामूली हेल्पर से लेकर और एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में कदम रखा। मूक फिल्मों में छोटे रोल करने के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। निर्देशक के रूप में पहचान और प्रमुख फिल्में जो थीं वो 1935 में फिल्म ऑल हिलाल जजमेंट ऑफ अल्लाह से उन्होंने अपने निर्देशन के सफ़र की शुरुआत की। उन्होंने अपने पूरे करियर में सामाजिक मुद्दों और अमीरी गरीबी की खाई को दर्शाने वाली कई बेहतरीन फिल्में बनाईं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज आपने सुने निर्माता निर्देशक महबूब खान द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है। अब रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: लगभग 7000 वर्ष पीछे हरियाणा के हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखी गढ़ी की।
1: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर सामने कैसे आया? क्या यह किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम था या निरंतर पुरातात्विक साधना का?
0: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखी गढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। वे बताते हैं,
2: जहाँ तक राखी गढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखी गढ़ी पुरास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को स्वयं नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी का दौरा किया और वहां से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। उन्होंने राखी गढ़ी के महत्व को समझकर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक ऐसे ही पुरास्थल प्रकाश में आए। राखी गढ़ी की खोज ने सिंधु सभ्यता के बारे में प्रचलित इस धारणा को ही बदल दिया कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि वह भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खननों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से 16 के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और मादा मानव कंकाल मिले। 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहां पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहां पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
1: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखी गढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखी गढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
0: दृषद्वती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से

0: चलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा वृषद्वती दक्षिण की ओर बहती थी।
1: ये एक घग्गर की तरह एक सहायक नदी थी वृषद्वती, जो आपके शिवालिक से निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो इस सफीदों यानी सर्प देवी और सर्व दमन के पास जाती थी, फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन वराह जीव और राम राय ये पवित्र तीर्थ स्थान थे और राम राय में इसके चार द्वार थे, उसमें राम राय था और राम राय के पास आपका राखी गढ़ी बसा हुआ है। और सरस्वती से मैंने एक संबंध बता दिया आपको और इसकी जो धारा है वो आज भी आसन वराह जी राम राय आप होते हुए हांसी हिसार सिसवाल मातर श्याम भादरा रावस्तर सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरतगढ़ के पास, सरस्वती से इस पर संबंध है।
2: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरतवंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में तथा वृषद्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है।
1: नदी के किनारे है अब वो लोग तो प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके तो जहाँ तक सरस्वती संगम होता था सूरतगढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास इसका मेल होता था सरस्वती का, इसका इतना महत्व था। मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि वृषद्वत्यम मानुष आपयायाम सरस्वत्याम रेव दग्नि दिदीहि, इसका मतलब है कि वृषद्वती आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियाँ थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव श्वस और देव वाक इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए। हो सकता है एक स्थान उसका राखी गढ़ी रहा।
2: राखी गढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, नालियां और अग्निवेदियां यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान उत्खननकर्ता मनोज सक्सेना ने बताया,
3: राखी गढ़ी ग्राम दो गांव राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखी गढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखी गढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 एवं 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहाँ पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकेवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहाँ लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित हैं वो प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में सुविकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पक्की ईंटों की नालियां, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4-2-1 के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखी गढ़ी की विशालता एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन में हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन्स के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
0: राखी गढ़ी से कई हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं,
4: तांबे और सोने के आभूषण, पकी मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरें, तथा मन के बनाने के केंद्र मिले हैं, जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन, जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पकी मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु या मानव की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिले।
0: राखी गढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
3: यहां से हमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन सलाखा आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 7, जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, से 7-8 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फॉयल और 42 मृदभाण मिले हैं, जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
2: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखी गढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखी गढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
5: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं, जिनका कच्चा माल राखी गढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्थलों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित खेतड़ी की खानों से, राखी गढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात बटकरे एवं मोहरे मिली हैं, उससे यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के नियम एक समान थे। विदेशी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप राखी गढ़ी का व्यापार क्षेत्र अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहाँ से कच्चे माल के रूप में अर्धकीमती पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखी गढ़ी पुरास्थल का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
0: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखी गढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
6: राखी गढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसमें मतभेद

0: कहते हैं। जलवायु के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया है कि जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8000 से 3000 ईसा, उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है। उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ने बस्ती बना के रहने लगा था। उसका प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है। और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है, इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के, हड़प्पा रावी के, और गवेरीवाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के, और राखीगढ़ी, और तमाम बहुत सारे प्राचीन स्थान सरस्वती के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया अभी जो राखीगढ़ी था, विशाल पांच विशालतम नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था सिंधु सभ्यता वालों ने तो ये, लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया। और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे, लेकिन एकदम जिसे कि एरिडिटी, एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई। और उसी समय में ये सरस्वती, सरस्वती और ये इसके सहायक नदियां सूखने लगी। और वही समय है जब इसके किनारे बसे हुए, जब साफ पंजाब सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे हुए प्राचीन नगर जो है, नगर और महानगर, ये उजड़ने लगे। यानी कि नागर सभ्यता का विखंडन हो रहा। लोग शहरों से क्या करते, भूतहा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के, कोई पूरब गया, कोई दक्षिण गया, कोई उत्तर की तरफ आया। तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विघटन हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी एक नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध। वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था। जो वहाँ पॉलिटिकल उथल पथल भी, जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं, वो समय है जबकि हमारे व्यापार पर बहुत धक्का लगा। तो हमने जो उस व्यापार की वजह से, मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह, ये सब पे इतना धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
1: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है, उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले, विशेषकर टीला नंबर 4 और टीला नंबर 6, आज आधुनिक अतिक्रमण और निर्माण का सामना कर रहे हैं। विकास और विरासत के संतुलन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक युद्धवीर रावत के विचार।
2: ईएसआई जहां भी खुदाई करता है या किसी स्मारक का विकास करता है, तो जरूर वहां के स्थानीय लोगों को एक तो ईएसआई की काम करने की पद्धति का पता चलता है, और उस ढंग से वो भी कई कामों में निपुण हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे हम लोग वहां पर गई सामग्री वो स्थानीय बनाते हैं, खास करके खुदाई के लिए जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, और स्थानीय लोगों को वहां पर ड्राइंग के लिए, सर्वेइंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं, और उनको सिखाया भी जाता है। साथ साथ उनको जो है विविध जो उपकरण है, जो इस चीज के जो है साधन है, उनके बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहाँ तक सवाल है, ये धीरे धीरे हम लोगों ने कई ट्यूनों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं, और कई जो है टीलों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं, ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहाँ पर है। तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा, और वहाँ पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता

0: कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
1: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है। इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार,
2: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी सहापुर और रोकी था दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी, और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या बदलाव हुए हैं इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखीगढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार के माध्यम से बन रहा है, और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है, उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
3: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखीगढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
1: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखीगढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखीगढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
4: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास करते रहते हैं, और एक एक्सपोजर मिलता है कि देश विदेश से घूमे हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनके आइडियाज हम हमारे साथ शेयर करते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं उन आइडिया को लेके। तो वैसे ही प्रयास में हमने मतलब एक पूरी बड़ी गाइड टीम को विकसित किया राखीगढ़ी में, ट्रेडिशनल फूड बनाने वाली महिलाओं को विकसित किया है, और हमारे जो क्राफ्टमैन है उनका तो कहना ही अलग है। हमारे गांव की कई महिलाओं की दरिया बाहर के कंट्री में बहुत डिमांडिंग है। हमारे गांव की लेडीज जो रोटी बनाने के लिए बोहिया बनाते हैं सरकंडे और पन्नी के, वो बहुत फेमस है। महिलाएं हमारी बाहर के बड़े स्कूल्स में क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए जाने लग गई है। आगे के प्लान के तौर पे हम हमारे गांव के 200 साल पुरानी चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।
3: राखीगढ़ी कभी विशाल महानगर रहा होगा, राखीगढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा अहलूवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा अहलूवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
5: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखीगढ़ी का जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, और राखीगढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं, हमें वेल्स मिलते हैं, और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है, बट रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। राखीगढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका यू नो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जाननी जरूरी है। बैरियल्स अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं, बट उसके अलावा भी हमें ये

0: आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहां बेरियल्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहां मचो हरप्पन बेरियल्स मिलते हैं, वहां पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
1: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
0: जीपीआर, मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसंत शिंदे ने किया है, बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स हैं आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये एविडेंस बहुत क्लियरली बताएंगी। बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
2: राखी गढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
1: सवाल बस इतना है, क्या हम इतिहास की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं?
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखी गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारन का था, वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था। कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक के सौजन्य से प्राप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है रविवासरीय संगीत सभा जो कि आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएगी।
1: प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी विल नाउ ब्रिंग यू द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत।
1: श्री एनआर प्रशांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, जो संगीत क्षेत्र में अपने अभिनव और शोध आधारित असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एनआर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान आर के पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णयंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूर विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।
2: श्री एनआर प्रशांत इज अ डिस्टिंग्विश्ड वोकलिस्ट इन कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, रेनाउंड फॉर हिज इनोवेटिव एंड रिसर्च ओरिएंटेड एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड। श्री एनआर प्रशांत म्यूजिकल जर्नी कमेंस्ड इन बेंगलुरु अंडर द गाइडेंस ऑफ विद्वान आर के पद्मनाभा। इंस्पायर्ड बाय स्टालवर्ट्स लाइक श्री तिट्टे कृष्णा अयंगार, ही परस्यूड हिज एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द ट्यूटलेज ऑफ विदुषी नीला रामगोपाल। सब्सिक्वेंटली अंडर द रिवर्ड मेंटरशिप ऑफ प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन, he gained a deep understanding of the subtle nuances of Carnatic classical music. He earned a degree in engineering in instrumentation technology from the University

0: श्री एनआर प्रशांत अपने गायन को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार की एक रचना परम पावन रामा, जो राग पूर्वी कल्याणी आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल, श्री एनआर प्रशांत विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामनाथपुरम श्रीनिवास अय्यंगार परम पावन रामा इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदिताल।

0: ये था तनी आवर्तनम, जिसे मृदंगम पर ए राधेश, घटम पर शरत कौशिक ने प्रस्तुत किया।
1: That was Tani Avartanam played on the mridangam by A. Radhesh and on the ghatam by Sharat Kaushik.
0: श्री एन आर प्रशांत अपने गायन का समापन रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार की एक तिल्लाना से कर रहे हैं, जो राग पूर्ण चंद्रिका आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एन आर प्रशांत concludes his vocal recital with a tillana of Ramanathapuram Srinivasa Iyengar in the rag Purnachandrika set to Aditaal.

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on the violin by C.V. Shruti, on the mridangam by A. Radhesh, and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded at the studios of Akashvani Mysuru, and the broadcast came to you from Akashvani Delhi.
2: FM

0: बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है और पहले हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री डूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक काकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उप

0: 2017 in the Summit Clash to secure country's first ever title at the tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा ये प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। अपने कल प्रातः के प्रसारण के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।